शुभ प्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रातकालीन सभा आरंभ होती है। FM शिमला पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा

0: क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks yesterday, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Mr. Misri said that both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by

जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें कम और शांति अधिक हो जाती है।

आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6:40 हो गए हैं। FM शिमला पर लीजिए सुनिए एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समय

समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपने अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान, गायक स्वर लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर व साथी, संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। FM शिमला पर लीजिए अब सुनिए देशगान।

0: पर्दे एक बार फिर उठा दे, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे।
1: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लीजिए अब खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ।
2: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं शशि चौहान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन शिमला से जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना अभियान का कल शुभारंभ किया। यह अभियान 1 से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा।

0: आएगा जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की एचपी रेडी परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस ने व्यापक जनसमर्थन प्राप्त कर अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति को पुनः प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 शहरी निकायों में से 32 में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों की जीत हुई है, जिससे स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और विकासात्मक दृष्टिकोण पर पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रही है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस सरकार की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब बौखलाहट में जनता को गुमराह करने के लिए निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और

0: अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut.
2: 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।

अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। सदाचार से ही जीवन मात्र का कल्याण हो सकता है। फेन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान शोक नहीं करते। कल्पांत देवताओं की भी आयु में उलटफेर होता है। कोई काल को इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को। वस्तुतः काल, कर्म और गुण, इन तीनों से शरीर का आधान हुआ है। जीव अव्यक्त रूप से उत्पन्न होता है, अव्यक्त में ही लीन होता है, केवल मध्य में बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। पूर्व कर्मानुसार ही जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। कर्मों के अनुरूप ही सुख दुख की भी प्राप्ति होती है। कर्मों का उल्लंघन करना असंभव है, काल का भी अतिक्रमण करना संभव नहीं। जगत के समस्त पदार्थ मायामय तथा अनित्य हैं, जैसे स्वप्न।

के पदार्थ इंद्रजाल, गंधर्व नगर और शरद ऋतु के बादल अत्यंत क्षणिक होते हैं, उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर भी क्षणिक है। अब तक अनेकों जन्म बीत चुके हैं, अब तुम ही बताओ माते, तुम किस जन्म में किसकी पुत्री थी, किस जन्म में तुम माता थी, किस जन्म में तुम पत्नी थी। मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, औषधि तथा रसायन से इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। आज एक जीव की मृत्यु होती है तो कल दूसरे की। ये जन्म मरण का चक्र तो संसार की एकमात्र नियति है भद्रे। इस शोक मोह में स्वयं को मत डुबाओ। शिव योगी के तत्व भरे करुणापूर्ण उपदेशों को सुनकर वज्रबाहु की पत्नी सुमति ने ये कहा। शिव योगी के तत्व भरे करुणापूर्वक उपदेशों को सुनकर वज्रबाहु की पत्नी सुमति ने ये सब सुनकर कहा। भगवन, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो, जिसकी काया रोगग्रस्त हो, उस अभागिन के लिए मृत्यु ही सुखदायी है। मैं इस बच्चे के साथ ही अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मैं कृतार्थ हो गई। रानी की बातें सुनकर दया निधान शिव योगी शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर बालक के पास गए। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। शिव भक्त ऋषभ वहां से चले गए। समय अपनी गति से चलता रहा। शिव भक्त ऋषभ वहां से चले गए। बरसों बाद ऋषभ योगी पुनः वहां आए तो रानी सुमति ने कहा, योगीगण, मेरे पुत्र को उचित शिक्षा प्रदान करें। ऋषभ जी बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। गौ, ब्राह्मण, देवता, गुरु के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गोपूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य ना करो। धूर्त, क्रोधी, क्रूर, छली, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्य को दूर से ही त्याग दो। माता पिता एवं गुरु के कोप से बचो। स्नान, जप, पूजा, हवन, श्राद्ध आदि में उतावलापन ना करो। ये सभी कार्य शांतिपूर्वक करो। वेद वेत्ता, ब्राह्मण, सन्यासी, पुण्य, वृक्ष, नदी, तीर्थ, सरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री और देवताओं के पास आते ही नमस्कार करो। ये कहकर शिव योगी ने बालक भद्रायु को शिव कवच, एक शंख और खड़ग दिया, साथ ही उसे 12,000 हाथियों का बल भी प्रदान किया।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए एक खूबसूरत सुबह का आगाज एफएम शिमला पर आपकी और हमारी प्यार भरी मुलाकात आज के इस हसीन और खूबसूरत सफ़र में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर अब हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से वो खास कार्यक्रम हैं जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ सुबह 7:57, 8:30 और 9:57 पर। देश और दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है ये जानने के लिए आपको हम लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हिंदी में समाचार, दिन में 12 बजे, 1 बजे, 2:15 और रात 11 बजे अंग्रेजी में समाचार, दिन में 12:05, 1:05, शाम 7:05 और रात 11:05 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 रात 9 बजे।

प्रादेशिक समाचार सुनिए सुबह 9:20, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला आपके लिए हम लेकर आते हैं सुबह 7:15 पर। हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों का मीठा सा संगीत हम पहुंचाएंगे आप तक पहाड़ी लोकगीतों के माध्यम से सुबह 8:32 पर। लोक संगीत और पहाड़ी संगीत 11:30 पर।

गीतों के अनमोल खजाने से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत आपके लिए फिल्म संगीत में। सुबह 8:45, दिन में 12:10, 3:10, शाम 4 बजे और रात्रि 8:30 पर।

0: गीतों के अनमोल खजाने से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत आपके लिए फिल्म संगीत में सुबह 8:45, दिन में 12:10, 3:10, शाम 4 बजे और रात्रि 8:30 पर। कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, जहां पर हम चलेंगे एक खूबसूरत सफर पर। 10 बजे सुनिएगा राग छाया कार्यक्रम और पुराने दौर के सदाबहार फिल्मी नगमे आपके लिए 11:05 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। महिलाओं को इंतजार रहता है अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला सम्मेलन का, जो पेश किया जाता है हर रोज दिन में 12:20 पर। दो बजे का समय रहेगा सबरंग कार्यक्रम का और 2:30 पर सुनिएगा खेल खिलाड़ी कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होता है शाम 4:20 से, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे सिरमौरी कार्यक्रम। 4:50 पर महासवी कार्यक्रम, 5:20 पर स्पीति कार्यक्रम, 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर पेश किया जाएगा लाहौली कार्यक्रम। किसान बागवान कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं शाम 7:10 पर। शाम की सभा का आगाज होता है फिल्म शिमला पर 8 बजे से, जहां पर सबसे पहले आपके लिए हम लेकर आते हैं भूले बिसरे गीत। नौ बजकर 15 मिनट पर एक फिल्म से कार्यक्रम और आपकी दिल की आवाज पहुंचेगी सीधे हमारे दिल तक आपकी भेजी हुई प्यारी प्यारी मेल्स के माध्यम से। ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन में रात 9:30 पर। जी बिल्कुल, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी मेल्स के माध्यम से और सुन सकते हैं अपनी पसंद के कुछ बढ़िया बढ़िया से गीत। हमारी ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी रहती है airfmshimlamusicmail@gmail.com। रात 10 बजे, जी हाँ रात 10 बजे आपके लिए पेश किया जाएगा गजलों का हसीन नजराना और 10:30 पर आनंद लीजिए सदाबहार फिल्मी नगमों का। ये थे कुछ खास कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के FM शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। तो बस इन कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपका अपना जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। जी बिल्कुल डियर लिसनर्स, जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखते हैं, ईश्वर उनके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम नहीं होने देते। देखिए, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। साथ ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ यूं ही FM शिमला पर।

इस समय ट्यून इन है आप अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ। जी बिल्कुल, आज के इस संगीतमय सुरमय सफर में हम और आप रहेंगे साथ साथ, जहां पर अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आप

जी बिल्कुल, सुबह की शुरुआत अगर ऐसे एनर्जी भरे गीतों से हो जाए तो भाई बात ही क्या। देखिए, अच्छा संगीत जो होता है ना, वो आपका मूड ही नहीं बल्कि आपके दिन को भी अच्छा बना देता है। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि हमारे पास है एक से बढ़कर एक गीतों का अनमोल खजाना आप सभी लिसनर्स के लिए। ये बहुत ही प्यारा सा एक और गीत आपके लिए, आपके रेडियो सेट्स पर, आपकी सुबह को और भी हसीन और खुशनुमा बनाने के लिए।

0: नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश। आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं, यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास

0: आने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

हर दिन अपने साथ कुछ नई यादें लेकर आता है और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा भी कर जाता है। इतिहास के पन्नों में यही दिन कई अनमोल कहानियां भी छोड़ जाता है। तो आइए जानते हैं आज की तारीख इतिहास में किन खास घटनाओं की गवाह रही है। जी हाँ, आज है 2 जून सन 2026। आज ही के दिन वेडल सेना ने रोम शहर पर कब्जा कर लिया था और ये घटना रोमन साम्राज्य के पतन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। बात करें 1756 की तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले कलकत्ता पर हमला शुरू किया था आज ही के दिन। मार्कोनी ने रेडियो संचार के लिए अपने प्रसिद्ध पेटेंट का आवेदन किया। बाद में यही तकनीक आधुनिक रेडियो प्रसारण की नींव बनी सन 1896 में। आपको बताएं, इटालियन गणराज्य की स्थापना के लिए जनमत संग्रह का परिणाम सामने आया और इटली में राजशाही का अंत हुआ सन 1946 में आज ही के दिन। सन 1953 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ और सन 1988 में भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा हुई जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा थी। तो ये थी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई थी आज ही के दिन हमारे इतिहास में। तो आगे क्या कुछ है खास हमारे पास आप सभी लिसनर्स के लिए, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

107 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का। देखिए बिजनेस, आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही फोन और रात को सोने से पहले भी फोन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फोन की शुरुआत कैसे हुई? पहली बार इंसान ने दूर बैठे व्यक्ति की आवाज कैसे सुनी और कौन वो व्यक्ति था जिसने दुनिया को ये अनमोल तोहफा दिया? तो चलिए जानते हैं टेलीफोन की रोमांचक कहानी। उन्नीसवीं सदी में लोग दूर बैठे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठियों और टेलीग्राम का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उसमें समय लगता था। अब वैज्ञानिक सोचने लगे कि क्या इंसान की आवाज को तारों के माध्यम से दूर तक भेजा जा सकता है? यही सवाल एक युवा वैज्ञानिक के मन में भी था और उनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जी हाँ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वो ऐसे उपकरण बनाना चाहते थे जो ध्वनि को बेहतरीन ढंग से पहुंचाने में मदद कर सके, और उन्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये खोज पूरी दुनिया बदल देगी। बेल और उनके सहायक लगातार प्रयोग कर रहे थे। वे बिजली के तारों के माध्यम से आवाज भेजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कई बार असफलता मिली, उपकरण खराब हुए, प्रयोग विफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब देखिए ना, इतिहास गवाह है कि बड़ी खोजें अक्सर कई असफलताओं के बाद ही जन्म लिया करती हैं। March 10, 1876, यही वो ऐतिहासिक दिन था। एक छोटा सा कमरा, चारों तरफ तार और उपकरण। अचानक बेल के उपकरण पर कुछ रसायन गिर गए। उन्होंने अपने सहायक को आवाज लगाई, मिस्टर वॉटसन, कम हेयर। और हैरानी की बात, दूसरे कमरे में बैठे उनके सहायक ने ये आवाज साफ साफ सुन ली और यही टेलीफोन पर बोला गया पहला सफल संदेश माना जाता है।

जी हाँ डियर लिसनर्स, जब लोगों को पता चला कि आवाज़ तारों के माध्यम से भेजी जा सकती है तो ये किसी जादू से कम नहीं लगा। जी बिल्कुल, ये किसी जादू से कम नहीं लगा और धीरे धीरे टेलीफोन लाइनें बिछने लगी, कार्यालयों, घरों और सरकारी संस्थानों में फ़ोन लगने लगे और दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा जुड़ने लगी।

और आपको हम बताएं कि भारत में पहली टेलीफोन सेवा 1882 में शुरू हुई। उस समय ये सुविधा केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और टेलीफोन आम लोगों तक पहुंचने लगा। पहले भारी भरकम टेलीफोन होते थे, फिर आए डायल फोन, उसके बाद बटन वाले फोन, फिर वायरलेस फोन और आज स्मार्टफोन हमारी जेब में एक छोटा सा कंप्यूटर बन चुका है। तो आज हम सिर्फ बात ही नहीं करते, वीडियो कॉल करते हैं, फोटो भेजते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं और दुनिया भर की जानकारी हासिल करते हैं।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला, और एफएम शिमला पर अब हम आपको बता दें हमारे दिन की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। जी बिल्कुल, 11:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे पुराने दौर के सदाबहार फिल्मी नगमे पुरानी फिल्मों से। 11:30 पर आनंद लीजिए पहाड़ी लोक गीतों के कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। 11:40 अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन का, जो हर रोज पेश किया जाता है दिन में 12:20 पर। 2 का समय रहेगा सबरंग कार्यक्रम का, और 2:30 पर सुनना ना भूलिए खेल खिलाड़ी कार्यक्रम। 103.7 पर एफएम शिमला पर लीजिए अब खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं शशि चौहान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की एचपी रेडी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। राज्य सरकार धर्मशाला स्थित टोंगलेन ट्रस्ट को वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। शिमला में ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये और 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता

0: दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनाव परिणामों में जनता ने भाजपा को अपना भरपूर समर्थन दिया है और कांग्रेस की करारी हार हुई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों और मुख्यमंत्री की बात पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने माना कि इन चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके कारणों पर पार्टी स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्रीय क्रिपलिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है। समाचारों के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
5: Both sides underscored the importance.
6: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
5: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
4: दोनों देशों

0: के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण

0: निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
2: वैली 1st जून से 31st ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद।

मनीष, देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है। भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का

0: दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK-1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है, शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
4: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement, BTA. The talks will take place in New Delhi from today

0: and is now likely in 2 to 3 days, reports a statesman. The Pioneer quotes a report that reveals Indian employees take fewer annual leaves than their peers in Asia-Pacific markets, with only 17.2% Indian workers using 100% of their leave. Daily Zapay tributes to Indian cinema's renowned playback singer Suman Kalyanpur, who died on Sunday. The silken voice of Hindi cinema that touched hearts falls silent, headlines a Hindu. And finally, the latest National Family Health Survey reveals that Indian women using the internet has doubled to 64% in 4 years. Among men, it increased from 51.2% to 80.5%, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: FM शिमला पर अब समय है FM न्यूज हेडलाइंस का।
3: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं शशि चौहान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन शिमला से जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना अभियान का कल शुभारंभ किया। ये अभियान 1 से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार पंचायतों, महिला व युवक मंडलों और स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इससे जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी की संस्कृति विकसित होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव के परिणामों को प्रदेश सरकार के विरुद्ध जनता का स्पष्ट जनादेश बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि राज्य सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कल लोकभवन से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन दल को कुल्लू के माउंट देव टिब्बा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभर से चुने गए 24 एनसीसी कैडेट्स का ये दल 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए पीर पंजाल रेंज जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस ने व्यापक जनसमर्थन प्राप्त कर अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति को पुनः प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 शहरी निकायों में से 32 में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों की जीत हुई है, जिससे स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और विकासात्मक दृष्टिकोण पर पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रही है। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम शिमला पर अब हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए पहाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। जी हां, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं राकेश कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ।

वनीता ठाकुर की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का। लीजिए अब सुनिए परसराम तोमर और भूप सिंह को।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 MHz पर। एफएम शिमला पर चलिए अब आप और हम आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: मुकेश और कंचन की आवाज़ों में अभी आपने सुना धर्मात्मा फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आइए सुनते हैं दीवार फिल्म का ये गीत।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। लीजिए अब सुनिए अमित कुमार को फिल्म तेरी कसम में।

कस्मे वादे फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार, आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। चलिए एफएम शिमला पर हम आपको बता दें हमारे आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:31 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। 10 बजे का समय रहेगा रिमझिम कार्यक्रम का। पर सुनिए लोक संगीत और 11:30 पर पेश किया जाएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:20 पर महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन। 10:00 के लिए ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा दिन में 1:10 पर और 2:00 किसान बागवान भाई बहन सुनेंगे सुनहरी किरणें कार्यक्रम। 2:30 पर सुनिए खेल खिलाड़ी कार्यक्रम।

शाम की सभा में रात 8 बजे आप सुनेंगे धारा रे गीत। 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत और 8:30 पर आनंद लीजिए सुगम संगीत का। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता आपके लिए 9:15 पर और 9:30 पर सुनिए मनी टॉक कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

मंथन कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 9:45 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये प्रसारित किया जाएगा और 10 बजे आप सुन पाएंगे नाटक दहलीज रोती है। दस बजकर 30 मिनट पर सुरबहार कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। ये थे हमारी आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा। हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR व DTH पर भी उपलब्ध है।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा

0: मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए हर संभव सहायता देगी सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चयन के लिए बढ़ी सरगर्मियां। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा, बीते एक वर्ष में विश्वविद्यालय में शोध क्षेत्र में हुआ बेहतरीन काम और प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से मिलती रहेगी राहत। मौसम विभाग का 4 और 5 जून को अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे टॉग लेन ट्रस्ट को हर संभव सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट के तहत पढ़ रहे 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये और 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2,500 रुपये हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने वंचित और जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना की और कहा कि शिक्षा और मानवीय सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की पहल समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ट्रस्ट के निदेशक थिरचिन ग्यालसेन ने किया। ट्रस्ट सरकार से विश्वविद्यालय के भूमि पट्टे पर देने की मांग कर रहा है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब इन संस्थाओं में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर तैनाती को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: स्पीति ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पदों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। स्पीति ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सिरतोलो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नवनिर्वाचित ब्लॉक समिति सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से चिचम गाँव के ब्लॉक समिति सदस्य छेरिंग रोलमा को चेयरमैन पद तथा हुरनिंग गाँव के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता महेंद्र को वाइस चेयरमैन पद के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सभी सदस्यों ने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर पार्टी हित को प्राथमिकता दी है, जो कि संगठन की एकजुटता को दर्शाता है। इस अवसर पर लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा ने दूरभाष के माध्यम से दोनों ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को शुभकामनाएं दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। स्पीति में इस निर्णय को कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
2: सिरमौर जिला परिषद के लिए मतगणना बीती रात संपन्न हो गई। जिला परिषद के चुनाव परिणामों में 17 में से 13 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजय रहे हैं। कांग्रेस समर्थक सिर्फ 3 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: जिला परिषद के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर जिला में 17 सीटों में से 13 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनाव में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी को सिरमौर जिला में निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेणुका से विधायक विनय कुमार के गृह क्षेत्र के अलावा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन

0: चौहान के गृह क्षेत्र शिलाई में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: उधर कांगड़ा जिला परिषद के चुनाव के सभी नतीजे आ जाने के बाद अब राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। जिले के कुल 54 वार्डों में से 24 में भाजपा समर्थित, 13 में कांग्रेस समर्थित और 17 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। ऐसे में अब निर्दलीय उम्मीदवारों की जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन्हें अपने अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा है कि जिला परिषद वार्ड जरड़ भुट्टी और दाऊगी की मतगणना में कोई भी गंभीर अनियमितता नहीं पाई गई है। उपायुक्त ने इन दोनों वार्डों में कथित अनियमितताओं की शिकायत लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायत के संबंध में सभी तथ्यों और परिस्थितियों का विधि सम्मत परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित वार्डों के चुनाव परिणाम विधिवत घोषित किए जा चुके हैं और मौजूदा परिस्थितियों में परिणामों के संबंध में कोई भी प्रशासनिक हस्तक्षेप निर्वाचन नियमों के अनुरूप संभव नहीं है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा है कि बीते एक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय में शोध के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है और आधारभूत ढांचे के साथ साथ शोध पत्रों की गुणवत्ता में सुधार आया है। कुलपति के रूप में अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर महावीर सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 सालों में विश्वविद्यालय में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के संकेत मिले हैं। महावीर सिंह ने कहा कि उन्होंने कुलपति बनने के एक साल के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। कुलपति ने कहा कि उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार को विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं किया है। प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। इसी दिशा में मंडी जिला में लोगों, खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने और इस पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता गतिविधियां चलाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: मंडी में नशे के खिलाफ अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर मदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने, युवाओं को नशे से दूर रखने और जागरूकता गतिविधियों को व्यापक स्तर पर चलाने पर जोर दिया गया। डॉक्टर मदन कुमार ने कहा कि नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल पुलिस और कानून परिवर्तन एजेंसियों की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा युवाओं को खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चिट्टे के कारोबारी की सूचना देने वाले को ₹20,000 का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में जल्द ही नशे के खिलाफ जन जागरूकता के लिए वॉकथॉन आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जिला के सभी लोगों से जनगणना 2027 में सक्रिय सहयोग देने और प्रगणकों को सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील की है। उपायुक्त ने अधिक से अधिक लोगों से स्वगणना सुविधा का उपयोग कर जनगणना प्रक्रिया को सरल, तेज व प्रभावी बनाने का भी आग्रह किया है। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 1 जून से आरंभ हो गई है और इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक नागरिक जनगणना 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वजनगणना में हिस्सा ले सकते हैं। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों में कहा गया है कि आगामी 7 जून तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जून को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई है। विभाग के अनुसार राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा, ओलावृष्टि और अंधड़ जैसी गतिविधियों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। इस बीच आज प्रदेश में सुबह से ही अधिकांश स्थानों पर धूप खिली हुई है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार

0: सूत्रों ने जिला परिषद चुनाव के नतीजों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, जिला परिषद में भाजपा का दबदबा, 8 जिलों में बहुमत, 2 में कांग्रेस आगे, 2 में अन्य के हाथ चाबी। पंजाब केसरी के शब्द हैं, चंबा को छोड़ अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 8 जिला परिषदों में खिला कमल, 57 पर कांग्रेस, 144 पर भाजपा व 47 सीटों पर अन्य ने जीत की हासिल। हिमाचल दस्तक के मुताबिक निर्दलीय तय करेंगे जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, के पंत हिमाचल के नए मुख्य सचिव, संजय गुप्ता की तरह अतिरिक्त कार्यभार मिला, विभाग भी संभालेंगे। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, प्रदेश में 3 से 6 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए हर संभव सहायता देगी सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चयन के लिए बढ़ी सरगर्मियां। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा, बीते एक वर्ष में विश्वविद्यालय में शोध क्षेत्र में हुआ बेहतरीन काम और प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से मिलती रहेगी राहत। मौसम विभाग का 4 और 5 जून को अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के इस हसीन और खुशनुमा सफर में हम और आप हैं साथ साथ, जहाँ पर अब हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना जाना पहचाना कार्यक्रम, नाम है जिसका कुदरत के रंग। जी बिल्कुल, कुदरत एक ऐसी चित्रकार है जो हर दिन आसमान को नए रंगों से सजाती है, पहाड़ों को धुंध की चादर उड़ाती है और नदियों को मधुर संगीत देती है। कभी सूरज की सुनहरी किरणें धरती को जगाती है तो कभी शाम की गुलाबी छटा मन को सुकून दे जाती है। तो फुर्सत के कुछ पल निकाल कर सुकून पाने के लिए आप भी चले आइए हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए। और आज हम और आप चलेंगे एक खूबसूरत सफर पर। कहाँ चलेंगे ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर।

देखिए लिसनर्स, हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और कलकल बहती नदियों के दृश्य उभर आते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के एक ऐसे शहर की सैर पर जहां सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के लिए भी माना जाता है। जी बिल्कुल जनाब, आज बात होगी खूबसूरत रामपुर शहर की और हम और आप निकलेंगे रामपुर की एक यादगार यात्रा पर।

जी हाँ, सतलुज नदी के किनारे बसा रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश के सबसे ऐतिहासिक नगरों में से एक है और ये शहर कभी बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करता था। पहाड़ों से घिरा ये नगर आज भी अपने शाही इतिहास की झलक दिखाता है। जी हाँ, रामपुर केवल एक शहर नहीं बल्कि हिमाचल की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जीवंत संग्रहालय भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रामपुर की पहचान, उसकी जीवन रेखा सतलुज रिवर की बात करते हैं। जी हाँ, सतलुज नदी तिब्बत से निकलकर हिमाचल की घाटियों से गुजरती हुई इस क्षेत्र को जीवन देती है। सुबह के समय जब सूरज की किरणें सतलुज के पानी पर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है मानो नदी सोने की चादर ओढ़े हुए हो। यहाँ के लोगों का जीवन, खेती और व्यापार सदियों से इस नदी के आसपास विकसित होता हुआ आप देख सकते हैं।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

कुदरत के रंग कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर, जहां पर आज हम और आप सैर कर रहे हैं रामपुर बुशहर की। कहा जाता है कि बुशहर रियासत का इतिहास हजारों सालों पुराना है। इस रियासत ने हिमालय क्षेत्र में व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी यहाँ स्थित पदम पैलेस उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। महल की खूबसूरत वास्तुकला और विशाल परिसर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए लिसनर्स, अगर रामपुर की पहचान की बात हो और लवी मेले का नाम ना आए तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। करीब 300 साल पुराना ये मेला व्यापार, संस्कृति और सामाजिक मेल मिलाप का प्रतीक है। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते हैं। रंग बिरंगे स्टॉल, पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प और लोक संगीत पूरे वातावरण को उत्सवमय बना देते हैं। यहाँ की लोक संस्कृति और लोक परंपराएं, रामपुर की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ के लोकगीत, नृत्य और त्यौहार हिमालय की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। शादियों और मेलों में पारंपरिक नाट्य नृत्य की धुनें लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। और बात करें यहाँ की पहरावे की, तो हिमाचली टोपी और स्थानीय पहरावा यहाँ की सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। जब आप कभी रामपुर घूमने आएं तो रामपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित सराहन प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम माना जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध भीमाकाली टेम्पल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और मंदिर की लकड़ी और पत्थर से बनी पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला यहाँ पर देखने के लायक है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हिमाचल और सेब का रिश्ता भी बहुत पुराना है। रामपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैले सेब के बाग पूरे इलाके की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। और जब बागों में लाल लाल सेब लटकते हैं ना, तो दृश्य किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लगता।

देखिए लिसनर्स, किसी भी जगह को जानना हो तो उसके भोजन को भी ज़रूर जानिए। रामपुर के पारंपरिक हिमाचली व्यंजन स्वाद और संस्कृति दोनों का अनूठा संगम है। स्थानीय दावतों में परोसे जाने वाले व्यंजन आज भी यहाँ की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। जब भी आप कभी रामपुर घूमने आए तो आप आएंगे, रामपुर की सुबह पहाड़ों के बीच उगते सूरज के साथ शुरू होती है और शाम तो यहाँ की और भी खूबसूरत होती है। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी जब सतलुज नदी पर पड़ती है तो पूरा वातावरण किसी चित्रकार की बनाई पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। तो आज इस कार्यक्रम में हमने जाना रामपुर बुशहर के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। देखिए, रामपुर एक ऐसा शहर है जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है, हर रास्ते पर इतिहास है और हर दृश्य में है प्रकृति का जादू। तो अगर आपको कभी हिमाचल घूमने का मौका मिले तो रामपुर बुशहर को अपनी यात्रा सूची में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि रामपुर बुशहर इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती का एक अनोखा सफ़र है।

0: वेल डियर लिसनर्स, कुदरत की रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज इस कार्यक्रम में हमने सैर की हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत रामपुर बुशहर की।
1: हाथ छूट जाएंगे।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लीजिए अब खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ।
2: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं शशि चौहान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे टोंगलैंड ट्रस्ट को हर संभव सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट के तहत पढ़ रहे 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये और 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2,500 रुपये हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब इन संस्थाओं में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर तैनाती को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सिरमौर जिला परिषद के लिए मतगणना बीती देर रात संपन्न हो गई। जिला परिषद के चुनाव परिणामों में 17 में से 13 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं। कांग्रेस समर्थक सिर्फ 3 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा है। कांगड़ा जिला परिषद के चुनाव के सभी नतीजे आ जाने के बाद अब राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। जिले के कुल 54 वार्डों में से 24 में भाजपा समर्थित, 13 में कांग्रेस समर्थित और 17 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। ऐसे में अब निर्दलीय उम्मीदवारों की जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा है कि जिला परिषद वार्ड जरड़ भुट्टी और धाउगी की मतगणना में कोई भी गंभीर अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संबंधित वार्डों के चुनाव परिणाम विधिवत घोषित किए जा चुके हैं और मौजूदा परिस्थितियों में परिणामों के संबंध में कोई भी प्रशासनिक हस्तक्षेप निर्वाचन नियमों के अनुरूप संभव नहीं है।

प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों में कहा गया है कि आगामी 7 जून तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। FM न्यूज़ हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10 बज चुके हैं और FM शिमला पर अब हम लेकर आए हैं आपके लिए राग छाया कार्यक्रम। जी बिल्कुल, जहां हर सुर में बसी है शांति, हर राग में छुपा है एहसास और हर गीत दिल को छू जाने वाली एक कहानी कहता है। तो आज की इस संगीतमयी यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मधुर हिंदी फिल्मी गीत जो रागों की मिठास में डूबे हुए हैं और आपके दिल को सुकून देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में खो जाने के लिए। आप सुन रहे हैं राग छाया कार्यक्रम अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफर बबीता शर्मा।
1: या निजाम दीन औलिया।
0: रॉक स्टार फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे गाया है AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान ने। इस गीत में राग यमन की मिठास साफ महसूस होती है और साथ ही आप इसमें सुन पाएंगे सूफी संगीत भी। तो सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं रामलीला फिल्म का गीत, जो है राग बागेश्री पर आधारित।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना देवदास फिल्म का गीत जो था राग यमन पर आधारित। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं राग छाया कार्यक्रम का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल से फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और श्री कुमार ने। ये गीत है राग खमास पर आधारित।

राग यमन और राग कल्याण से प्रेरित गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं वेक अप फिल्म से, जिसे गाया है कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य ने।

राग भिमपलासी पर आधारित गीत अब सुनिए गजनी फिल्म से, जिसे गाया है बेनी दयाल और श्रेया घोषाल ने।

0: हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत अभी आपने सुना उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, जो था राग अहिर भैरव पर आधारित।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

0: विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

राग यमन और राग कल्याण से प्रेरित बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं राग छाया कार्यक्रम का। राग भैरवी पर आधारित गीत लीजिए, सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान फिल्म से।

राग छाया कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम, और अब हम आपको सुना रहे हैं अनपढ़ फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, और ये गीत आधारित है राग यमन पर।

वेल, इसी लवली सॉन्ग के साथ राग छाया कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब अपनी रेडियो हम सफर बबीता शर्मा को दीजिए इजाजत इसी उम्मीद के साथ, बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यूं ही सुनते रहिए हमारे साथ FM शिमला।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। साथ ही एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे टोंगलैंड ट्रस्ट को हर संभव सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट के तहत पढ़ रहे 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये और 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2,500 रुपये हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ट्रस्ट के निदेशक थिरचिन ग्यालसेन ने किया। ट्रस्ट सरकार से विद्यालय के लिए भूमि पट्टे पर देने की मांग कर रहा है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब इन संस्थाओं में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर तैनाती को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सिरमौर जिला परिषद के लिए मतगणना बीती देर रात संपन्न हो गई। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता के अनुसार जिला परिषद के चुनाव परिणामों में 17 में से 13 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजय रहे हैं। कांग्रेस समर्थक सिर्फ 3 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। कांगड़ा जिला परिषद के चुनाव के सभी नतीजे आ जाने के बाद अब राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। जिले के कुल 54 वार्डों में से 24 में भाजपा समर्थित, 13 में कांग्रेस समर्थित और 17 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। ऐसे में अब निर्दलीय उम्मीदवारों की जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन्हें अपने अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा है कि जिला परिषद वार्ड जर्रभुट्टी और धाउगी की मतगणना में कोई भी गंभीर अनियमितता नहीं पाई गई है। उपायुक्त ने इन दोनों वार्डों में कथित अनियमितताओं की शिकायत लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायत के संबंध में सभी तथ्यों और परिस्थितियों का विधिसम्मत परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित वार्डों के चुनाव परिणाम विधिवत घोषित किए जा चुके हैं और मौजूदा परिस्थितियों में परिणामों के संबंध में कोई भी प्रशासनिक हस्तक्षेप निर्वाचन नियमों के अनुरूप संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा है कि बीते 1 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय में शोध के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है और आधारभूत ढांचे के साथ साथ शोध पत्रों की गुणवत्ता में सुधार आया है। कुलपति के रूप में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर महावीर सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 सालों में विश्वविद्यालय में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के संकेत मिले हैं। महावीर सिंह ने कहा कि उन्होंने कुलपति बनने के 1 साल के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। कुलपति ने कहा कि उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार को विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं किया है।
2: हमारे पिछले मेरे 1 साल के कार्यकाल में तकरीबन 600 शोध पत्र पब्लिश हुए हैं, जो कि हाई इंपैक्ट फैक्टर में, क्योंकि मैंने सारे फैकल्टी को भी इनकरेज किया कि अगर विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल पटल पर आना है तो शोध पत्र जो है हाई क्वालिटी के होने चाहिए, लोकल जर्नल में नहीं छपने चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर पब्लिकेशन करनी है तो हाई इंपैक्ट फैक्टर में डालना पड़ेगा।
1: डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के 5 वर्तमान व पूर्व विद्यार्थियों का जनजातीय गरिमा उत्सव के लिए चयन हुआ है। ये विद्यार्थी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रस्तावित संवाद में हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन विद्यार्थियों में अभिषेक नेगी, ज्योति चौधरी, सुमन बोझ, सुदर्शना और मोहम्मद हुसनैन शामिल हैं।

0: विद्यार्थी जनजातीय समुदाय के उन प्रतिभाशाली युवाओं में से हैं जिन्होंने नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का लाभ लिया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जिला के सभी लोगों से जनगणना 2027 में सक्रिय सहयोग देने और प्रगणकों को सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील की है। उपायुक्त ने अधिक से अधिक लोगों से स्वगणना सुविधा का उपयोग कर जनगणना प्रक्रिया को सरल, तेज व प्रभावी बनाने का भी आग्रह किया है। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 1 जून से आरंभ हो गई है और इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 से 15 जून तक नागरिक जनगणना 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्व जनगणना में हिस्सा ले सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिमला, FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। 103.7 MHz पर आप हैं FM शिमला के साथ। 11:05 हो चुके हैं, लेकर हाजिर हैं पुरानी फिल्मों से। तो अभी शुरू में ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले आपको सुनवाते हैं काला बाजार फिल्म का गीत। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं, SD बर्मन का संगीत।

0: पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पुराना शब्द सुनते ही आंखों के सामने आ जाता है वो वक्त जो बीत चुका है, वो खट्टी मीठी यादें जो पीछे छूट गई हैं। तो इन गीतों के जरिए करवाते हैं बीते पलों की यादों को ताज़ा। जाली नोट फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, अनजान के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, हमको न सताओ, अरे जा चल जा।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: पुराने गीत भी स्वभाव के मीठे होते हैं। हल्का हल्का संगीत कुछ प्यार का संदेश देते हुए, बिल्कुल हमारे जैसे। अगर हम सभी के साथ खुशी से, प्रेम से रहते हैं तो वो लोग हमें इसीलिए ही याद रखते हैं क्योंकि जिनकी नेचर में प्यार बसा होता है उनके दरवाजे पर खुशियाँ खुद चलकर आती हैं। शिकारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर की आवाज़ में।

आजकल का दौर जो है वो थोड़ा टफ है, इसमें हमें समझना क्या है कि सबसे अच्छा क्या है? समय। सबसे बुरा क्या है? समय। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? वो भी है समय का ही। तो बिना गिले शिकवे के अपना समय सभी के साथ अच्छे से प्यार से बिताया जाए। शिकार फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

0: पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 11:30 हो चुके हैं, करवाते हैं ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में। गुड्डी राणा की आवाज़ में कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

हिमाचल सर्वदा हिम की श्वेत चादर ओढ़े शिखर है, जिसकी साज सज्जा प्रकृति ने खुले हृदय से की है। चारों तरफ बर्फ से घिरे पहाड़, घने घने देव

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: धर्मपाल चौहान और साथियों को अभी आपने सुना।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

बबली की आवाज़ में अभी आपने लोकगीत सुना। हमारे लोकगीतों में अधिकतर मेलों, त्योहारों, पौराणिक शास्त्रीय और महात्म्य कथाओं के साथ साथ कई चमत्कारिक गाथाओं से संबंधित लोकगीत भी होते हैं। कार्यक्रम का अगला लोकगीत बालक राम कश्यप की आवाज़ में।

कोई भी लोकगीत क्यों ना हो, हर गीत की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है या होता है संदेश, या यूं भी कहें कि अपने मन के भावों को दर्शाते हैं ये लोकगीत। बीना रेक्टा की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: पहाड़ी संगीत में अभी बस इतना ही। 12 बजने वाले हैं, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमें अंदर से स्थिर होना सीखना पड़ेगा। जब प्यार किसी से होता है, इसी फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर, कुमार सानू की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 12:20 होने को हैं। आकाशवाणी शिमला और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आइए सुनते हैं महिला सम्मेलन कार्यक्रम।

0: साथ कुछ खतरे भी जुड़ गए हैं। एक छोटी सी हमारी लापरवाही हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। तो आइए कुछ नई जानकारियां, उपयोगी सुझाव और गीत संगीत के साथ साथ साझा करें साइबर सुरक्षा से संबंधित कुछ खास बातें।
1: जी बिल्कुल मधु, परिवार से दूर देखिए हॉस्टल या पीजी या फिर फ्लैट में रहना स्वतंत्रता और नए अनुभवों का आनंद तो ज़रूर देता है और ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन इस आज़ादी के साथ डिजिटल सुरक्षा की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सामने आ जाती हैं। मोबाइल हो या लैपटॉप हो और सोशल मीडिया पर आपकी छोटी सी लापरवाही साइबर खतरे को आमंत्रित कर सकती है, इसीलिए सही डिजिटल आदतें अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल बहनों, देखिए आज के समय में ना साइबर जो क्राइम्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कभी ना कभी हमें कहीं ना कहीं से ये खबर आ ही जाती है कि कोई ना कोई जो है वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है। इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पेमेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण अब जो क्या है लोग आसानी से फ्रॉड और डेटा चोरी कर लेते हैं और डिजिटल ब्लैकमेलिंग का जो है बहुत ज़्यादा तक जो है वो शिकार हो रहे हैं। अक्सर क्या होता है लोग अनजाने में निजी जो जानकारी होती है उसको शेयर कर देते हैं, जो साइबर अपराधियों के लिए एक मौका बन जाती है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है।
1: जी बिल्कुल सही कहा मधु आपने। और एक बात बहनों ये भी याद रखें कि सोशल मीडिया आपकी पर्सनल डायरी नहीं है। हॉस्टल में आप रहती हैं, पीजी या जो भी आपका एड्रेस है, फ्लैट का नाम है, लोकेशन है या आपका रूम नंबर, कभी भी सार्वजनिक पोस्ट में ना डालें। अभी मैं घर पे अकेली हूँ या वीकेंड पर आप कहाँ जा रही हैं या घर खाली है, ऐसे जो स्टेटस हैं वो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है और उसमें जो है अगर आपने उसे प्राइवेट नहीं रखा है तो वो जो है सबको जो है वो शो हो जाती है। ऐसे में आप अपनी प्रोफाइल को हमेशा लॉक करके ही रखें और केवल अपने जो भरोसेमंद आपके लोग हैं उन्हें ही फॉलो करें और फ्रेंड लिस्ट में उन्हें ही जगह दें।
0: बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि ऑनलाइन जो डाली गई बातें होती हैं और फोटोज़ होते हैं, तस्वीरें होती हैं, वो एकदम से डिलीट नहीं होती हैं, वो काफ़ी समय तक जो है वो इंटरनेट पर रहती हैं। और आप हॉस्टल, कैफ़े या सार्वजनिक जगहों पर उपलब्ध खुले वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग, UPI या पर्सनल अकाउंट्स लॉगिन बिल्कुल ना करें, ऐसे नेटवर्क जो है वो असुरक्षित हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और वो आपका जो निजी डेटा है उसका जो है चोरी होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, और अगर आपका लॉगिन करना ज़रूरी हो तो हमेशा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। ये आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है एनक्रिप्ट करता है और आपके व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखता है।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही बहनों किसी भी अजनबी या संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और अनजान स्रोत से आई फाइल या अटैचमेंट को कभी भी ना खोलें। अपने मोबाइल फ़ोन को सेफ रखें, मोबाइल में स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक ज़रूर रखें और समय समय पर सॉफ्टवेयर को जो है वो अपडेट भी करती रहें और अपना पासवर्ड है उसे भी आप बदलती रहें।
1: जी बिल्कुल सही, और इसके साथ ही एक ही पासवर्ड अगर आप रखती हैं तो आप अपने अकाउंट के लिए इस्तेमाल करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कई बार हम क्या करते हैं मधु कि कहीं हम पासवर्ड भूल ना जाएं तो हम एक ही पासवर्ड जो है कई सारे जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं या सोशल मीडिया पर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उन पर हम वही रख देते हैं, तो वो भी एक खतरे की घंटी हो सकती है कि उससे भी आपका जो डेटा है, आपकी पर्सनल जो पिक्चर्स हैं या आपका पर्सनल डाटा जो है वो चोरी होने का खतरा रह सकता है, क्योंकि ऐसे पासवर्ड को हैक करना इजी होता है। और तो अपना जो पासवर्ड है वो बिल्कुल मजबूत बनाएं जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर जरूर शामिल हों।
0: बिल्कुल, और याद रखें बहनों कई बार हम क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं या अपना जो नाम है वही पासवर्ड में डाल देते हैं, तो ये चीज़ें जो अगर हम करते हैं तो ईजी हो जाता है हैकर्स को हमारा जो अकाउंट है वो हैक करना। और जहाँ भी संभव हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, ये आपके अकाउंट को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है और हैकिंग या जो डाटा चोरी से भी हमें बचाता है। बहनों देखिए सुरक्षित पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का संयोजन डिजिटल दुनिया में आपकी सुरक्षा करेगा।
1: जी बिल्कुल, और अगर कोई व्यक्ति बहनों बार बार आपको ऑनलाइन मैसेज भेज रहा है या आपकी पोस्ट पर नज़र रखता है या फेक प्रोफाइल से संपर्क करने की कोशिश करता है तो ये डिजिटल स्टॉकिंग है, और ऐसे अकाउंट को तुरंत ही ब्लॉक करें और ज़रूरी चैट या स्क्रीनशॉट को तुरंत सुरक्षित करें। और अगर आपकी जो स्थिति है इस तरह की कोई भी गंभीर हो जाए या आपको कोई डर लगता है या तो आप साइबर सेल या हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क भी कर सकती हैं।
0: बिल्कुल बहनों, देखिए सतर्क रहना और समय पर सही

0: जीवन के हर रंग को संवारने वाली परिवार की शक्ति और समाज की प्रेरणा यानी महिलाएं और हमारी महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम महिला सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ रहने वाली है आपकी रेडियो हमसफर सुनीता
1: और मधु शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार। बहनों देखिए, आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके

0: कदम उठाना आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है।
1: जी बिल्कुल, और जिस तरह से सुरक्षा के लिए, डिजिटल सुरक्षा के लिए इस तरह सतर्क रहना ज़रूरी है, उसी तरह से मनोरंजन के लिए थोड़ा गीत संगीत भी ज़रूरी है,
0: बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बहनों को सुनवाते हैं ये गीत
1: जी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: बहनों भाई, आजकल का जमाना है ना, जो वो कंपटीशन का जमाना है। हर कोई एक दूसरे से बेहतर दिखना चाहता है, और इस देखा देखी में कई बार क्या होता है कि कोई महंगे फ़ोन ले रहा है, कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहा है और कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है। ऐसे माहौल में कई बार हम भी बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं ताकि हम दूसरों से कम ना दिखें। लेकिन बहनों, समझदारी इसी में है कि हम अपने सपनों के साथ साथ अपनी जेब का भी ख्याल रखें।
2: जी बिल्कुल बहनों, बात जब यहाँ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की हो रही है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रतिस्पर्धा आखिर है क्या।
1: जी,
2: और जब कई लोग एक ही लक्ष्य और मंजिल को पाने के लिए मेहनत करते हैं और एक दूसरे से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें बहनों तो आगे बढ़ने की होड़ ही प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन है।
1: बिल्कुल।
2: और ये कंपटीशन जो है बहनों, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है हेल्दी कंपटीशन और दूसरा होता है अनहेल्दी कंपटीशन। बहनों, अगर हेल्दी कंपटीशन की हम बात करें तो ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें खुद को बेहतर दिखाने के लिए की गई मेहनत से हमें फ़ायदा होता है। जैसे स्टूडेंट्स करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करते हैं और उनका कंपटीशन चलता है तो जब भी उनका रिजल्ट आता है तो वो मार्क्स उनके चाहे जैसे भी हों लेकिन उन्हें फ़ायदा ही होता है। और बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी मेहनत करता है, और कई बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें की गई मेहनत या उसमें लगाए गए हमारे एफर्ट्स बेशक हमें बेहतर ना बना पाए किसी से, लेकिन इनसे मिले अनुभव हमें भविष्य में हमारा फ़ायदा ही करवाते हैं।
1: बिल्कुल। और दूसरी तरफ बात अगर अनहेल्दी कंपटीशन की करें ना बहनों, तो आगे बढ़ने की ऐसी दौड़ जिसमें हम दूसरों की देखा देखी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं ना जो आने वाले समय में हमें नुकसान ही करते हैं। जैसे क्या होता है, किसी की देखा देखी किसी के पास महंगा फ़ोन है तो नहीं हमें भी महंगा फ़ोन लेना है, और उस चक्कर में हमने पैसे खर्च कर लिए, या किसी की गाड़ी देख ली, या ऐसा सामान ले लेना जिसको जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। दूसरों से अच्छा दिखने की होड़ कुछ दिनों के लिए तो हमें खुशी दे सकती है, लेकिन इसकी वजह से बिगड़ा हुआ हमारा जो बजट है ना, वो आगे चलकर हमें दुख ही देने वाला है ना।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मधु आपने। और आगे बढ़ने की ऐसी होड़ में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कमाई से ज़्यादा खर्च करना कभी भी समझदारी नहीं होती। दिखावे की ज़िंदगी कुछ समय के लिए हमें खुशियाँ दे सकती है लेकिन बाद में तनाव और आर्थिक परेशानी भी बढ़ा सकती है। इसलिए हर खरीदारी से पहले खुद से ये ज़रूर पूछें कि क्या ये मेरी ज़रूरत है या सिर्फ दूसरों को देखकर ही, या मेरा मन कर रहा है मैं इसलिए ही ये चीज़ें ले रही हूँ। देखिए, किसी भी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए मेहनत ज़रूरी है लेकिन हर किसी की नकल करना ज़रूरी नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: और इस विषय पर बहनों आपसे और भी बातें होंगी, अभी आपको एक गीत सुनवा देते हैं।
1: जी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सुनीता, हम गीत से पहले अपनी बहनों को बता रहे थे कि जो कंपटीशन का जिस तरह का आजकल का दौर है, ऐसे में हमें बहुत सी सावधानियां ऐसी रखनी होंगी कि जहां हम अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकें लेकिन हमारी जेब भी ढीली ना हो।
2: जी बिल्कुल बहनों, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं या हर वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस स्टोरी या घूमने फिरने की पिक्चर्स डालकर खुद को बेहतर दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दिखाने की इस अंधी दौड़ में हम भी शामिल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मधु, दिल में ये बात तो आती ज़रूर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल आती है और यूँ लगता है कि काश हम भी वहाँ होते, लेकिन वही बात होगी ना कि हमें अपनी जेब को देखकर ही आगे चलना है।
2: जी बिल्कुल, जब भी मन में ऐसी कहीं कोई बात आए तो आप अपना

0: बजट की तरफ
1: बजट
0: रुख कर लीजिए और फिर
1: बिल्कुल
0: देखिए कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर दूर जाइए या बहुत महंगी महंगी जो उसमें सफ़र करें, आप कहीं भी अपने घर के आसपास हो या कहीं भी अपने एरिया में गांव की तरफ निकल सकते हैं, और कहीं भी, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां हैं ना, जो अगर आप इसे ऐसे ही जी लेंगे ना, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको बहुत दूर दूर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़े, ये
0: जी
1: छोटी छोटी खुशियाँ आप कहीं भी इसे ढूंढ सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही साथ बहनों, यहाँ एक बात आपने भी नोटिस की होगी, मधु आपने भी देखा होगा कि जब हम कहीं इस तरह से घूमने जाते हैं जहाँ खूब पिक्चर्स लेते हैं और हमें ये दिखाना होता है कि हम यहाँ घूम रहे हैं, हम तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो असल में देखा जाए तो हम वहाँ एंजॉय कर ही नहीं
1: नहीं
0: पाते,
1: कर
0: क्योंकि
1: रहे थे
0: हमारा पूरा ध्यान तो पिक्चर्स लेने में और उसे अपलोड करने में ही लगा रहता है, और हम ये भूल ही जाते हैं कि एंजॉय भी करना है, और उस समय जो है वो कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर
1: बिल्कुल
0: वापस आकर वही जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना मन को, वो नहीं हो पाती है।
1: नहीं हो पाती है,
0: जी
1: और साथ में जो अपना बजट है वो गड़बड़ा है वो अलग होता है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: और बहनों आपको बता दें, एक अच्छी आदत ये भी है कि हर महीने अगर आपको कहीं बाहर ही जाना है, घूमना ही है, आपका बहुत मन कर रहा है, तो थोड़ी बचत जो है वो ज़रूर करें, भले ही रकम छोटी हो, और यही जो बचत होती है ना भविष्य में बड़ी मदद बन सकती है। अचानक आने वाली ज़रूरतों या कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी उसमें होने वाले खर्चे का, और
0: जी
1: यही पैसा जो है वो काम आता है, और एकदम से पड़ने वाली ज़रूरतों से होने वाले तनाव को भी ये कम करता है। और साथ साथ में हमने अभी आपको तो बताया ही कि अगर आप थोड़ा थोड़ा बचत करके, आप एक साल के लिए तो बचत हो ही सकती है, और
0: जी
1: ऐसी थोड़ी
0: जी
1: थोड़ी बचत करके आप जब भी छुट्टियां हो पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। और अब बात मधु अगर ऑनलाइन शॉपिंग और सेल के दौर की करें तो ऐसे समय में खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है,
1: ज़रूरी
0: खासतौर
1: होता
0: पर
1: है
0: बात
1: कि
0: जब हम बजट की कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: और ज़रूरी तो होता है, लेकिन हमारी बहनें कहाँ कंट्रोल होता है हम लोगों से ना,
0: जी
1: हम तो
0: बिल्कुल
1: यही देखते रहते हैं कि भाई कहाँ सेल लगी है और हमने वहाँ को दौड़ना है
0: जी
1: ना,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: चाहे वो सेल का माल अच्छा हो ना हो लेकिन हमको सेल में जाना है।
0: जी
1: और फिर
0: बिल्कुल
1: ऐसे में कई बार हम ऐसी चीज़ें ले आते हैं उठाकर कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है
0: जी बिल्कुल। ज़रूरत ही
1: ना।
0: नहीं होती, और कई बार
1: हाँ
0: हम एक्स्ट्रा शॉपिंग भी कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए बहनों, सस्ती चीज़ें भी महंगी हैं अगर वो यूज़ नहीं होंगी और आपकी अलमीरा में ऐसे ही पड़ी रहेंगी। अब ज़रा ये सोचिए कि आपके पास ऐसा कितना सामान है जो आपने जो है ऑफ़र के चलते ले तो लिया है लेकिन वो यूज़ ही नहीं हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: और ऐसा सामान ना सभी बहनों के पास होगा, मधु आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, और सभी बहनों के पास
1: बहुत
0: ऐसी
1: है
0: बहुत सी चीज़ें होंगी जो हमने सिर्फ देखा देखी में या सस्ता मिलने के चक्कर में या फिर इसलिए ले रखी हैं कि सेल लगी हुई है।
1: हाँ, ये सबसे बड़ी
0: जी
1: बात है।
0: बिल्कुल
1: और अब देखिए, कैलकुलेट करके देखें ना, तो कितना पैसा जो है आपका बस ऐसे ही सामान के तौर पर जो रखा रखा होता है हमने सामान, कितना पैसा हमने फंसा के रखा हुआ
0: जी बिल्कुल।
1: है ना।
0: और वही पैसा देखिए बहनों, आप किसी इमरजेंसी के लिए सेव भी कर सकती थी जो ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकता है। कहने का बहनों सीधा सा अर्थ बस यही है कि अपनी खुशी को पैसों के दिखावे से बिल्कुल भी मत जोड़िए।
1: बिल्कुल
0: सच्ची खुशी, संतुलित जीवन, मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा में ही होती है। प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन की दौड़ में दौड़िए ज़रूर, लेकिन इतने तेज नहीं कि सुकून और बचत जो है वो पीछे ही
1: पीछे
0: छूट
1: छूट
0: जाए।
1: जाए। बिल्कुल।
0: बिल्कुल
1: और देखिए बहनों, कमाई बढ़ाना अच्छी बात है, पर समझदारी से खर्च करना उससे भी बड़ी कला है। दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करना भी अच्छी बात है, लेकिन अपने बजट और अपने भविष्य को पीछे छोड़ देना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है।
0: जी बिल्कुल। सोच समझ कर खर्च करें और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। तो क्यों ना मधु हम भी कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, एक कदम आगे लेते हैं और सुनवाते हैं बहनों को एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत।
1: जी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सुनीता, समय समय पर भारत सरकार सभी स्तरों पर जो है वो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती रहती है। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें देश के अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष समुदायों को सशक्त बनाने पर बल दिया जाता है।
1: जी, तो चलिए अब आपको बताते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में, जिसके अंतर्गत 15 तरह के जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं। पहले की अगर हम बात करें तो एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण।
0: जी बहनों, और इसके साथ साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना, गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी योजना,
1: तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता प्रदान करना, राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी,
0: अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार करना, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास, और इसके अंतर्गत जो आज हम बात करने वाले हैं अपनी बहनों से वो है ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी के बारे में।
1: जी बिल्कुल बहनों, इंदिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भौतिक व आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा।
0: इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार भी किया जाएगा। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती का विकास कार्यक्रम और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम की योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सरकार मलिन गंदी बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारी संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है, जिससे इन बस्तियों में जन सुविधाओं और मूल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
1: जी, और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि इनके कार्यक्रमों के जो लाभ है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तथा उन समुदायों की घनी आबादी वाले नगरों, मलिन गंदी बस्तियों को उचित रूप से मिल सके।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही हम बहनों से बात करेंगे गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रमों के उद्देश्य है। गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ऐसा जो बैंक ऋण है और सहकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इसी योजना के अंतर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

0: बहनों, तकनीक की दुनिया में कदम बढ़ाइए और सावधानी का दीप भी जलाइए। पासवर्ड मजबूत रखिए हर बार। साइबर सुरक्षा से बनाइए जीवन सुरक्षित और शानदार। तो बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी वादे के साथ इजाज़त दीजिए।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को है, अब आपको लिए चलते हैं समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के

0: जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
0: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कुर्बानी फिल्म का गीत नाजिया हसन की आवाज में।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आशा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आप तो ऐसे ना थे। जी हाँ, इसी फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे हम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। निदा फाजले के बोल हैं, उषा खन्ना का संगीत। इस गाने को सुनने से पहले आपको सुनना होगा ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने

जब भी दिन की शुरुआत करो तो ये सोच कर किया जाए कि जो खो गया है उसे भूल जाओ, जो मिल गया है उसे संभालो और जो पाना है उसके लिए पूरी ताकत लगा दो। प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, संतोष आनंद के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

समय के हर सेकंड को जिए, ये वो पल हैं जो कभी दोबारा लौट कर नहीं आते। अर्पण फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, अनंत बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसलिए लोगों के व्यवहार को देखकर अच्छा बुरा मत बनो। हमें किसी के बिहेवियर से फर्क ना पड़े, ऐसे सिंपल बनो। हीरो फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 2 बजे हैं अब, आपको सुनवाते हैं सब रंग।

सब रंग में आप सुनते हैं फिल्मों के साथ साथ एल्बम सॉन्ग्स भी। जो गीत शायद हमने बहुत पहले सुने थे जहन में तो हैं, पर थोड़ा सा हम भूल गए हैं। तो हम आए हैं आपको वही गीत याद करवाने जो आप में से किसी के फेवरेट है।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

सबरंग में आज बस इतना ही। 2:15 होने वाले हैं। दोपहर हिंदी समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली

0: साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से

0: विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
0: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी

0: को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने

0: की पूर्व शर्त रखी थी उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमरीका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पर आप हैं FM शिमला के साथ। 2:30 हुए हैं, अब आपको सुनवाते हैं खेल खिलाड़ी कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसे लेकर मैं हाजिर हूं दिशा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों से जिन्होंने अपने अपने खेल के मैदान में एक महारत हासिल की होती है। आज भी हम बातचीत करने जा रहे हैं ऐसी ही एक खिलाड़ी से जिनका नाम है सुखविंदर सिंह और ये कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। सुखविंदर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: सबसे पहले तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर आपका बचपन बीता है और अभी अगर वर्तमान की हम बात करें, अभी आप क्या करते हैं?
1: मेरा जो गांव है वो नालागढ़ से 8 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ता है दहोटा। नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ मैं। अभी मैं फिलहाल हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। एज ए स्पोर्ट्स कोटे से मैंने जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस में ज्वाइन किया था।
0: जी सर, देखिए अभी हमने आपके परिचय में बताया है कि आप कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो अगर कबड्डी की एक हम प्रॉपर डेफिनेशन एक जानना चाहें कि आखिर कबड्डी है क्या, किस तरह का खेल है ये?
1: कबड्डी तो देखो जी, ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव गेम है।
0: जी
1: एक साइड जो है खिलाड़ी अपने आप को बचाने के लिए खड़े होते हैं, दूसरी साइड जो रेडर जो है उनको उनसे अंक प्राप्त करने के लिए जाते हैं जी।
0: और इसकी क्या हिस्ट्री रही है सर, कब से जो है कबड्डी खेला
1: जाता
0: है?
1: वैसे तो इसे जो कबड्डी को जो है वो महाभारत काल से भी जोड़ते हैं कि उस टाइम भी जो है कृष्ण जी सुदामा जी कबड्डी खेला करते थे, लेकिन जो एक्चुअल में

0: इसके जो रूल्स वगैरह है वो 1921 में जो है रूल बनाए गए थे, और उसके बाद 1923 में जो है इसको ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट में अप्लाई किया गया था, और 1982 में जो है एशियन गेम्स में कबड्डी को शामिल किया गया था।
1: और अभी आपकी अगर हम बात करें, आपने कौन सी उम्र में कबड्डी खेलना शुरू किया था?
0: हमने तो बचपन में ही अपने सीनियर को देख के, हमारे बड़े भाई अजय ठाकुर जी जो पद्मश्री अर्जुन अवार्डी हैं, उनको देख देख के हमने खेलना शुरू किया था बचपन से ही। तो लगभग कोई 10-12 साल की उम्र से ही खेलना शुरू कर दिया था हमने उनको देख देख के ना।
1: तो उनको देख के ही आपको इंटरेस्ट आया, या फिर कई बार होता है ना कि बहुत सारी गेम्स होती हैं, देखो कबड्डी क्यों और भी बहुत खेल हैं,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: कबड्डी की तरफ ही आपका रुझान होता चला गया, ऐसा क्यों?
0: हमारे गांव में स्टार्टिंग से ही कबड्डी और कुश्ती के बहुत अच्छे अच्छे जो है खिलाड़ी रहे हैं जी। तो जैसे हम थोड़ा बचपन से थोड़ा ऊपर उठे, हमें थोड़ा समझ आने लगी, तो हम अपने सीनियर्स को देखते थे खेलते हुए, तो हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट पड़ने लगा कि नहीं, हमने भी कबड्डी खेलनी है।
1: जी,
0: बस ऐसे उनको देखते देखते जो है हम भी कबड्डी खेलना शुरू कर दिए जी।
1: इसमें अगर हम बात करें कबड्डी में फाउल्स की, तो
0: जी
1: किस किस तरह के फाउल्स रहते हैं इसमें?
0: फाउल्स तो इसमें जैसे अगर कोई रेडर जाता है रेड करने के लिए, तो अगर जर्सी पुल करता है कोई डिफेंस का खिलाड़ी, उसकी जर्सी पुल करता है तो अंपायर जो है इसको फाउल लेता है। अगर कोई डेंजर टैकल करता है उसको भी अंपायर फाउल लेता है। कोई चार्जिंग करता है, कोई मारता है प्लेयर को, उसको भी फाउल लेता है। कोई अपशब्द बोलता है उसको भी अंपायर फाउल देते हैं।
1: जब भी हम अपने लिए कोई चीज़ चूज़ करते हैं ना, जैसे
0: जी
1: आपने
0: जी
1: कबड्डी गेम काफ़ी छोटी उम्र से खेलना शुरू
0: जी
1: कर लिया,
0: जी
1: तो हमारे घर वाले काफ़ी एक अहम भूमिका निभाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ नहीं खेलना, पढ़ाई करो, उनकी तरफ से कैसा एक सपोर्ट था?
0: हमारे गांव में स्टार्टिंग से ही ऐसा माहौल है कि जो भी बच्चे हैं, एक मतलब माहौल क्रिएट हो गया गांव में,
1: हाँ जी,
0: तो माता पिता रोकते नहीं है, खुद बोलते हैं कि आप जाया करो। एक तो
1: खेलो,
0: बच्चा जो है नशे से बचता है जी,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: सबसे बड़ी बात है बच्चे का एंटरटेनमेंट भी होता है और बच्चे का आगे फ्यूचर भी सिक्योर होता है। अगर वो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो उसका फ्यूचर भी सिक्योर होता है जी। ऐसा कभी नहीं हुआ माँ बाप ने कभी रोका, उन्होंने फुल सपोर्ट की हमें कि नहीं आप खेल लो और आगे बढ़ो और देश का नाम जो है रोशन करो।
1: देखिए, जैसा अभी आपने हमें बताया है कि आपने काफ़ी छोटी उम्र में खेलना शुरू कर दिया था कबड्डी,
0: जी
1: तो बचपन में क्या होता है कि बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो खेल लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक वो समय आता है जब हम बहुत सीरियस हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं यार, अब इस चीज़ को मुझे एज अ प्रोफेशन लेना है
0: जी
1: और
0: जी
1: अच्छे से आगे चल के जो है मुझे इसमें करियर बनाना है। आपकी लाइफ में वो समय कब आया जब आपने ये सोचा कि नहीं यार, अब ये सिर्फ खेल नहीं, मुझे करियर बनाना है, इसमें एक अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करनी है?
0: जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो मैं जब रेडी होता था स्कूल के लिए तो मैं छत के ऊपर चढ़ के देखता था कि जो मेरे साथ के जो बच्चे हैं ना, मेरी एज के बच्चे हैं, वो ग्राउंड में खेला करते थे, और मेरे को सुबह जल्दी स्कूल जाना पड़ता था। वो
1: जी
0: गवर्नमेंट स्कूल में थे, उनका लेट लगता था स्कूल, तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार कभी भी मैं भी ऐसे ही इनकी तरह खेल के आराम से मजे से स्कूल जाऊँ।
1: लेट्स,
0: तो फिर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में हुआ तो मैंने जो है नेशनल के लिए हमने जाना था, तब नेशनल फर्स्ट टाइम खेलने के लिए गए, सब जूनियर नेशनल खेलने के लिए गए। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भी आगे मेरे को कबड्डी में जो है फ्यूचर वो सिक्योर करना है, भी आगे मेरे को प्रोफेशन में खेलना लेके चलना है कबड्डी को जो है,
1: जी।
0: तब से जो है मैंने फिर प्रोफेशन में खेलना शुरू कर दिया।
1: और एक काफ़ी एज छोटी होती है उस समय, देखो जब आप
0: जी जी
1: प्लस वन
0: जी
1: प्लस टू, एक ऐसी क्लासेस होती हैं हमारी ना कि
0: जी
1: हम उस टाइम अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि
0: जी
1: वही एक दो क्लास होती है जिसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमारा फ्यूचर अब किस तरफ जाने वाला है। तो उस समय आप पढ़ाई और खेल दोनों कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि अगर आपको खेल में अच्छा करना है तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है,
0: जी जी
1: पढ़ाई भी
0: जी
1: आप नहीं छोड़ सकते हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दोनों
0: बिल्कुल
1: चीज़ें कैसे मैनेज की?
0: वो टफ होता है थोड़ा मैनेज करना साथ के साथ, लेकिन थोड़ा हमारा जो एक माइंड सेट हो जाता है कि जब हमारा कोई कंपटीशन आया है तो हमने उसी के बारे में फोकस करना है, उसी की तरफ ध्यान देना है, और जब एग्ज़ाम आ गई तो थोड़ा ग्राउंड से हटके एग्ज़ाम की तरफ ध्यान देते थे। मतलब ग्राउंड छोड़ना नहीं था,
1: बिल्कुल,
0: एक टाइम कंटिन्यू रखना है, उसके साथ साथ जो है एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, तो ऐसे एडजस्टमेंट करते थे जी।
1: देखिए बहुत मेहनत आपने की है तभी आप वो है ना, एक जगह आपने जो सोची होगी कि हाँ मुझे अचीव करना है, वहाँ पहुँचे हैं। तो आपसे आगे भी अभी हम बात करेंगे कबड्डी के बारे में, तो क्यों ना पहले हम एक गीत सुन लें। तो आपके कोई पसंदीदा गायक या गायिका जिनके गीत आप ज़्यादा सुनते हैं?
0: वैसे तो मैं ऐसे तो सॉन्ग वगैरह ज़्यादा सुनते नहीं, लेकिन अगर कभी सॉन्ग सुनने हो तो आतिफ असलम के जो है सॉन्ग कभी कभार सुन लेते हैं।
1: जी, तो आप आतिफ असलम के गीत सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आइए श्रोताओं सुखविंदर जी के साथ मिलकर सुनते हैं आतिफ असलम द्वारा गाया गया ये प्यारा सा गीत।

0: देखिए, हम बात कर रहे हैं कबड्डी के बारे में कार्यक्रम में, तो इसमें अगर मैं बात करूं कैटेगरीज की,
1: जी,
0: कौन कौन सी कैटेगरीज रहती हैं इसमें?
1: स्टार्टिंग जो है सब जूनियर से होती है, जिसमें जो है अंडर 14, अंडर 15 से नीचे नीचे के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद अंडर 19 जूनियर नेशनल का आ जाता है, जो अंडर 20 के नीचे नीचे के बच्चे रहते हैं। उसके बाद सीनियर कैटेगरी आ जाती है इसमें।
0: इसका जो ग्राउंड होता है उसकी क्या एक लेंथ विड्थ रहती है?
1: इसकी 13 बाई 10 की होती है जी, 13 मीटर की इसकी लंबाई होती है और 10 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है जी।
0: गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम रहता
1: नहीं,
0: है?
1: अलग अलग है जी। गर्ल्स का 11 बाई 10 का होता है जी, और बॉयज़ का 13 बाई 10 का होता है।
0: अभी जो आपने हमने कैटेगरीज जो आपने बताई, वो
1: जी
0: क्या
1: जी
0: गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेम रहती हैं?
1: नहीं, गर्ल्स का जो है ग्राउंड जो सेम ही रहेगा जी,
0: जी।
1: लेकिन बॉयज़ का ग्राउंड जो है वो जूनियर में और सीनियर में सेम रहेगा, लेकिन सब जूनियर में छोटा हो जाता है।
0: और इसका देखिए जो डायमेंशन जैसे आप बता रहे हैं
1: जी
0: ना हमें,
1: जी
0: लेकिन हमने बीच में देखा एक सेंटर लाइन होती है,
1: सेंटर लाइन होती है,
0: बोनस
1: वॉक
0: लाइन
1: लाइन
0: भी
1: होती है, फिर
0: होती है।
1: बोनस लाइन होती
0: जी,
1: है जी।
0: उनमें क्या एक डिस्टेंस रहता है?

0: क्या रहता है
1: वो जो
0: उसमें?
1: सेंटर लाइन से बोक लाइन की दूरी जो 3.75 मीटर होती है,
0: जी
1: और 1 मीटर की दूरी होती है बोक लाइन से बोनस की, और 1.75 जो है उसके पीछे बच जाता है। ये दोनों साइड मतलब ऐसे 6.5-6 मीटर दोनों साइड कवर करती हैं, एक
0: जी
1: एक मीटर की इसकी लॉबी होती है जी।
0: इसमें चोट लगने का डर रहता है देखो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: ज्यादा
1: जी
0: ना,
1: ये
0: क्योंकि पहले
1: तो
0: तो बाहर खेली जाती थी तब तो ऑब्वियसली बहुत चोट लगती थी,
1: जी
0: लेकिन अब जब
1: जी
0: से मैट्स पे खेली जाने लगी, इंडोर
1: जी
0: गेम बन गया, तो आपको क्या लगता है क्या एक डिफरेंस आया है, और चोट लगने के चांसेस कितने कम हुए हैं या बड़े हैं, क्या लगता है?
1: जो मिट्टी पे पहले जब खेलते थे ना तो मतलब बाहरी चोटें ज़्यादा लगती थी कि
0: बिल्कुल
1: छिल गया, घुटना छिल गया, या कभी हाथ छिल गया, कभी शोल्डर छिल गया, ऐसी इंजरी ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से कबड्डी मैट पे आई है ना जी, कबड्डी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। मिट्टी पे
0: जी
1: थोड़ा स्लो होती है, कबड्डी मैट पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, लेकिन अंदरूनी इंजरी ज़्यादा हो गया। कभी घुटने की इंजरी, अंदर से लिगामेंट वगैरह क्रैक हो गए, एंकल ट्विस्ट हो गया, ये इंजरी जो है मैट पे थोड़ी ज़्यादा हो गई है।
0: ज्यादा हो गई है
1: जी जी जी
0: बेसिकली, इंजरीज बाहर भी होती थी और अंदर भी
1: बाहर
0: हो
1: भी
0: रही है,
1: होती थी
0: लेकिन
1: जी
0: वही है
1: जी
0: कि बाहर मिट्टी में जो चोट लगती थी वो जल्दी हील हो
1: वो
0: जाती
1: जल्दी हील
0: थी।
1: हो जाती थी, लेकिन जो ये मैट पे इंजरी होती है इसको थोड़ा टाइम लगता है, या ऑपरेट भी करवाना पड़ जाता है कई
0: जी
1: बार जी।
0: और देखिए जैसे इंजरीज इसमें होती हैं
1: सेफ
0: तो क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें
1: जी
0: देखने से ही देखिए कहीं ना कहीं लगता है ना
1: जी
0: कि
1: जी
0: इसमें चोट लग जाती है, जिस तरह से पकड़ते हैं
1: जी
0: छुड़ाते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं?
1: सेफ्टी ऐसे है जी, मैच से पहले ही प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी जी।
0: जी
1: अगर हमारे पता है कि हमारे घुटने पे चोट लग सकती है तो हमें दोनों घुटनों में जो है पहले से ही नी कैप जो है डाल के रखने चाहिए। हमें पता है कि मेरे एंकल में लग सकती है तो बैंडेज बांध देंगे वहाँ पे, रिस्ट में लग सकती है वहाँ बांध देंगे, मतलब अपना बचाव जो है पहले ही करना पड़ेगा जी।
0: और देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं कबड्डी के बारे में, तो इस क्षेत्र में आज तक आपने जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं
1: जी
0: उनके बारे में हम आप भी की ही जुबानी जानना चाहेंगे।
1: मैंने जी 2009-10 से जो है प्रोफेशनल में खेलना शुरू किया था, वहाँ से जो है नेशनल वगैरह, सब जूनियर नेशनल, उसके बाद जूनियर नेशनल, फिर 2014 में केरला में हम खेलने गए थे जी, वहाँ पे हमारा गोल्ड मेडल आया था। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई में भी रहा हूँ बिलासपुर में, 5 साल मैंने वहाँ पे प्रशिक्षण लिया है, और वहाँ से मेरी सिलेक्शन जो है साई की टीम में हुई थी, और मैं फर्स्ट हिमाचल का गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हूँ जी। बॉयज़ में ना
0: जी
1: जूनियर
0: जी
1: नेशनल में मैं फर्स्ट, सबसे पहले जब गोल्ड मेडल आया था तो मैं ही लेके आया था, साई
0: जी
1: की टीम से खेला था मैं, और हमारा गोल्ड मेडल आया था जी। उसके बाद तो काफ़ी लड़कों ने फिर दोबारा खेला, उनके भी मेडल आए हैं, लेकिन फर्स्ट जो है जूनियर नेशनल में मेडल आया था बॉयज़ में वो मेरा ही आया था जी।
0: जी देखिए बहुत गर्व की बात होती है जब आप ऐसे अचीवमेंट्स करते हैं, ना
1: जी
0: केवल फैमिली के लिए, इनफैक्ट आपके जो सराउंडिंग एरियाज हैं, या
1: जी
0: आप
1: जी
0: कब आगे
1: बिल्कुल
0: चल के अगर आप देखिए नेशनल तक गए हैं तो आपके प्रदेश के लिए भी एक बहुत गौरव की बात होती है
1: जी
0: कि नहीं
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल
0: बच्चा यहाँ से गया है। तो इस सब के लिए देखो किसी ना किसी ने आपको तैयार किया होगा, क्योंकि हर चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है हमें,
1: बिल्कुल
0: हम
1: जी
0: ये नहीं कर सकते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ खेल रहा हूँ। अब गेम्स हैं उन्हें टेक्निक के साथ सीखना भी बहुत
1: जी
0: ज़रूरी
1: जी
0: है,
1: जी जी जी
0: तो आपके कोचेज कौन रहे हैं, क्योंकि वैसे तो आपने स्कूल टाइम से खेलना शुरू कर दिया था,
1: जी
0: लेकिन जब हम आगे एक प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट करते हैं तो कोचेज की हमें
1: जी जी
0: ज़रूरत
1: जी
0: रहती है, कौन कौन आपके कोचेज रहे हैं?
1: तो सबसे पहले तो हम अजय ठाकुर, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, उनको देखकर ही सीखते थे, वही हमें
0: जी
1: सिखाते थे थोड़ा बहुत जितना भी सिखाते थे। उसके बाद मेरी सिलेक्शन जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिलासपुर में हो गई मेरी जी। उसके बाद वहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे नंदलाल सर हैं बिलासपुर से, वो कोच रहे हैं। उसके बाद कृष्ण सर थे, उसके बाद हमारे गाँव से थे कोच श्री जयपाल चंदेल जी, वो हमारे कोच रहे। उन्होंने जो है हमें प्रॉपरली मतलब स्किल सिखाई कि कैसे हमें आगे खेलना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके हिसाब से हम खेलते थे, फिर तभी हमारे नेशनल में जो है मेडल आए।
0: श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक और संगीतमय विराम का, तो आइए सुनते हैं मिलकर आतिफ असलम द्वारा गाया गया ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से बात करते हैं सुखविंदर जी से। कहाँ कहाँ गए हैं आप इन मैचेस को खेलने आज तक?
1: मैंने जो है जी पूरा ऑल इंडिया घूम लिया है, सिर्फ ईस्ट को छोड़ के। जम्मू, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पूरे मतलब पंजाब, चंडीगढ़, हर जगह खेले हैं हमने नेशनल।
0: देखिए वैसे तो क्या होता है, अब तो चलो आगे चल के काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में जब आप बाहर निकले ना अपने घर से,
1: जी,
0: तो कैसा एक अनुभव था आपका, कैसी वो एक जर्नी थी? क्योंकि अपने घर से देखो पहली बार बाहर
1: जी,
0: निकलना,
1: जी,
0: पेरेंट्स
1: जी,
0: के बिना निकलना, चलो कोचेस तो ऑब्वियसली साथ होते ही
1: जी,
0: हैं,
1: जी,
0: लेकिन वही है ना कि पहली बार आप माँ बाप के बिना बाहर निकलते हैं, कैसी एक जर्नी रही है आज तक आपकी और क्या एक अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है आपका?
1: जब स्टार्टिंग में हम ऐसे घर से खेलने के लिए निकले तो हम उस टाइम छोटे बच्चों की तरह ही थे, मतलब 12-13 साल की एज में थे। वैसे डर तो लगता है कि बाहर जाना है, दिल्ली साइड जाना है तो इतनी सारी पब्लिक है, और
0: बिल्कुल
1: ट्रेनों में घूमना फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन कोच साथ थे तो पूरी टीम साथ थी, थोड़ा फिर

0: ऐसा भी फील होता था कि नहीं हम थोड़ा सेफ है अभी हम।
1: कई बार हमारे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, जैसे आपने कहा ना कि यहाँ डर भी लगता है,
0: जी
1: फिर भी हम
0: जी जी
1: निकलते हैं क्योंकि हमें अगर कुछ करना है ना तो
0: जी
1: ऑब्वियसली हमें
0: निकलना
1: निकलना
0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कई बार हो जाता है ना लाइफ में, कई बार ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कई बार अच्छे होते हैं, कई बार अच्छे नहीं भी होते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: आपके साथ कभी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है?
0: हम गए थे जी स्कूल नेशनल खेलने गए थे आंध्रा में ना जी, तो वहाँ से वापस आते टाइम हम जो है वेटिंग हॉल में बैठ गए, ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो एक बंदा आया हमारे पास, अनजान था वो, उसके पास मैजिक कार्ड थे। वो बोलता भी बच्चों आ जाओ मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। वो उसने हमें मैजिक दिखाने के चक्कर में हमें जो इकट्ठा कर लिया और हमारा ध्यान जो है उसकी तरफ चला गया, और
1: अच्छा,
0: हमारे एक लड़के ने पीछे फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था उसने में वो मैजिक मूजिक दिखाने के बाद वो चला गया। जब लड़का वो पीछे देखा फ़ोन
1: तो
0: तो
1: फोन
0: फ़ोन
1: ही नहीं
0: गायब था।
1: था। ओहो,
0: मतलब ऐसे कभी कभार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जी।
1: बिल्कुल। और
0: तो
1: देखो ये चीज़ें ना हमें बहुत कुछ सिखा के भी
0: बिल्कुल
1: जाती
0: जी
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: इस चीज़ से
0: बिल्कुल
1: आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा उस
0: जी जी
1: समय
0: जी
1: की।
0: जी उस टाइम के बाद हमने जो है फ़ोन कभी ऐसे नहीं छोड़ा।
1: बिल्कुल।
0: फ़ोन अगर चार्जिंग करना भी है तो साथ खड़े होकर चार्जिंग करना है।
1: और कबड्डी में अगर मैं बात करूँ ना, जैसे दो टीम्स होती हैं, तो हमने देखा है कि यहाँ सात सात प्लेयर खेलते हैं, तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी रखते हैं आप
0: जी
1: लोग?
0: पहले जो है इसमें पूरी टीम जो है 12 की टीम जाती थी, 12 प्लेयर्स होते थे, लेकिन
1: जी
0: अब थोड़ा इन्होंने थोड़े टाइम से चेंज कर दिया, इसमें 14 प्लेयर जो है पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। 7 प्लेयर जो है अंदर खेलते हैं, जो 7 प्लेयर जो है सब्स्टिट्यूट होते हैं। वो आप दो टाइम आउट होते हैं टीम के पास, टाइम आउट में जो अपना प्लेयर आप चेंज कर सकते हो।
1: और ड्यूरेशन क्या रहती है इस गेम की?
0: इसकी 20-5-20 का टाइम होता है, 20 मिनट का एक हाफ होता है, 20 मिनट का सेकेंड हाफ होता है, 5 मिनट का बीच में ब्रेक होता है।
1: और मान लीजिए कि टाइम से पहले ही एक टीम पूरी आउट हो जाती,
0: जी
1: फिर क्या कंडीशंस रहती हैं आगे?
0: कबड्डी ही सिर्फ एक ऐसी गेम है जी, पूरी टीम आउट होने के बाद भी दोबारा मौका मिलता है, बाकी किसी भी गेम में ऐसा नहीं
1: ऐसा
0: है
1: नहीं
0: कि
1: होता है?
0: जी
1: वही
0: अगर कोई
1: एग्जैक्टली।
0: आउट हो गया तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन
1: जी
0: कबड्डी ही सिर्फ ऐसा खेल है जो आपको बार बार मौका देता है, जितनी बार आप आउट हो गए आप फिर से दोबारा अंदर आएंगे आएंगे,
1: पूरी टीम फिर से अंदर आ
0: पूरी टीम
1: जाती
0: अंदर आएगी
1: है।
0: जी। जब एक बार लोना लग जाता है टीम को, पूरी ऑल आउट हो जाती है,
1: जी
0: तो उसके बाद ऑल आउट होने के बाद पूरी टीम अंदर आएगी दोबारा से, फिर उसको फिर मौका मिलेगा अपना जो है बेस्ट दिखाने का।
1: लोना क्या रहता है इसमें एग्जैक्टली, आपने अभी
0: मतलब
1: बोला।
0: अगर 7 प्लेयर खेलते हैं ना जी,
1: जी
0: तो अगर सातों के सातों प्लेयर आउट हो जाए तो उसको ऑल आउट बोलते हैं।
1: जी
0: ऑल आउट होने के बाद पूरी टीम बाहर जाएगी, उसके बाद फिर अंदर आएगी जी।
1: तो उसका जो दूसरी टीम है उनको कुछ बेनिफिट
0: उनको
1: मिलता है,
0: बेनिफिट मिलता है
1: पॉइंट
0: जी, उनको 7 प्लेयर तो आउट करने के तो पॉइंट मिलेंगे मिलेंगे,
1: मिलेंगे?
0: लेकिन
1: जी
0: 2 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे
1: पूरी टीम को आउट
0: पूरी
1: करने
0: टीम को
1: के।
0: आउट करने के।
1: और बात करें हम कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो क्या क्या रूल रहते हैं, क्योंकि हर गेम में देखो अलग अलग रूल्स रहते हैं, इसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं?
0: रूल्स तो इसमें ऐसा है कि जैसे बोनस हो गया, अगर आप बोनस लेके आते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। अभी इसमें सुपर टैकल कर दिया, अगर आप 3 प्लेयर्स कोर्ट में बचे हैं, 3 या 3 से कम प्लेयर अगर किसी को टैकल करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, एक पकड़ने का मिलता है एक एक्स्ट्रा मिलते हैं जी। बाकी अगर कोई प्लेयर बिना टच किए लॉबी में जाता है तो उसको आउट लिया जाता है, वो भी एक कबड्डी का रूल है।
1: और देखिए अब जानना चाहेंगे स्पोर्ट्स के कुछ बेनिफिट्स, क्योंकि वो चाहे कबड्डी गेम है या
0: जी जी
1: कोई भी
0: जी
1: और गेम है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: आगे चलकर क्या क्या फ़ायदे रहते हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए? क्योंकि अब देखिए खेल रहे हैं लेकिन आगे चल के अर्निंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है,
0: जी
1: तो सर्वाइव करना है तो अर्न भी करना है, उसके
0: जी
1: लिए जॉब्स चाहिए या कुछ अर्निंग सोर्स होना ज़रूरी है। तो अगर मैं स्पोर्ट्स के थ्रू बात करूँ
0: जी
1: तो
0: जी
1: क्या क्या बेनिफिट हैं आगे चल के?
0: देखो जी मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से हमें कबड्डी ने दिया है सब कुछ कबड्डी का दिया हुआ है,
1: जी
0: जो जो है कबड्डी की वजह से लगी, पूरा इंडिया घूम लिया, कबड्डी ने घुमा दिया, मेरे को तो बेनिफिट ही बेनिफिट दिखे इसमें। ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट है, अगर कोई प्रोफेशनल में अच्छा खेलता है तो उसको अपना फ्यूचर सिक्योर दिखता है, वो जॉब भी लगेगा, स्पोर्ट्स कोटा ही बनेगा, और हिमाचल में तो हमारे 3% कोटा वैसे ही दे रखा है
1: वैसे
0: गवर्नमेंट
1: जी
0: ने स्पोर्ट्स वालों के लिए। अगर कोई प्रोफेशन में अच्छा खेलता है, आगे की सोच के चलता है, तो उसका फ्यूचर सिक्योर है जी, उसको
1: बेसिकली
0: जॉब
1: ज़रूरत है
0: मिलेगी
1: तो
0: मिलेगी,
1: मेहनत करने की ज़रूरत
0: मेहनत
1: है।
0: करने की। जी।
1: तो देखिए सुखविंदर सिंह जी, आज हमने आपसे बात कर ली है कबड्डी के बारे में। अब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को या खास करके युवा पीढ़ी जो आपको सुन रही है उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: कि जिस तरह का आजकल माहौल चला हुआ है ना, हम तो चलो मैं तो खुद पुलिस में हूँ, हम तो देखते हैं कि फील्ड में आजकल नशा बहुत ज़्यादा लग गया
1: बहुत
0: उन्हें
1: बहुत
0: जी,
1: जी,
0: हर जगह। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि सिर्फ नीचे के एरिया में या पंजाब के एरिया में, आजकल हिमाचल के एरिया में भी
1: हिमाचल
0: बहुत ज़्यादा जो है नशा जो करने लग गया जी। तो
1: बिल्कुल
0: अगर बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा ना जी, उसको टाइम नहीं मिलेगा कि अपने यारों दोस्तों के साथ घूमने का या नशा करने का। बंदा तभी नशे को लगता है अगर उसके पास फ्री में बैठे यार दोस्त हैं,
1: बिल्कुल
0: वो बोलेंगे कि यार क्या करें, चल आज कुछ नशा कर
1: नया
0: लेते
1: ट्राई
0: हैं।
1: कर लेते
0: तो
1: हैं।
0: अगर बच्चा स्पोर्ट्स में रहेगा नहीं, तो सबसे बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि आपका बच्चा जो है नशे से दूर रहेगा, और सबसे बड़ी बात डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा, स्ट्रेस उसके माइंड में कभी नहीं आएगा, ग्राउंड जाके वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। हमें खुद ऐसा फील होता है।

0: जिस दिन हम ग्राउंड नहीं जाएंगे ना, तो मैं पूरा दिन ऐसे सोचता जैसा लगता है कि यार आज पता नहीं क्या ही हो
1: कुछ तो
0: गया,
1: मिसिंग है,
0: कुछ तो
1: कुछ
0: मिसिंग
1: तो
0: है जी। ग्राउंड
1: बिल्कुल
0: जाके हमें मतलब सब कुछ भूल जाता है जी।
1: जी। तो देखिए सुखविंदर सिंह जी, आज आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियोज़ आए हैं और आपने हमसे बात की है कबड्डी के बारे में, और एक बहुत अच्छा संदेश आपने अभी हमारे श्रोताओं को दिया है। सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू जी।
1: श्रोताओं आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हम अनुमति चाहेंगे कार्यक्रम को संपन्न करने की। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

0: एफएम शिमला से अभी आप सुन रहे थे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
2: हर खुशी
1: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए एफएम।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। साथ ही एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। उन्होंने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसर प्रदान करके उनके जीवन को बदल दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रतिभा को पहचानने, पोषित करने और उसके विकास के लिए सही मंच प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: प्रदेश पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्ति प्रदान करने के लिए आज शिमला स्थित ओकओवर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया ताकि उन्हें मानद हेड कांस्टेबल और मानद एएसआई के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि ये निर्णय उनके योगदान व सेवाओं को उचित सम्मान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद जो देश की सेवा करके प्रदेश की

0: सेवा में अंदर आते हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलती है। पहले देश की सीमाओं पर खड़े रहते हैं, फिर जब पुलिस में आपके लिए जो भर्ती है वो की जाती है, जिस पद पर आप नियुक्त होते हैं इससे पहले उसी पद पर आप रिटायर हो जाते हैं, तो एक सम्मान की कहीं कमी आएगी। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ये अधिकार दिया, हमने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाए और हेड कांस्टेबल से ऑनरियर आपके ASI बनाए, इसलिए ये आपको हमने ऑनरियर सिस्टम को हमने लागू किया।
1: गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में 246 पूर्व सैनिकों को हेड कांस्टेबल और 115 को ASI के रूप में नियुक्ति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। पेश है ये रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं।
2: सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने आज कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा के नवीनीकरण की चर्चा करते हुए ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये आवंटन पिछली UPA सरकार के दौरान आवंटित 104 करोड़ रुपए के अनुदान से लगभग 27 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने पिछले 12 वर्षों में राज्य में अभूतपूर्व रेलवे विकास कार्य किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है HP रेडी परियोजना से आपदा तैयारी, न्यूनीकरण और पुनर्वास प्रणाली होगी मजबूत। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
5: प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। इस क्रम में सरकार ने 2,688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलियंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी HP रेडी परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य प्रदेश भर में आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। ये परियोजना जनवरी 2026 से नवंबर 2030 तक लागू की जाएगी और इसमें आपदा से निपटने की तैयारी, आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्वास तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हाल के वर्षों में आई आपदाओं में प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले 3 वर्षों में ही राज्य में 66 से अधिक बादल फटने की घटनाएं, 234 भूस्खलन और 121 फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन आपदाओं से बड़ी संख्या में जन हानि हुई है और सार्वजनिक अवसंरचना व निजी संपत्ति को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त आपदा के कारण सामान्य जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसी परिस्थिति

0: में एचपी रेडी परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करना ही नहीं बल्कि भविष्य की आपदाओं के प्रति राज्य को अधिक सक्षम और लचीला बनाना है। इस परियोजना के तहत आपदा प्रभावित सार्वजनिक अधोसंरचना जैसे परिवहन नेटवर्क, पेयजल योजनाएं, स्वच्छता प्रणालियां और विद्युत अवसंरचना को पुनर्स्थापित व सुदृढ़ किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य आजीविका और रोजगार के अवसरों को सृजित करना तथा आपदा जोखिम वित्त पोषण और इंश्योरेंस के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित करना है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत संस्थागत क्षमता निर्माण और मजबूत वित्तीय तंत्र को विकसित करने पर भी बल दिया जाएगा। एचपी रेड्डी परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, आपदा रोधी अवसंरचना के निर्माण व प्रोत्साहन, वैज्ञानिक भू उपयोग योजना अपनाने तथा तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और विभिन्न विभागों के समन्वय के माध्यम से सामुदायिक तैयारी को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। सरकार पंचायती राज संस्थाओं, महिला मंडलों, युवक मंडलों व स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करेगी ताकि जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी की संस्कृति विकसित की जा सके। ये पहल न केवल इन कार्यों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान को भी कम करने में मदद करेगी। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी और नियमित निगरानी व मूल्यांकन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश को राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जन सुरक्षा, आजीविका और विकास संबंधी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एचपी रेडी एक विस्तृत कार्य योजना है। ये परियोजना इंगित करती है कि प्रतिरोधी कार्य योजना से सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस पहल के तहत संवेदनशील जिलों और समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास यात्रा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से सुरक्षित रह सके। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। ऐसे समय में एचपी रेडी परियोजना सतत विकास व आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये परियोजना न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और आजीविका को भी मजबूती प्रदान करेगी। ये परियोजना विकास और पर्यावरणीय संतुलन दोनों को साथ लेकर चलने का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में सराहनीय कदम है।
1: आकाशवाणी शिमला एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था एचपी रेडी परियोजना से आपदा तैयारी, न्यूनीकरण और पुनर्वास प्रणाली होगी मजबूत। वाचक स्वर था राजकुमारी चंदेल का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप एफएम शिमला के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए फिल्म संगीत लेकर। संजोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में।

म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिससे शायद ही कोई बोर होता हो, खुशी हो या गम हो, हमेशा साथ निभाते हैं ये गीत। या यूँ भी कह सकते हैं कि संगीत के बिना ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। द ट्रेन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

ये जो जिंदगी हमें मिली है ये एक बार के लिए ही मिली है, बार बार जीने का मौका नहीं मिलता, इसलिए इसे दिल से जिए। वो करो जो दिल कहे, वो नहीं जो लोग कहें, क्योंकि उसे खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है जिसे हम आईने में रोज़ देखते हैं, यानी कि हम खुद। सच्चा झूठा फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में।

सभी युवा साथियों को नमस्कार। आकाशवाणी FM शिमला के इस खास कार्यक्रम युववाणी में मैं प्रथा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे युवा साथियों, संघर्ष का अर्थ तो हम सब भली भांति समझते हैं, लेकिन इन संघर्षों के पीछे छुपे हुए दर्द हर कोई नहीं समझ पाता। चलिए आज इन्हीं स्ट्रगल्स को, उनसे जुड़ी भावनाओं और उनके प्रति संवेदनशीलता के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और आज के समय में हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई अनकही कहानी ज़रूर होती है। हर युवा अनचाहे संघर्षों का सामना कर रहा है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के दबाव में रात रात भर जाग रहा है, तो कोई प्लेसमेंट ना मिलने के डर से बैठा है। किसी के सर पर बेरोज़गारी का बोझ है, तो कोई अपना करियर नहीं डिसाइड कर पा रहा। हम अक्सर किसी को देखकर जल्दी कह देते हैं कि ये बदल गया है या इसमें तो एटीट्यूड आ गया है, लेकिन बिना किसी की कहानी और परिस्थितियों को समझे किसी पर निर्णय सुना देना कितना सही है। यही वो जगह है जहाँ एम्पथी की ज़रूरत होती है। जब हम खुद को किसी और की जगह रखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर इंसान अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। हमारा बिना जज किए किसी की बात सुनना उस टूटे हुए इंसान का सहारा बन सकता है। तभी तो कहा गया है, तुम देख रहे हो जिससे वो महज एक मुस्कुराता चेहरा है, उसने किस आग से खुद को बचाया है तुम्हें क्या मालूम। ज़िंदगी जब भी हमें आज़माती है तो सबसे पहले हमारे सब्र और हौसले का इम्तिहान लेती है। आइए सुनते हैं आज का पहला गीत इस हौसले के नाम।

अभी हमने हौसले का नगमा सुना, लेकिन कई बार यही हौसला तब डगमगाने लगता है जब हमारे संघर्ष जज्बातों और रिश्तों का रूप ले लेते हैं। आजकल एक फ्रेज बहुत मशहूर है, इफ़ दे वॉन्टेड टू दे वुड, यानी अगर किसी को परवाह होती तो वो खुद संपर्क करता। हम इसी सोच में जल्दी से किसी के बारे में राय बना लेते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल और अमित बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के बाद अमित ने अचानक बात करना बंद कर दिया। राहुल ने मान लिया कि अगर अमित को परवाह होती तो वो रिश्ता ज़रूर निभाता। बाद में पता चला कि अमित के पिता को पैरालिसिस हो गया था। वो दिन रात अस्पताल और नौकरी के बीच जूझ रहा था। इतना टूट गया था कि किसी से बात करने तक की हिम्मत नहीं बची थी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं हर इंसान की चुप्पी के पीछे बेरुखी हो। कोई नौकरी जाने, आर्थिक तंगी, डिप्रेशन या मानसिक तनाव से लड़ रहा हो सकता है।

क्या पता कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या करियर की अनिश्चितता से खुद को खो चुका हो। ऐसे में एम्पथी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि दूसरों का दर्द समझने की क्षमता है। हालांकि ये भी ज़रूरी है कि जहां अपमान या मैनिपुलेशन हो वहां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें, लेकिन बिना जाने किसी को जज करना सही नहीं है। दूसरों के अनकहे संघर्षों के समझना ही असली इंसानियत है। तन्हाई के एहसास को बयां करता हुआ आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, अभी जो हमने तन्हाई का नगमा सुना, उसने कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी बंद कोने को छू लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम बाहर से भले ही कितने मैच्योर और कूल दिखने की कोशिश करें, लेकिन हमारे अंदर आज भी एक छोटा सा बच्चा रहता है, हमारा इनर चाइल्ड। वो बच्चा जो आज भी उतना ही संवेदनशील है, उतना ही मासूम है, जो ज़रा सी बात पर उदास हो जाता है और मनाने पर खिलखिला भी उठता है। दोस्तों, हम इंसान ही हैं जो किसी और के दर्द को अपना समझ सकते हैं, इसलिए किसी से इमोशनली जुड़ जाना कोई कमज़ोरी नहीं है, हमारी इंसानियत है। हमारे अंदर का बच्चा पुरानी यादों को इसलिए पकड़े रहता है क्योंकि वहाँ वो सुरक्षित महसूस करता था। जैसे खिलौने टूटने पर बच्चा रोता है, वैसे ही रिश्तों का बदलना हम सहन नहीं कर पाते। हर कोई अपना दर्द अलग तरह से बयां करता है, कोई रोता है, कोई खामोश हो जाता है, तो कोई हंस कर अपने दर्द छुपाता है। अपनी भावनाओं को बोझ मत समझिए, इनके बिना तो ज़िंदगी बेजान है। इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारे आज का एक नया खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, हम सब एक ही दुनिया में रहकर भी अलग अलग सफ़र तय करते हैं। हर इंसान के हालात, उसकी गति और उसके संघर्ष बिल्कुल जुदा है। हम आदतों और शक्ल में भले ही अपने माता पिता जैसे दिखें, पर हम एक स्वतंत्र पहचान हैं। हमारी सोच और भावनाएं सिर्फ हमारी है। ज़िंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ हर किसी को उठाना पड़ता है और मुश्किलें रातों रात गायब नहीं होती। पर याद रखिए, समाज की उम्मीदें कभी अंत नहीं होती। एक कामयाबी मिलते ही अगली डिमांड तैयार रहती है। उस अंधी दौड़ में खुद को हमेशा साबित करने का प्रेशर मत लें। अगर आप कभी थक कर अकेले बैठते हैं तो वो वक्त बर्बाद नहीं, बिल्कुल आपकी हीलिंग का हिस्सा है। ज़िंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है, कभी कभी ठहर कर खुद की आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। खुद को वक्त दीजिए और अपनी रफ्तार का सम्मान कीजिए। जब उम्मीदों का शोर, ओवरथिंकिंग और पहचान का ये गम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कभी कभी ज़िंदगी को तुरंत सुलझाने की ज़िद छोड़ देनी चाहिए। यह अगला गीत युवावस्था की ऊर्जा, दोस्ती और मस्ती को बयां करता है। पेश है

दोस्तों, इस ज़िंदगी में कामयाबी से भी ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो है हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार। सच तो ये है कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी ज़िंदगी पहली बार जी रहा है। जब कोई हमारे पास जीवन की कोई पहले से लिखी गाइडबुक नहीं है तो रिश्तों को समझने में गलतियाँ होना स्वाभाविक है। कई बार हम दूसरों को गलत समझ लेते हैं तो कई बार लोग हमें नहीं समझ पाते। ज़िंदगी इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती है। आज जिन लोगों से हम अनजाने में दूर हो रहे हैं, कल वो हमारे सबसे करीब थे, और जिन पर आज सबसे ज़्यादा भरोसा है, समय के साथ वो रिश्ते बदल सकते हैं। इसलिए किसी को उसकी एक गलती से जज मत कीजिए। प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझिए। आपकी दयालुता यानी काइंडनेस ही आपकी असली पहचान है। अब वक्त है आज की शाम का आखिरी गीत सुनने का। ये गाना जिंदगी के हर रंग को खुलकर जीने और हर हाल में खुश रहने का एक खूबसूरत जश्न है। आइए गुनगुनाते हैं ये गीत।

दोस्तों, सही सोच, संवेदनशीलता और दूसरों को समझने की क्षमता ही असली जीवन शक्ति है। इसी एहसास के साथ कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, पर शाम ही तो है। इस अजनबी सफ़र में हर शख्स है तन्हा। जो कट रहा है वक्त, वो एक इम्तिहान ही तो है। युववाणी में आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रथा अब आपसे इजाजत लेती हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: पर आप हैं FM शिमला के साथ और वक्त हो चुका है फिल्म संगीत का। दिल है तुम्हारा फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाजें हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, समीर के बोल।

जितनी हम कम शिकायतों में उलझेंगे उतना ही ज़्यादा सुकून में रहेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है अपने मन को समझाना, और जिसने अपने मन को समझा लिया उसे जीत लिया, फिर दुनिया जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। कच्चे धागे फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, और साथ हैं कुमार सानू, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फ़तेह अली खान का संगीत।

इंसान की जिंदगी में तीन चीजें बहुत उलझी होती है, दिल, दिमाग और तकदीर। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है, पर होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं मोहब्बतें फिल्म से, लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाजें हैं, आनंद बख्शी ने गीत लिखा और जतिन ललित का संगीत।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। इनमें सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम।

प्रदेश असो, पहाड़ी राज्य असो, मारे पूर्व किनारे जू राज्य असो सात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मारा अपना हिमाचल प्रदेश, एनी के थोड़ी इंदी छूट दे रखे। और साथ ही जो मारा रेगिस्तान वा इलाका सो, या जो गृह मंत्रालय या मारा जो नीति आयोग सो गरीबी खत्म करने के छांटे रखे, तीन दिन कुछ छूट दे रखे। कुछ इलाके के ऐसी स्कीम और जरिए सड़क बनावने एनेरा फैसला पंचायत और इलाके रे नेते लो सकते। 2015-16 तोड़ी तो एनी के पैसा केंद्र सरकार दे थी सारा पैसा, रो एबे केंद्र रो राज्य सरकार दुहीं ने पैसे आप माए बांटो तो बे दे। खास प्रदेश और पहाड़ी राज्य जरा मारा प्रदेश हो सो, एनी के 90% पैसा जू से केंद्र सरकार दें और 10% मारा अपना प्रदेश सरकार दें, जबकि बाकी राज्यों के इंदा 60% और 40% हिसाब हो सो। मारे हिमाचल दी कुल 46,000 किलोमीटर सड़के, माइंदी लगभग 23,500 किलोमीटर सड़के ऐसी स्कीमों दी बनाए रखी। ऐसी स्कीमों रे मकसद एनी रे नाव नाए उसो निकाल सको हमें, जका मकसद उसे नीरा मतलब ग्रामीण आबादी रे समाज रे आर्थिक स्थिति रा सुधार करना। एनी स्कीम रे तीन चरण तो हुई गई है और आजकल चौथा चरण नीरा चाला होंदा, जेनेरा मकसद गांव री सड़को जोड़ियो तेनी रे हालत ठीक करियो, गांव री खेती बाड़ी रे बाजारों सी ते जोड़ने रा सो, आगे री पढ़ाई के स्कूल जोड़ने जू मारे बड़े स्कूल सो तेनी जोड़ने रा सो, अस्पताल मारे शॉर्ट की सीते जोड़ने रा सो। इन्हीं रे जो चार चरण थी है से थी है सबदा पहले तो 2013 तोड़ी थी या रेका चरण दूजा जो थी से 2013 था जोन 2019 तोड़ी, चीजा चरण चाला 2019 जोन 2024 तोड़ी, अरे 2024 का जोन 2029 तोड़ी जो अब चौथा चरण चाला होंदा। इसी स्कीम और चौथे चरण रे साब है 62,500 किलोमीटर नई सड़क बनावने का मकसद उसो, कम आबादी आए गांव जोड़ने का इरादा उसो, जिंदे लगभग 25,000 गांव आने, सीधे इलाके दे आबादी 500 जेरे मो पहले बताओ तेई दी उबी चाहिए, खास इलाके 250 या तेई दी उबी हुई चाहिए, रस ए आबादी 2001 रे साब है, रो 2011 री जनगणना रे साब है उग्रवाद र नक्सली जो इलाके सो जिंदा उग्रवाद नक्सलवाद फैला होंदा तेथे जो शहरी आबादी बसो तो तेथे के भी इसी स्कीम रे जरिए हमें सड़क बनाए सकते। इन्हीं के 70,125 करोड़ रुपये लागणे, जिनी माइंदे 70% जुमारे केंद्र सरकार है और 30% राज्य सरकार देने। सड़के बनाने के नए तरीके बनाए रहे अब प्लास्टिक सीमेंट भस्मा वगैरह जो मारे इन्हीं माइंदी निकलो जरी ईंटोरी भाटी तेनी माइंदी निकलो बाकी जागे दी निकलो तेन नाए अब तेनी के ब्लॉक बोलो तेनी नाए नई सड़के बनावनी। मारे प्रदेश उधर लगभग 1500 किलोमीटर नई सड़के बनावनी, मारे सिरमोरो दी 90 करोड़ नाए 11 नई सड़के बनावने रा प्रस्ताव सो। ऐसी स्कीम दे सड़के पानी केरी मतलब केरी के तिंदी आवनी ऐसी स्कीम दी आवनी, पहले कुछ ही सड़के बनावनी एनेरा प्रस्ताव एरा तो मारे जो पंचायत दाओ प्रस्ताव तेईदा शुरुआत हो और तेईदे बाद से जिले के जाओ, और इंदा सबसे बड़ी बात हो सो जे सड़क जो बनावने से कम से कम 5 किलोमीटर लंबे हुए चाहिए, यदि कम सड़क न हो चाहिए जे यदि कम होली तो से ऐसी स्कीम दे आए सकते। और जो प्रस्ताव मारे पंचायत हुए पंचायत समिति हुई जिला समिति हुई से लोकसभा या राज्यसभा रे नेते जो मारे चुने होंगे बेदरा के हमें तेंद्र साहब है तिंदी पानी जे कोई सड़क पानी ना स्कीमों दे तो तेनेरे बारे लिखियो भेजण लागो हम लोकसभा के अपने नेते के जे कौन इन पानी सड़क हर साल जिला पंचायत प्रस्ताव भेजो और साल और साहब है इसी स्कीम दी हमें सड़क ही पा दे। अब ये जो सजे सड़क तो बनाए पाई रहे इंदिरा

हिसाब के रखना जो बोड़िया पर बोनी रही के ना इन्हीं के अब सरकार है बनाए रखा तरीका इंदा हमारे 3 स्तरों जो एनी देखने रा काम करो रो एनी री गुणवत्ता अब जाँचो तेनी देखो परखो रो तेजी बाद सड़की जू शुरू कर देनी इलाके दी स्कीमर जोड़ी है सड़के बनाने रा ये बढ़िया तरीका सो रब जरी है भी मारे पंचायत रो चुनाव चुकी गई है नोए प्रधान नोए उप प्रधान नोए जो मारे पंच बनी गई है पंचायत समिति जिला समिति रे सदस्य बनी गई है तो तेनों के जायो तुम्हें जो सड़के 5 किलोमीटर दी उबी हो सो 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दी उबी हो सो तेनों के बताए हेरो आगे से भेज ले एनी प्रस्ताव भेज ले रो तब जायो एनी ऐसी स्कीम होती सड़के पाए दे ले तो ये तो कुछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानकारी थी तो आगे कुछ रह के जानकारी भी दे मैं बरतेई तो पहले सुन मैं एक सिरमौरी लोकगीत विकेश शर्मा री आवाज़ दा

बांका मूल का हिमाचला। अबे बांका हिमाचल तबे तो बोल लाजो भाई हमें इन्हीं के कोशिश कर मैं इन्हीं तरक्की के काम कर मैं सारी गौरव सारे इलाके दूर दराज रहे से शॉर्ट के सीते जुड़ ले रो तेनी सीता जुमारे बूणो सो सुबदी जादे सो मारे मुल्को दी मारे प्रदेश दी तो तेनीरा बचाओ वो करना रो तेनीरा बचाओ आजकल है सुबदा बड़ा मुद्दा सो ए तो दे चल रही आजकल है तो दूजा मुद्दा जुमारे अपनी बूणो आगे गई दी बचाओनी अजकल तो दी है जिथे भी देखी आग मिलो देखने के लागे होंगे सारी बूणो फूकी पाई सारी जांगलो फूकी पाई खाली इंदी मारी डाली बूणों फूक दी घास न फूकदा साती जीव जंतु जो तींदे रोंद है जो मारे डाली दे रो भोई दे जीमी गाय रो याहू दे डाय दे रो सेब खत्म हो जाओ तो ये पाप भामे कमायरा आग लाए तो इंदिरा मारे ध्यान रखना जे केरी मारे अपनी बूणो अपनी डाली अपने जंगल जुए आगे ना बचाने अजकल जिथे देखी रो मारे सिरमोर तो अजकल सारे पूरी दारो पूरे दल आगे ना चाले होंगे सारे आग देखियो और एरी तो मारे पहले कुछ दारो जूसी नांगी पहली दियो सर रोय सही कह सर हमें आग लाओ कर रे जो बे हम हो गए बूणो नूली डाली नूली तो कह रख मारे अपना पुशु के जो न्यारा ले होना थोड़ी बोई थी जो छीड़ी है बेरे तो आएगी गैस रोटी बनाने के पर जो गोरे चूल्हे बनाओ तो इन्हीं के जो सूखी होंगी छीड़ी आमो मिलो सेब फूकी जानी साते जो मारी जीव जंतु जो मारी देख रेख जो मिर्ग हो गई थी हमो जो जीव जंतु बचाऊ दी कोनी के मिर्ग तेनी जांगलो दी बूणो दी जो जीव जंतु से तेनी खांदे रो मिर्ग मारे गोरे आवने दे बच दे रो मारी पोशु तेनी ना बचो तो आजकल अरे टाइम हो दे सब दे जादे जानवर ऐसे दे सब बे मर जाओ र साथी जो मारे अरे बोरे जी में असो सेब खत्म हो जाओ र इंदिरा खामी आ जा हमारे के तरफ दा भुगतना पड़ो जे मारा मौसम अब चेंज होने लग रहा अजकल बदलने लग रहा ये जान लग रहा पोता जे तो आंदी असो तो दी माए अब अजकल देखिए अब जो मारे जेठ रे महीने यार जानी जे अब इन लग गया क्या बोलते मारे बरखा लागी गई हेरो जब यूं यूं तो यूं दब के तीवर पत्ता लगता जी यूं यूं पड़ रहा ना पड़ रहा तेनीरा पत्ता लगता ए सब जू मारे बूणो खत्म की डाई खत्म की जंगल खत्म की तेनीरी वजह से होने लग रो जे ए आल रो आ मारा तो हिमाचल बिना यूं रह सको 20-30 साल पहले न्यूए तोड़ी यूं पड़ा थिया अब तो टीरो दाब यूं देखने के मिलता रो जे देखो हम इसी साल तो बहुत कम ही पड़ रहा यूं है रो खाड़ नोटो सूखने लग रही छोए सूखी गई है अब ये सो जे आग लगने री वजह का सो केती बेरो तो लागो ए आग आपे लग जाऊं केती बेरो शून्य के तो लागो है रो जे अजीब शू लागो जे आपे लग सको का आग जेरे मारे काख बोइंश जब है इन्हीं लेखड़े आपे मैं रगड़ खाऊं तो तेन ना वो केती बेरो आग लग जाऊं केती बेरो जेरे अब आजकल है बिजली पड़ो आसमानी बिजली तेन ना आग लग जाऊं रते ही दे जो ये तो लागो जो आप पे लागो चीज़ तो माने बात पर जो हमें लायो कर रहे आदमी लायो कर रहे सीधे सब दी बड़ी बात जेनी हमें बचाए सको जो मारे हाथों रे बात हो सो अब जरी सिलगी उंदी सिगरेट बीड़ी तेनी हार को थी पर कह दें दे बुणो दी रोटी राटी बनाओ जरे कुएं काम करने जा रहा हूँ बुणो दे घास काटने जा रहा हूँ तेथे रोटी बनाई से आग नशोई डों करे तेरे बाद से आग पकड़ दो जर की रेल वगैरह चालो तेथे खेती बेरो रो जे जो पचड़ी गाय से रगड़ खाए गरम हो जाते इसका जो घास आई गया से आग पकड़ सको केती बेरो हमें झालो फूको साटो फूको कांडे फूको जो कंडराए हो मारे घासनी दे तेनी फूकने जो बढ़िया घास जामो तेनी के हमें आग आप पिलायो कर दे तेनी वजह से केती बेरो आए आग

जाओ। और खेती बेरो तो जरे मान लो कुछ कटान को रखा, बिना इजाजत कुछ कटान को रखा कि डाई काट रखी, तो तेनी खत्म करने के सबूत मिटाने के तौब कर देशा मिर्गो मुर्गो भगाने के। अब खेती बेरो इजे काम कर रहा जैसे आग लांद है, खेती बेरो आग आप ही लागी जाओ। और ऐसी लागो ही गर्मी दी सिर्फ तोंदिया ही लागो है रो, मारे नीवे दी चीव खूब लागे होंदे। अब तेनी री जो चाय हो सो चाकटू हो सो तेनी दी वजह से अब खेती बेरो आग फैले भी जाओ। और जे तो तेनी रा जो चिलगो जा सो जे तेनी आग पकड़े पाए रो साथी जे चाकटू दी आग लागी तो सारे गुरी गुरी हो सारे आग लाग जाओ आगे थोड़ी। अब इन गाटे का सो गाटे तो हम सोबी के पोता सो जे बिना डालिए बिना जंगले बिना बुने मारा काम चालें सकता। एक तुम्हारे पशु के जुनियारा से सबसे जरूरी से ये नुमाइंदा मिलना, बाकी तो यही हमें सारे तो जागे जागे घोटू बनाए पाई गौरव बनाए पाई। पर जो कुछ जगह रोए रे तेथे घास घास काटने के जब फूक पा लेते नहीं तो कोई दा जामना। जो मारे डाई हो सो न्यारे के वो री डाई जे ना दूध देने के से जरूरी हो सो सेब खत्म कर देनी मारे इस हिसाब है जे फूकी जालो सारो। जो मारा प्राकृतिक चक्र सो जेनी ना चालो सारा काम चालो बरखा हुआ चीज बोनो माटी उदे ध्रुवणी दे रुको कटाव होने दा रुको सेब दोबारो शुरू हो जालो। रजू मारे जीव जीव वसो बेचारे से आपे के इंदे बुण दे रो जांगड़ दे रो तेनो बचाने रा किए तेनो बचने रा किए साधन न मिलदा तो बरा सेब फूकी जांदी। केती बरो एरिया केती जागे तो मुर्गे वगैरह बेचारे ते थिरो रंदे बोइंदे आंडे तेनी बचावने के अपने तेती फूकी जहाँ से तैरिया तेरी जो चुरक दी गिरो तेरी बाद डाली बुनो फूकियो इलाका देखने लायक बंद रहा देखने के बढ़िया लगता जब अरे आले नो ले तो देखने के अब कहो लागण आग रोकने के तरीके ए बंदी बारे दे बात करो। मैं आग रोकने सब दी बड़ी बात तो पहले यार जे जे आग को थी देखियो मारे देखियो तारे देखियो को थी देखियो सब दे पहले तो कौन ना फोन मारे जंगलाए थे आए के रो फोन को थी कौन ना यो सौ नंबर दिया होंदा 1800 मतलब 1800 1918 1916 नंबरों का है हमें फोन करियो जंगलायती आए गए बताए सकते। तेई बाद जो मारे अपने को निराश हो अपना ध्यान रखना पहले आप इन भूकी तो तेनी के जे तो माटी हो सो कुछ नीच के तो माटी फिर क्या होने चीश हो सो चीश फिर क्या होने एरो बढ़िया किए घारी बड़ी से और घारी लोयो ते ना बछाटी हो हमें आग तेनी हसोए सकते। एरो अपना बचाओ सब दा पहले सो तेनी रा ध्यान रखे जे एक ही बेरो को थी जे आवाज चाली गई तो तेनी रा से ओंडा के आओ आग और तेनी साए तेनी नाए फूकी सको। जेरी झालो झूलो काटनी या किए कंडराए हो सो से तेनी रा ध्यान रखना जे मारे जब ऐसे फूकनी तो या तो निकटी दी फूकनी को थी घासो माइन फूकनी को थी किनारे के लिए तेत ऐसे फूकी सको हमी तेनी कांडे वगैरह जूब अपने घासने जे ठीक होनी मारे निकटी को नहीं घासने। रो लोग को आगे रे बारे तो बताओ आग हसोने के तरीके रो सरकार एप को रखा इनाम देने रहा बसो इंदा प्रावधान मारे और आग लाने आए के सौजा मिली चाहिए आग हसोने आए के चीश माटे औजार देने इनरा काम हमें कर सको। जो मारे जंगलायती आए आओ काम करने आए बेचारे तेनी हसोने आओ तेनो हमें औजार दे सको अपने थोड़ा सा तेनो माटी चीश दे तेनो सारा दे सको। हैरो एनी के सरकार है जेरी रैपिड रिस्पांस टीम बना रखे इको टास्क फोर्स बना रखे रैपिड फॉरेस्ट फायर फाइटिंग फोर्स बना के तो एनी के सब भी के हम जो सब भी मिलियो काम को ना लागो ये सरकारों का काम ना थी ये सब भी हम मिलियो को ना लागो रहा एनी रा ही फायदा हम सब भी के मिलना बाद होता। एनी रे बारे अब आगे बात कर मैं रतई दा पहले सुन मैं एक अगला सिरमौरी लोकगीत।

बुरा नहीं मानना मेरी बातों रा, ये लोक गीत सुना हा मैं सरला ठाकुर री आवाज होता। तो यही पहले हमें सब दे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात की, यही बाद जमारी अपनी बुनो आगे दी केरी बचाऊनी। अब सुन मैं कुछ अब खास खबरें। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है बोलो जे पढ़ाए शक्ति बनाने रा सब दा बढ़िया जरिया सो, जे लोग हमें अपने समाज रे शक्ति बनाने चाहूँ तो तेनी के पढ़ाए सब दा बढ़िया जरिया सो। तेने आज नई दिल्ली जनजातीय वजीफा योजना पाने आए छूटू क्या बोलो जे असली तरह के तौबे होले जो बे समाज रे सारे तबके हर तरह से तरक्की कर ले। तेने एरो बोलो जे वजीफे ना खाली पैसे न मिल दे बल्कि नई है के अपने सपने पूरे करने रा जरिया सो। प्रदेश पुलिस दे लागे होंदे फौजी है आज ओकोबरो जायो मुख्यमंत्री रसान माना जूते ने फौजी के मानक उपाधि देने का फैसला लोआ। पहले केंद्र मंत्री रो हेबीरे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी है बोलो जे केंद्र सरकार है हिमाचल प्रदेश हो दे रेलोरी तरक्की के 2,911 करोड़ रुपये 2026-27 के बांडे रखे। रदूती नई दिल्ली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह दे मुल्क रे 42 पंचायती सम्मानित होनी जेने बढ़िया काम कर रखा। तो अब हमें नई पंचायत चुने रखी तो तेनी के बे तेनों कभी एक आगे बढ़ने रहा एक ये पुरस्कार पाने रहा एक जरिया बने सको। तो अब सुन मैं तुलाराम बौंदली रो साथी आवाज होता है एक बढ़िया से हारून।

मोले रे मलाई ए सुने हामी हारुल र जाँदै जाँदै कुछ सुनि जाऊ तुमे जे जेनी नाए ओ मारे कमाए तेनी फुके ना जाए मेरा भाई।

अभी आप सुन रहे थे सिरमौरी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं महासुई कार्यक्रम।

महासवी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के मीरा वर्मा रा नमस्कार। उम्मीद करूँ हमारे श्रोता ठीक ठाक होले और देखो जी कार्यक्रम और आनंद लड़ने लग रहे होले। आज कार्यक्रम में मेरे दूसो सही जो बातचीत करनी बुजुर्गों के प्रति मारा उत्तरदायित्व और देखो तिथियों लावा बात करनी मारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रे बारे दी और देखो खबरसार और लोकगीत तो उन्हें ही उन्हें। तो सभी तो पहले बात करे लो मैं हमें बुजुर्गों के प्रति मारा उत्तरदायित्व। देखो जी हमें सब जानूँ जो बुजुर्ग जो सो से मारे परिवार और रीढ़ हो और परिवारों दे और समाजों दे हमारे से अहम भूमिका निभाओ। परिवारों दे देखो कभी भी कोई भी काम काज करना हो तो तीनों री सीख सलाह बहुत जरूरी हो और कई बार ईशा हो जहाँ मैं बहुत सोच विचार करने के बाद भी देखो किसी ठोस नतीजे पाए नहीं पहुँचते और जब बुजुर्गों साथी बात की जाओ तो उसे अपने तजुर्बे और अनुभव साथी इसी बात बोली दियो जो हमों के हर तरीके साथी सही लगो। बुजुर्ग आगे जो असो से जिंदगी रहा बेश कीमती अनुभव और तजुर्बा हो और हमों के ये सब बातों तीनों तो तबे सीखने के मिलनी जब हमें तीनों साथी बातचीत कर में और तीनों आगे बैठ में क्योंकि आजकल री भागदौड़ भरी जिंदगी दे शायद हम आगे इतना वक्त भी नहीं है सोचे हमें तीनों आगे बैठू और तीनों री बातचीत सुनो। तो देखो जिसे भाई देखो बचपन दे माए बाप मारी उंगली पकड़ो हम के चलना सिखाओ तीसे ही तब मारी जिम्मेदारी बने जाओ दे भाई बुढ़ापे दे हमें तीनों रा साथ हर कदम पाते दियो देव। और देखो इंसान सब कुछ भूली सको पर अपने पूर्वजों के नहीं भूली सकता इन्हों दो बिना हमारा इतिहास बिल्कुल बेकार है सो और इन्हों दो कटे रोने सही देखो समाज जो सो जोड़ो सही टूटे होंगे डालो रहे समान हो जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान नहीं किया जाता तो इस परिवारों के सुख समृद्धि संतुष्टि और स्वाभिमान कभी भी नहीं आई सकता। बुजुर्ग मारा स्वाभिमान हो बुजुर्ग मारी धरोहर सो और तीनों के सहेजने की जरूरत हो जहाँ मैं परिवारों दे स्थाई रूपों सही सुख शांति और समृद्धि पाना चाहूँ तो परिवारों दे बुजुर्गों का सम्मान जरूर करना चाहिए। माँ बाप देखो अपनी संतानों के हर तरह री असुविधा और तकलीफों दो दूर रखने री भरपूर कोशिश करो और माता पिता अपने दायित्वों के निभाते अपनी तकलीफों और ख्वाहिशों के भी भूली जाओ पर एक ही वक्त तो बाद तीनों का शरीर पूरी तरह सही थकी जाओ और कमज़ोर पड़ जाओ जिस वजह सही से कमाने दे ला

तारा देवी माता मेरी तारा रानी, तो जी बहुत बढ़िया लोक भजन था और गाने लग रहे थे प्रेमदास महंत। बात कर लेनी है हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों के बारे दी। पृथ्वी पर है मानव और अस्तित्व महिलाओं और पुरुषों दोनों री समान भागीदारी रे बिना असंभव असो। से पृथ्वी पर है मानव रे अस्तित्व रे तई बराबर रूपों से ही जिम्मेदार असो। से एक राष्ट्र रे विकास और बढ़ोतरी तई उत्तरदायी भी असो। हालांकि महिला रा अस्तित्व पुरुषों की तुलना दे ज़्यादा महत्वपूर्ण सो, क्योंकि तीनों रे बिना हमें अपने अस्तित्व रे बारे दे नहीं सोची सकते। इथे रीते ही मनुष्यों के विलुप्त होने दो बचाने रीते ही हमों के बालिकाओं के बचाने रे उपाय करने वाले। मारे भारतवर्षों दे एक आम प्रथा सो जिति माँच बेटियों रे जन्मों पाए गर्भपात या हत्या करी दियो

तीनों के समान अवसर, सम्मान और जीवनों दे आगू बढ़ने का मौका दे रो बचाया जाई सको। इतों अलावा सभ्यता का भाग्य तीनों रे हाथों दे को किसी मारी रचनारी जड़ असो। मारे समाजों दे कई तरह री बुराइयां सो, जनी बीचों तो एक असो लड़का पैदा करने री चाहत। मारे समाजों दे हर कोई चाहो एक आदर्श माँ, बहन, पत्नी और बेटी, पर से कभी नहीं चाहते जे से लड़की तीनों रे खूनों री रिश्तेदार हो। इतों अलावा भी मारे समाजों दे कई बुराइयां सो, जे कई माता पिता के लड़की पैदा करने दो बचाने री तई के मजबूर करो, जिसे कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कई और अभ्यास हो। इसे तो बेटियां कई क्षेत्रों दे बगैरों दो आओ किया सो, पर तब भी लोग बगैरों के ही प्राथमिकता दो। बेटियां आप ही के हर क्षेत्रों दे बगैरों दो बेहतर साबित किया सो और अपनी मेहनत और लगन की वजह सही से अंतरिक्षों दी भी पहुँची गई सो। से ज़्यादा प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवनों की तीन के जिम्मेदार हो। इतने अलावा लड़कियां अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा देखभाल और प्यार करने वाली हो। सभी दो बड़ी रो से हर कामों दे अपना 100% दो। बालिकाओं के बचाने तई सरकार कई पहल किए सो और तीनों के बचाने तई कई अभियान भी चलाया सो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकारों द्वारा शुरू की कोई पहल सो, जो लोगों के बालिकाओं के बचाने की तई सक्रिय रूपों से ही प्रोत्साहित करो। इतों अलावा कई गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, कारपोरेट समूह, मानवाधिकार आयोग बालिकाओं के बचाने की तई कई अभियान चलाओ। महिलाओं के खिलाफ अपराध देश और विकास और बढ़ोतरी दे एक बड़ी बाधा सो, हालांकि सरकार इस समस्या के गंभीरता से ही लो और कन्या भ्रूण हत्या के रोकने की तई तीनों अस्पतालों और प्रयोगशालाओं दे लिंग निर्धारण, अल्ट्रासाउंड और स्कैन परीक्षणों पाए प्रतिबंध लाई दिता सो। सरकार ये सभी कदम समाजों के जागरूक करने री तई उठाओ कि लड़कियां भगवानों रा उपहार सो, ना कि बोझ। लड़कियों के बचाने री तई सभी दो पहला कदम हमें अपने घर दो शुरू करना चाहिए। हमें अपने परिवारों रे सदस्यों, पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के तीनों के बचाने री तई प्रोत्साहित करना चाहिए और ओरी लोगों के भी इतने बारे में जागरूक करना चाहिए। एक लड़की इसे जीवन री हकदारा सो, जेती तेसो के लड़के रे बराबर माना जाओ, तेसो के ओरी रे समानी प्यार और सम्मान भी दिया जाना चाहिए। से राष्ट्र रे विकास और बढ़ोतरी दे समान रूपों से ही भाग लो। इतने अलावा से समाज और देश री बेहतरी री तई के भी कड़ी मेहनत करो। तीने अपनी योग्यता भी साबित किए असो और हर क्षेत्रों दे लड़कों ने बराबर खड़ी असो। इतने री तई से जीवित रहने री हकदार असो, क्योंकि तीनों री जीवित रहने रा मतलब मानव जाति रा अस्तित्व असो। बेटियां बहुत मजबूत और दृढ़ निश्चयी हो और अपना ख्याल राखी सको, पर सामाजिक बुराइयों और जागरूकता रे अभाव दे लोग तीनों के मारी दो। इतनी तई तीनों के बचाने री जरूरत असो। सरकार री पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रा उद्देश्य बालिकाओं के बचावना और शिक्षित करना असो। तो जी ये तो थी बातचीत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रे बारे दी। अरे भी सुनो तुसे लोकगीत

सुनीता रघुवंशी आवाज़ों का तुसें ये लोक गीत सुना ए बारिया सौ खबर सारो री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोला जे शिक्षा सशक्तिकरण और आए एक शक्तिशाली साधना सौ ए लोगों के आत्मनिर्भर जागरूक और सक्षम बनाओ। आज नई दिल्ली दे जनजातीय छात्रवृत्ति योजना रे लाभार्थियों के संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बोला जे सही विकास तबे ही संभव असो जब समाजों रे सभी वर्ग सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूपों से ही प्रगति करो। तीने बोला जे सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं जनजातीय समुदाय के उच्च शिक्षा और नए अवसर प्रदान करी रो तीनों रे जीवनों के बदली दीता। राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिभा के पहचानने पोषित करने और तिथेरे विकास और तई सही मंच प्रदान करने री जरूरतों पर बल दीता। राष्ट्रपति बोला जे छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता रा साधन नहीं है सो बल्कि ए युवाओं रे सपनों के पंख देने रा माध्यम सो। तीने बोला जे युवा राष्ट्र री शक्ति आशा और उज्ज्वल भविष्य रा प्रतिनिधित्व करो। तीने युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय रे युवाओं दो आग्रह किया जिसे अपनी जड़ों और अपने लोगों के ना भूलो। प्रदेश पुलिसों के कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानद नियुक्ति प्रदान करने री तई आज शिमला स्थित ओक ओवरो दे आयोजित एक समारोह दे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू रा आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बोला जे राज्य सरकार पूर्व सैनिकों री तई पात्रता सेवा अवधि दे आवश्यक छूट देने रा निर्णय लुआ ताकि तीनों के मानद हेड कॉन्स्टेबल और मानद ASI रे रूपों दे नियुक्ति रा मौका मिली सको। तीने बोला जे ए निर्णय तीनों रे योगदान और सेवाओं के उचित सम्मान प्रदान करने दे सहायक सिद्ध होना। गौरतलब है जे राज्य

सरकारें आलोदई 246 पूर्व सैनिकों के हेड कांस्टेबल और 115 के एएसआई रे रूपों दे नियुक्ति प्रदान की सो। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर बोला जे केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेशों दे रेलवे परियोजनाओं रे विस्तार आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण और तई साल 2026-27 दे 2,911 करोड़ रुपए बांडे सो। तिने आज कांगड़ा रेलवे स्टेशनों पाए रेल सेवा रे नवीनीकरण और चर्चा करते हुए ये बात बोली। अनुराग ठाकुर बोला जे ए आवंटन पिछली यूपीए सरकारों रे दौरान आवंटित 104 करोड़ रुपए रे अनुदानों दो लगभग 27 गुणा ज़्यादा सो। तिने बोला जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार पिछले 12 सालों दे राज्य दे अभूतपूर्व रेलवे विकास और काम किया सो। अनुराग ठाकुर बताया जे भानुपाली बिलासपुर रेल लाइन और काम प्रगति पाया सो और इत्थे पाए पहले ही 6,798 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके सो। तीने बोला जे मानसूनों रे दौरान क्षतिग्रस्त रेल पटरियों और पुल जो ढही गए थे तीनों रे मरम्मतों दो बाद 2 साल बाद पठानकोट जोगिंदर नगर सेवा दोबारा शुरू हो गई सो। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली दे आयोजित किया जाना। देश भर और 42 उत्कृष्ट पंचायतों के ये पुरस्कार प्रदान किए जाने। समारोह रे दौरान 34 ग्राम पंचायतों के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी रे तहत और 8 पंचायतों के नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी रे तहत पुरस्कार दिए जाने। पुरस्कार प्राप्त पंचायतों रे प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और उपलब्धियों पाए प्रस्तुति भी दे ले। तो जी ये तो थी खबर सार और ये भी सुनो तुसे ये लोकगीत।

संत राम शर्मा और हुकम शर्मा रे गाए इस लोकगीत साई मारे कार्यक्रम और भक्त गुआवई पुलाका तोली आने वाले शनिच ने तो ते इजाजत दियो सभी सुनने वाले के राम राम।

जुले पीती मीमा छांगमाला ई आकाशवाणी शिमला इनु गो छेरिंग पालमो धेरिंग की डैग्रीम गोचोगनाइन धेरिंग ओजायाला चिचिम ब्रिज सेना सांबा रंग अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पंद्रहवीं सूत्रीय कार्यक्रम कौरला रंग ग्यकर की लोन न्यापूला लू न्यनपू न्यनपू न्यन्नाइन धेरिंग अंशोला चिचम की सांबा कौरला हजायला सिग्नी सुम शेदनाइन चिचम ते हजालिंगला ग्युतियोगा ई युल ते पीति जिला लाहौल स्पीति उपमंडल स्पीति हिमाचल प्रदेश नांगला योगा काजाना सु चिचम की थारिंग ते किलोमीटर निशु समझी योगा युल ते मीनांग मेथी देमू रंग छू गया सु छिनमु ना सु मीनांग मेथी थोनबुला योगा थांगबू उनला चिचमला डोसा लामते देमू मेका चिचम युल किंग उनला टोकपू नांगला खातपा मीनांग मेथी थोनबुला फुटतोंग चिक जम योगा मुनला ई लामते तोरंगला टोकुशा हतीसु लामते देमो मेका मी तंग सेमजे लिंगला चिचमला डोचेते खापू मीनांग मेती योगा था हई सरकार हिमाचल प्रदेश सु ई लामते जोशी ओका ई लामते चाह की सांबा चिक जोवा ई सांबा ते यंग ई सांबाला स्पेंश सेंट ब्रिज का सेखा ई सांबा ते एशिया की युल थोनशो की सांबा चिक हिनु हतोक रिकॉर्ड चिक का योगा छू गया सो छिनमु नासु ई सांबा मीटर तोंग जी रंग निपचू मीटर फुट ला सेना तोंग चुकसुम तंग अब क्या योगा ठोकपूना किथिल नासु मीटर ग्या तंग निशु थोनबुला योगा ई सांबा डुबचा ला लो चौंगा रंग जिप्सी गोरवा सेका लो नितोंग चुपदुन ला ई सांबा ते डुबची उद्घाटन चुयाते ओई हिमाचल सरकार सु की लोनबु तंग गोवाया चुवा सेका ई सांबा ते चिचम युल तंग किबर युल किन्या भूला जुड़ाई चुई ओका सेका सांबा डुबचा गाबला चिचम युल यंग लांडोजा तंग जा मिनंग मेती याकपु देमु चुंबा सेका ई गाबला होइमी ग्या कि तोंदोक राशन पानी खंगबी गुशा कावा चला ची योन्ना अतिते ला लामुछाई निरो हंगा सका टू भमोयाला लाप्ता तंग नाथपा ग्याला मनखांग रुक्याल जे लिंग ला मिनंग मेती याकपु देमु युवा सका सांबाते चिचम युल तंग पीती लुंगबी याकपु योंगा योंगजी फिलाइनो ई जोई गाबला थारिंगबु रंग हई पीति लाम चिचम युलते लाला मुछाई जुड़ाई चुई अवकाश सेका यंग रिया थनबु ना ई सांबाते मीनांग मेतु थनबुला योका था ई डुबची काल गापू इनोक सेका ई ते हजी क्या कर की इंजीनियर की लहा याकपू रंगकोतपू जिक इनु सका चिचम की सांबाला तनमु तारू मीनांग मेती टूरिस्ट क्या कर की

आने दिकेत की लुयन पुगाबला था ओयाला या अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15वें सूत्र कार्यक्रम की कौला सिग्ने सुम शेनाहिन और जिज्ञाकर ते लोकतंत्र रंग धर्मनिरपेक्ष सेना रंग रंग से की छो फैकन और जिज्ञाकर नंग दू यंग मुस्लिम सिख ईसाई नंग बसंग की छो रंग पारसी रंग जैन समुदाय की यंग अल्पसंख्यक समुदाय फिला मान्यता योगा दी समुदाय की मियाला यंग लापचा गिपचा रंग लापटा आर्थिक विकास फिला सुनिश्चित पहचा फिला और जी सरकार सु दी यो दी कार्यक्रम लागू चुआ सका दी कार्यम की लेहाते चीन उपासना लेहा खाक्षी मुते यर्कित फिला यंग मुख्य दाना यंग पोला जोड़ाई चुई योगा लाभना रंग मांगबू तंगजा यंग रोजगार से न यंग लाहा थोपचा मिजे लब फनबू चुया फिला हिनु यंग दी 15वां सूत्रीय कार्यक्रम ते यंग चीन उपासन ची लाहा खाक्षी मु चीन उपासना और लाभचा रंग और दियाला मांगदू तंगजा जिसे न अल्पसंख्यक समुदाय याला टू याला यंग दिमुचा लापचा यंग खोंजयाला स्कूल तंगजा ते मांगदू तंगजा निपाते चीनवासन छात्रवृत्ति योजना से न होती तेला यंग मेतपू रंग यंग प्रतिभाशील टू याला यंग प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक यंग होती फिला यंग यरके की शिक्षा फिला याकपू लापचा फिला दी छात्रवृत्ति तेचा फिला सुबाते चीन वासन आंगनवाड़ी रंग विद्यालय की सन यहाँ लापचा रहा दिया कि सुविधाएँ यहाँ तेजा फिला यहाँ अति तेंदी अल्पसंख्यक के मंगछिया यहाँ अति टू ये यला दी ते सुविधा या ते मांग दो तेजा फिला यहाँ केंद्र की स्थापना ते मांग दो चुकचा फिला यहाँ जिपाते चीन वासन कौशल विकास से ना दी नांग दो यहाँ क्योंतोंग यला यहाँ सो लेहा पेचा कौन जाए रंदी की लापचा यहाँ रंग लेहा थोपचा फिला या ची मदद होना होती तेजा फिला आपाते चीन वासे ना रोजगार के अवसर थे ना यहाँ लेहा ते यहाँ ची लेहा होना होती आते मांग दो थोप जाते और ये सरकारी रंग निजी ची और क्षेत्रों की लेहा थोप जाते और ये टू याला मांग दो तंग जे फिला मेनो टुकपाते चीनो सब रोजगार ला यहाँ बढ़ावा ते जैसे ना राई लेहा ला यहाँ मांग दू तंग जे फिला दी लेहा यहाँ चुन याला ची ची यहाँ चुन उद्योग याला यहाँ सब रोजगार की फिला मूल थोप जे फिला यहाँ मदद ते जची और यहाँ रो राम दा फेचा और ती की लापचा गिपचा दुन बाते और आने याला

शक्तिकरण यहाँ से ना और याने याला गा लापचे गेपचे अल्पसंख्य आने याला लाप जा रहा हूँ खोजी जूहू याला खोजे याला मूल की खाऊ में ता नाजा या चुया फेला दिकी लाप जा रहा हूँ लोन तेचा यहाँ गेट पाते ची इन वासन और स्वास्थ्य सेवाओं ला और विस्तार और लापचा गेपचा अल्पसंख्य क्षेत्रों की और नाजा की फेला खोजे याला जानकारी ची गुना याला खोजे लोन तेचा रंग गेट पाते ची इन वादी आ आवाज़ की सुविधा से ना मेतपू जी में थी अल्लाह यहाँ देश में ना खोजे अल्लाह देश आ रहा हूँ तिया जुया कि लापचा गेपचा तिया चुकसी खोजे अल्लाह दी थोप का आवाज़ होती कि लापचा गेपा गेपचा ते चुआ ते चीन वस ने यही थूना छू सांगमा कि लापचा रंग होती लोन गेपचा छू या अल्लाह सांगमा पर जा चुकसी सांगमा पर का आवा होती कि लापचा खोजे अल्लाह गेपचा होती कि चुकसी छु सांगमा पर जा गंदा चुया माँ अही कि लापचा गेपचा रंग और ची सुविधाएँ होती कि और स्वास्थ्य की फैला और ची सुविधाएँ होती अला मांग दू खोजे अला लापचा गेपचा यहाँ ताया चुकसी खोजे होती कि यहाँ होती जानकारी या तेजा बुनियादी ढांचे की विकास ने यहाँ ची होगा लम तो अति बिजली रंग मीजे की ची सुविधाएँ अति की लापचा रंग गेपचा अति यहाँ लम मैसेज करूँ लम तो जा बिजली मैसरू यहाँ बिजली क्याल जा अति की लहा गे यहाँ अति चूसी बत चीन वस न बैंक की ची सेवा और ना होती या कि लापचा गेपचा खोज शू या कि लापचा गेपचा होती कि यहाँ चुकसुम बत चीन सामाजिक सुधार से ना यहाँ सुरक्षा से ना यहाँ मेतपू जी में लची घुसा ही होकर सामाजिक सुरक्षा होती है तेजा खोज लापचा गेपचा होती कि लोन का खोज जानकारी का तेजा और उसके तेने ची हुआ सर विभिन्न समुदाय की मी अला यहाँ और तिमुछाए न्यामपूला चिकपा चोरे फेचा खोजा अला न्यामपूला खेरचा यहाँ एकता की बढ़ावा से ना थुल जी न्यामपूला तेचा होती कि लोन का मीना मिति और दी समुदाय अला तेचा फिलाइनो अति तेने चौंगा हुआ ते चीन हुआ से ना और चिकपा के अवसर प्रदान और चिकपा फेचा यहाँ और सम्मान फेचा मी तोबला याकपू फेचा और ची और नए थुल जी देचा भाईचारे से नहीं और तिमुचाई और रंग नौ चोरे और जिमेत चोरी फेचा यहाँ भेदभाव चु चु समय से दिखी लोन चिकते हिनो तेने यंग दिखी मैं तो सन यहाँ दिखी ची ची फंथोक यो कवासन दी लिहाते अल्पसंख्यक समुदाय की मिजे ला गा लपचा रंग यहाँ खक छिनमु लिहा रंग और परिवर्तन बेचा सन यहाँ देवचा चुक से मिजे ला देवचा फीला दी की खाक छिनमु लोनते हिनु यहाँ और बेचा लपचा अति अला यारकेती अला यहाँ मांग दू तंग जा लिहा फेंथोक मी अला चिकपा चोरे फेचा और ची सामाजिक न्याय और नौती का तेचा दी लिहा की राष्ट्रीय एकता से ना और तोले न्यापूला थुल जी देचा रंग अति समावेशी की विकास की दिशा खाक छिनमु चिकिनु सेगा दी ये खोबा चिक चिकिनु सेगा दीते यहाँ और तिंग शोला थी लोन दी कार्यक्रम की ची होती लोन यूनिवर्सन सरकारी योजना दीते हुई सरकारी योजना चिक मांदा और मी गला सम्मान के अवसर ते चा कि यहाँ और लिहा पेचा और ची जिम्मेबारी न होती है कि गा लपचा गिपचा मीमा याला यंग मेतपू याला तेने और तोपला विकास रंग यारकित की धारा की शामिल फेचा फिला हिनु होती थे दीवर की अला समुदाय अला लापचा गा गिपचा रंग और जिम्मेबारी इनो दीते अति फिला दी ओई सर ओई दी क्या करते मजबूत रंग विकसित राष्ट्र चिक बनाई द्वा सका था दी ते होई दी की लोन दी की गाबला था अने डोलमा यांग जुम की लूजी न्यादा जा

yang oi poshit pecherang yarkit yala hongji fila yang yakpu ang di manchte inu khongsu di fila ro ramda ka feka rashtrapati sushuwa ki chhatravritti yojanae te vitte yang yato pecha yak chikpu manda oji khyoktong najung yala yang miklam la dupcha fila lam chik inu sa khongsu shuwa ki khyoktong ye ते राष्ट्र की शक्ति यंग आशा रंग उज्जवल मिजे फिला हिनु खोंग सुशुवा क्योंतों या ते औजी औजी जनजाति मीमांग याला क्योंतों याला लाभचा गेवा की कौनसी यंग यंग तांबी की लाभचा रंग मी याला मजेता दिकी फायदा का निंजा खोंग सु शुवाजी प्रदेश की पुलिस की लिहा पैकन अनमी लिहा पैकन सैनिक यंग दी नियुक्त भेजी पैकन दिंग शिमला नांग दो ओक ओवर रो थोम चिक चिक नांग दो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सु दी की आरम का चुआ सेका खोंगसु दी अफसर नांग दो मुख्यमंत्री शुवा की और जी राष्ट्र सरकार की न्यापू लहा पैकन यंग शू की लहा पैकन और जी यंग कुंजे यला छोटी ची गुशा नौ दी आते यंग मादा है जी और ही कुंजे यला हेड कांस्टेबल रंग यंग ए एस आई की रूप ला कुंजे नियुक्त पैचा की अफसर का थोवा पे सेका कुंजे शुवा की दी फैसला ते कुंजे यला योंदे यंग ची योगदान रंग कौनसे ची सेवा देते और दी यापु सम्मान पैचा फिला यंग दी मुंह जे फिला दी की लहा इनो सेका यंग और इतरिंग महिला सशक्तिकरण की यंग लो जुब्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व नांग तो और ग्याकर की मीमांग लिंग यंग पुला योगा सगा तोले की यारकेत तोले की विश्वास रंग तोले की प्रयास यंग यंग यारके यंग यार खेलते भीला तेंदी लहा चे के नो सेखा दी लाला और मिजे ला यंग मीमांग लिंग ला बदलाव ची का चुआ सेखा दी नांग दो आई मोदी सका सुशुआ की मेतपू शिंगला फेकन रंग आने या क्योंतों या ला कल्याण रंग सशक्तिकरण भीला यंग दी खाक चेन मु पहल चिक इनो चावाक इगाबला था आने चरिंग की लुन्यन पूजी न्यंदा जा

अभी आप सुन रहे थे स्पीति कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत। कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपको सुनवाते हैं भूपराम शर्मा की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर

0: और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध रहेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनगणना 2027 में प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला में जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को जनगणना के दौरान सही जानकारी देने का आग्रह किया है।
1: जनगणना की शुरुआत हुई है, इसमें कल इन्होंने गवर्नर साहब की थी, आज मुख्यमंत्री आवास के घर की जनगणना की है। इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें हमारी जनसंख्या के अनुसार जनगणना की जाएगी। सारी इन्यूमरेशन जो है अभी हाउस वाइज हो रही है, तो इस मौके पर मैं सबको चाहूंगा कि जिसका अपना घर है वो अपने घर को सेल्फ इन्यूमरेशन भी करवा सकता है। जो इन्यूमरेटर है उसके घर पर भी आएंगे, उसको सही जानकारी देनी चाहिए। गाड़ी की जानकारी है, पक्का मकान है, पक्के मकान में क्या सुविधाएं, सब सुविधाओं की जानकारी हिमाचल प्रदेश की जनता इन्यूमरेटर को।
0: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम व बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 11 से 30 सितंबर 2026 तक होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संपन्न किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आज लोक भवन शिमला में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रव्यापी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों में एकता, सद्भाव, पारंपरिक सम्मान और राष्ट्र गौरव का संदेश निरंतर प्रसारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का दृष्टिकोण उपचारात्मक मॉडल से विकसित होकर एक बुनियादी ढांचे में बदल रहा है। इस ढांचे में निवारक, पुनर्वास, उपशामक और वृद्धावस्था देखभाल शामिल है। उन्होंने कहा कि देश में 182,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विजनरी लीडरशिप में हम आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसमें वह विकसित भारत तभी होगा जब हेल्दी इंडिया, और हेल्दी इंडिया बहुत बड़ा की फैक्टर है अगर हमें इसको विकसित भारत बनाना है।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वे आज सोलन जिला के कसौली उपमंडल में काणों के समीप धर्मपुर सुबाथु कठनी मार्ग के कार्य का निरीक्षण करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन 13 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए करीब 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस सड़क का 80% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गढ़खल कसौली को जोड़ने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट प्रतिबंधित सड़क मार्ग पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद सचिवालय का घेराव कर फैसले को वापस लेने की मांग की। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री

0: के साथ अधिवक्ताओं की वार्ता हुई जिसमें समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस उनकी गाड़ियों को रास्ते में रोक रही है जिससे उन्हें समय पर अदालत पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
1: हमारी सब प्रॉब्लम को समझकर बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है, तो हमने भी कुछ प्रपोज किया, कुछ उन्होंने प्रपोज किया, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर हम घूमने नहीं आते, हम यहाँ पर अपने क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है उसके लिए आते थे, तो उन्होंने उस चीज को माना और उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें आपको कंसेशनल जो है जो परमिट्स हैं वो दिए जाएंगे और इन दी मीन टाइम आपको वो जो सिस्टम है चलेगा, लेकिन वो वही वकील आ सकेंगे जिनको सर्टिफाई हमारे बार के प्रधान कर।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना गया। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम।

कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले जो अश्विनी दा नमस्कार राम राम। श्रोतियो सही मायने च माणू विचारां दा बेथा खजाना हुंदा है, एक सच है कने माणू जो समझना चाहिदा, समझने ते ही से अपनी कमियां दूर करी सकदा है कने यही ज्ञान दूजियां जो समझने च मदद करदा है। दिखा जी उसी वजह से दूजा माणू उसको सम्मान देना लगता है कने उसकी इज्जत करना लगता है, सह समझते हैं कि उससे सीखी सकते हैं, भरोसा करी सकते हैं। जालू जालू खरे की समझ बनती है तो सह हौले हौले रिश्ते चो जानना लगता है, उलझना छड़ी दिता है, गुस्सा घट हों कने सोगी सोगी दुख होना भी जो हों छड़ी दिता है, स दुखी नहीं हों। माणी जो खरी सोच कने खरे कर्म गां तक ले जाते हैं, सब खरा हों कने लोग उसने से जुड़ना लगी पाते हैं। दिखा जी ये थी गल एक जी सोचने वाली थी।

कार्यक्रम जो अग्गें वधांदे हुए गल करनी असां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दे बारे च। देखा जी, इस स्कीम की शुरुआत जो है 1 जून 2020 जो की गई थी। कने इस स्कीम का मकसद सड़क च समान बेचने वाले ताई सूक्ष्म कर सहूलियत देना है। इस तहत बगैर गारंटी 10,000 रुपये तो लेकर 50,000 रुपये तक का कर्ज जो है मिलता है। कने इस स्कीम समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज सबसिडी, कने डिजिटल लेन देन पर 100 रुपये का महीने जो है पैसा वापस होता है। इसका मकसद ये भी है कि COVID-19 के रेहड़ी फड़ी आए दे कमी पर जड़ा असर पिया है उन्हें जो आत्मनिर्भर बनाना, कने उन्हें जो पैसे की मदद करना। जेकर स्कीम का मुनाफा चुकने वाला समय पर कर्ज चुकांदा है तो 7% हर साल की दर से सबसिडी सीधे बैंक खाते च उस आई जाएगी। कने UPI के माध्यम से डिजिटल लेन देन करने पर हर महीने 100 रुपये का कैशबैक मिलगा, यानी कि उस पैसे उसके खाते च होंगे। जड़ा भी है कुछ करता है उस 100 रुपये हटी होंगे। शहरी या अर्ध शहरी इलाकों च सड़क किनारे काम करने वाले लोग जिन्हें वाली स्थानीय निकाय द्वारा जारी पहचान पत्र हैं से पात्र हैं। आवेदन PM स्वनिधि पोर्टल या फिर समर्थ के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। कने इसका मकसद छोटे व्यापारियों कने रेहड़ी फड़ी आलियां की मदद करना है। लगाई जाती खास खास खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोलिया है कि प्रदेश सरकार वंचित कने बेसहारा न्याणे की सिक्ख्या ताई चलाए जा करदे टोंग लोन जो हर संभव मदद देंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने बोलिया है कि बीते 1 साल के दौरान विश्वविद्यालय शोध क्षेत्र च बेहतरीन काम होया है। कने आधारभूत ढांचे दे सोगी सोगी शोध पत्रां दी गुणवत्ता च सुधार आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोलिया है कि सिक्ख्या सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। कने लोकां जो आत्मनिर्भर जागरूक कने सक्षम बनांगी। नई दिल्ली च जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभ चुकने वाले जो संबोधित करते हुए बोलिया कि सही विकास का ही संभव है जल समाज के सारे वर्ग समाजिक आर्थिक कने शैक्षणिक रूप से तरक्की करन। अगली खबर है जी, प्रदेश पुलिस कम करते पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्ति देने ताई शिमला स्थित लोक ओवर च आयोजित एक समारोह च मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। कने इस मौके पर उन्होंने बोले कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों ताई पात्रता सेवा अवधि च आवश्यक छूट देने का फैसला लिया ताकि उन्हें मानद हैड कांस्टेबल कने मानद ASI के रूप च नियुक्ति का मौका मिली सके। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह नई दिल्ली च आयोजित होया। कने देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों जो इनाम दिते जाएंगे। समारोह के समय 34 ग्राम पंचायतों जो 3 उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत 8 पंचायतों जो नाना जी देशमुख ते खरी पंचायत कने सतत विकास इनाम श्रेणी के तहत इनाम जो है दिते जाएंगे। अगली खबर है जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कने सांसद अनुराग ठाकुर ने बोलिया है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश च रेलवे स्कीम दे विस्तार उन्हां जो नवा करने यानी कि आधुनिकीकरण च कने वर्ष 2026-27 च 2,911 करोड़ रुपये जो है दित्ते हन। उन्हां अज कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा दे नवीकरण की चर्चा करते हुए यह गल बोली। उन्होंने बोलिया कि यह आवंटन पिछली UPA सरकार के दौरान आवंटित 104 करोड़ के अनुदान से लगभग 27 गुणा मता है।

ई थियाँ खास खास खबर सोचियो देखो आजकल जो है मौसम जो है बदले है, कभी गर्मी हो रही है, कभी जो है ठंड हो जाती है। तो असं जो इस मौसम का जो है ख्याल रखना है, कने इससे क्या होता सर्द गर्म हुआ, कने सर्द गर्म होने से जो है झट बीमार हो जाते, गला खराब होता है, कने बुखार भी होता है। तो असं जो इस मौसम जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कने जे तू ज़्यादा ठंड है तो जे कपड़े ठीक पहनने, कने एकदम ही जियाँ जे कमीजा आई आते हैं तो फिर यह एकदम ठंड हो तो इससे बुखार होते ऐसा नहीं करना है। जे अपने कपड़े जो पहनने का जो ध्यान रखना है, कने मौसम जो है जोड़ा बदलोआ दा है, इस विच भी कोई फ्रिजा का पानी पी जाते हैं, कोई जे एकदम मतलब ठंडे ठंडे कुल्लां बगैर तो पानी पी, इसका ध्यान रखना पानी जो है पीने का, जे है फ्रिज से एकदम कड्डी करी पानी नहीं पीना, ठंडे जूस जो है एकदम नहीं पीना चाहिए, जिससे जो है गला पकड़ा दा है, कने ठंड जो है लगी पवा दी है।

जुले नमस्ते इन हिंची पछाई दो कि स्तंजनांगमो मांगची आकाशवाणी गीथे गर्जे पई प्रोग्राम दो तिमरल लंग यंपो स्वागत लिखत थन हिंजे ती की विषय ती बोंठे फैके थजु फैस खास कर एरी बेती जी बोंठे हेज थजु फैस ख हेज लो नंग विद्यार्थी जीवन नंग जिम्मेवारी लो नंग लोकची पा बेती जी जीवन नंग ताल की जिम्मेवारी बोंठे फैके मी छाई की मीचे रो लोकचुम भक्त छाई बसल ग्यूनशी नंग बुनियादी दौर ते चियन छो थे समय मीच पेचे ज्ञान के जिले चुम मई बल्कि राय व्यक्तित्व चरित्र मिजिस नंग राय भविष्य बोंठे नीव तैयार लिख चियन छो खन आती की भवन रो एपो नंग मजबूत लिखचे बोंठे ते नीव यार तो निर्भर के ये ओ थजु चोक से मी ती भविष्य रे ते क्युक चोक ची लिख चुमगी लोकचुम टाइम रोकची ते बुनियाद लिखचे शुरू के येश अक्सर लोची हैं छो कि लोकची पाई युलगी भविष्य तेश लेकिन भविष्य एपो तेजी मेजिस रोकची के जिक्या मेमेश बल्कि राय जिम्मेवारी हा गोशी नंग निभाई लीजी डुबचीश थे रोकची हिंग जो थे पता दचीश कि लोकची पा बेते जी जीवन जिम्मेवारी यंपो संबंध गहरा तेयेश द विद्यार्थी लो नंग लोकची पा जी गी जीवन गी महत्व खा पोंठे हेज लो नंग लोकचुम सु टाइम नुई नुई लेन लेचा ग्युनशी फ्यस थाई हा गुशा नंग राय रो एपो विकसित लिखचा बोंठे रो एलीज थे अवधि रो मी नुई नुई फ्यस लेन लेचियन छो राय कौशल की पहचान लिखचियन छो नंग राय लक्ष्य रमेन सु भक्ता ख लेन लिखचुम की थस ते येज थजू रो पक्का लिखचियन छो थे भक्ता होश में नुई नुई अवसर रे खुकशुश मगर थे यंपो नुले चुनौती भारदो रे थांगशद चीश थनगी लोकची पबेते जो लोकचा बोंठे होश में बनती बनती साधन तेयेश इंटरनेट डिजिटल तकनीक ऑनलाइन क्लास नंग एआई कृत्रिम बुद्धिमता थे छाएगी यतो जी थे इस्तेमाल लीजी लोकची पा जो होश में लोई के येश पर थे सुविधा छाए यंपो ताल जो जिम्मेवारी रे नोई के येश राय की जिम्मेवारी बोंठे फैनंग लोकची पा बेते जी छाई बसल तेजी जिम्मेवारी राय की बोंठे रमेश ताल दो राय जुक्स स्वास्थ्य टाइम नंग लोकचर रो नोई ध्यान दच ग्यूनशीश नत सत मकिया नंग जूजा मकिया नंग जुक्स रो शेतता नंग लोकचर रो रे थस रमेश नंग जीवन रो रे सफलता खुशीश थे बोंठे बेते जो डंडा पौष्टिक जमीन जरे चूना चूना अमचा व्यायाम लिखचा टाइम दो इपचा नंग इपो इप्स थिंचा थे छाई दो राय दिनचर्या गी हिस्सर बुचा होश मई गुणशीश थे नंग यंपो टाइम गी इपो लीजी इस्तेमाल लिखचा होश मई जरूरी तिहेश समय इरांग जो नोट होपा होश में कीमती तिहेश टिकी बार एल थी नंग तब श्री रमिन मयेश सुमी समय गी सम्मान लिखचीश ताल जो सफलता खुक्षुम पक्का ऐश थन सोशल मीडिया मोबाइल फोन नंग ऑनलाइन मनोरंजन गी बोंठे बनती बनती साधन तेयेश थे छाई गी उपयोग लिखचा नंग नुई नुई लफ्जा लेचा बोंठे लिखचूश पर थे छाई नुई इस्तेमाल ली नंग बेते जोरो राय लक्ष्य रोकची भटकाई लिखचुम गी ताकत रे तेयेश उनंग बेते जो थे तकनीक छाई गी उपयोग कि हा गोशा नंग छुई लिखच ग्यूनशीश द टबर की बोंठे ख जिम्मेवारी हेश थजू बोंठे फेंके

दक्षमची लोकचा नांगयांपो नैतिक मूल्य अनुशासन मेहनत नांग जिम्मेवारी राय जीवन रो हिस्सा ती लिख चुन शीर्ष थन की जिम्मेदार बेतेजी रमिन सुटाइन की सफल नागरिक नांग यूल रो सशक्त लिखची हेश थे लफ्जा नांग यंपो थे फ्यस ख्या खोमजी सुखदास की थिरची ललती हेनकते ललई मिन तो सारी दियाड़ी।

दथंगी समाचार हिंदकते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी लोशीहेश की लोकचा नंग ज्ञान थिंचा ती की होश में ही ताकत तेई साधन दिहेश लोकचा मीजो आत्मनिर्भर जागरूक नंग राई बांग दो शेंशा बोंठे यह तो लिखची।

दिल्ली रो जनजातीय लोक चिपा जी योजना की लाभ थे इंची चुरो राष्ट्रपति जी लो शीर्ष की जब युल की समाज की मी छाए दो लोक चय खुकशुश मते ही पजो आर्थिक या तो खुकशुश व दल्ले एरी युल की विकास संभव है। राष्ट्रपति जी लो त कि छात्रवृत्ति तिकी डवई या तो के जिमेश थे बेते सपना पूरा लिखच बोंठे रही या तो तिहेश एरी युल की बेते जी असल ताकत उम्मीद नांग रमीन सुटाइन की भविष्य हैश। दरुंग वही वही लेक्स की बेते जोरो संस्कृति राई संस्कृति नंग लब्जा नंग राई मीजो ल थलत निलोता। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 जुमरांग्स या नई दिल्ली रो आयोजित लिखशीश युल छाई रोकची 42 तेजी पंचायत जो रो थे इनाम दचुश। जुमरांग्स की दौरान 44 ग्राम पंचायत जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्तर विकास पुरस्कार खुकशीश नांग 8 पंचायत जो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत स्तर विकास पुरस्कार खुकशीश। इनाम खुकशी पद पंचायत की मुख्य राय छाई बसल एपो योजना नांग लेन लिखचुम गी तरीका नांग सफल के चुफेस छाई दुशचुम लुत्ता। दथे नांग यंपो थनगी समाचार ख्या खोम गते दथे प्रोग्राम की आखिर लला हिंद कते गोशियन की गुंचे लला थिरचिपा दर्चा महिला मंडल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त शाम के 7:10 हुए हैं। FM शिमला पर लीजिए पेश है किसान और बागवान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कृषि जगत कार्यक्रम में मैं हूं हेमराज शर्मा
2: और मैं हूं हरि सिंह चंदेल।
1: हरि जी, क्या हाल चाल है आपके?
2: हेमराज जी, मैं तो ठीक हूं और उम्मीद करते कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन है वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्यों में जो है व्यस्त होंगे।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जून का महीना जो है हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी के लिए बहुत ही व्यस्त और महत्वपूर्ण होता है। इस समय गर्मियों की मुख्य फसलें उगाई जाती है और फलों के पेड़ों की विशेष देखभाल की जाती है।
1: बिल्कुल हरि जी, देखिए कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ है इसके बारे में अगर बात करें तो काम की बातों के अंतर्गत हम बात करेंगे कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां, हमारे किसान भाइयों ने किस तरह से बरतनी है, पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे किसान श्रोताओं का, और जानकारीपूर्ण बातचीत के तहत आज किसान भाइयों को जिस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी वह है पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय। रीना देवी जी से जानकारी हासिल करेंगी सुरेखा। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं काम की बातों के अंतर्गत कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां इस विषय के बारे में।
2: जी किसान भाइयों, कृषि रसायनों का पौष रक्षण में विशेष महत्व होता है, परंतु इनका अंधाधुंध अनुचित और अत्यधिक प्रयोग मनुष्य, पालतू जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इनके जहरीले असर के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिनका मुख्य कारण है कि जिन किसानों ने पौष रक्षण रसायनों के सुरक्षित प्रयोग पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो वे आमतौर पर इनका छिड़काव नहीं करते हैं। दूसरा है कि छिड़काव करने वाले मजदूरों, कामगारों को इनसे होने वाले खतरों का पता ही नहीं होता। ये मजदूर किसी भी तरह का सुरक्षा आवरण नहीं लगाते जिससे कि वे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल हरि जी, और देखिए पौध संरक्षण रसायन विशेषकर कीटनाशक अवशेष से पैदा विषाक्तता बहुत हानिकारक होती है। इससे कई भयंकर रोग जैसे कि कैंसर इत्यादि होते हैं। दिल, दिमाग, गुर्दे को नुकसान पहुंचता है और अधिकांश लोग इनके जहरीलेपन से परिचित नहीं होते। सब्जियों में उपज आने के समय बहुत अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों के प्रयोग व सब्जियों के तोड़ने में बहुत कम समय का अंतर होता है। इस कारण सब्जियों के नमूनों में बहुत अधिक स्तर पर कीटनाशक के अवशेष पाए जाते हैं। और देखिए पौध संरक्षण रसायनों के जो अवशेष है उनके पाए जाने के कारण ये भी होते हैं कि देखिए एक तो पौध संरक्षण रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग होना, निर्धारित प्रतीक्षा अवधि का पालन नहीं करना, घटिया स्तर के पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग करना और पौध संरक्षण रसायनों के विक्रेताओं द्वारा किसानों को अधूरी सलाह देना और सिफारिशों के अनुसार पौध संरक्षण रसायन न देना, पौध संरक्षण रसायनों का निर्माण इकाइयों से बाहर बहना तथा बहते पानी में मिलना, और इसके अलावा बचे हुए पौध संरक्षण रसायनों का गलत ढंग से निपटारा व छिड़काव, यंत्रों की सही ढंग से सफाई न करना, फल व सब्जियों को बाजार लाने से पहले पौध संरक्षण रसायनों से उपचारित करना, ये सारे जो है पौध संरक्षण रसायनों के अवशेष पाए जाने के कारण होते हैं।
2: जी किसान भाइयों, इनके जहरीलेपन को देखते हुए यह आवश्यक है कि इनके उपयोग के समय अधिक से अधिक सावधानियां प्रयोग में लाई जाएं। पौष रक्षण रसायनों का खरीदने से लेकर छिड़काव तक का पूरा कार्य जो है व्यस्त तथा जानकार व्यक्ति द्वारा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इन रसायनों के प्रयोग के बारे में विभागीय प्रशिक्षण या विशेषज्ञों की सलाह उन किसानों या छिड़काव करने वाले मजदूरों को लेनी आवश्यक है जो वास्तव में इन रसायनों का प्रयोग तथा छिड़काव करते हैं, और साथ साथ यह भी आवश्यक है

0: इन रसायनों के प्रयोग के बाद सब्जियों के तोड़ने का अंतराल, जिसे प्रतीक्षा अवधि कहा जाता है, का ध्यान रखा जाए ताकि इनके अवशेषों को दूर किया जा सके।
1: बिल्कुल हरी जी, और देखिए खरीदने और परिवहन के समय भी कुछ सावधानियां हमारे किसान भाइयों को बरतनी होती है। जैसे कि विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ही रसायनों का चयन करें, और ये रसायन केवल पंजीकृत कीटनाशक विक्रेता से ही खरीदें जिनके पास वैध लाइसेंस हो, और यह भी सुनिश्चित करें कि रसायन का पैकेट या डिब्बा कहीं से खुला या फटा नहीं हो, बोतल की जो सील है कहीं से टूटी ना हो और कहीं से रिसाव ना हो रहा हो। डिब्बे पर लिखी इस्तेमाल की आखिरी तारीख को ध्यान से पढ़ना चाहिए, आखिरी तारीख खत्म होने के बाद उन्हें नहीं खरीदना है। डिब्बे, बोतल या शीशी पर लिखे या उनके साथ दी गई पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनका पालन करना है। इन रसायनों के जहरीलेपन को बताने के लिए डिब्बे, बोतल या शीशी पर डायमंड के आकार का चित्र बना होता है। यदि लाल रंग का चित्र बना है तो इसका मतलब है कि रसायन अत्यधिक जहरीला है। पीला रंग यह दर्शाता है कि रसायन जहरीला तो है लेकिन लाल रंग के मुकाबले कम जहरीला है। नीला रंग पीले रंग से कम जहरीले का सूचक है। हरा रंग सबसे कम जहरीले का सूचक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस रसायन पर हरे रंग का डायमंड है वह जहरीला नहीं है।
0: जी, और किसान भाइयों, खरीदने के बाद इन रसायनों को अलग पैकिंग में ले जाएं और दूसरी वस्तु के साथ इनको पैक ना करें, और परिवहन के दौरान रसायनों को यात्रियों और खाद्य पदार्थों से दूर ही रखें। रसायनों को लादने से पहले उनकी अच्छी तरह पैकिंग कर लें, और कभी भी अधिक मात्रा में इन रसायनों को अपने सिर, कंधे या पेट पर रखकर ना ले जाएं। एक क्षेत्र में एक बार के छिड़काव के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही रसायन खरीदे। अगर रसायन गिर गया हो तो मनुष्य और पशुओं को इससे दूर रखें और इस पर मिट्टी या लकड़ी का बूरा डाल दें, और वाहन के प्रदूषित भाग को पानी से जरूर धो लें। दूषित खाद्य पदार्थों को जला दें या जमीन में दबा देना चाहिए।
1: बिल्कुल हरी जी, और देखिए भंडारण करते समय भी कुछ सावधानियां हमारे किसान भाइयों को रखनी है। इन रसायनों को घर से दूर सुरक्षित स्थान पर ताले के अंदर रखना है। भंडारण ऐसे स्थान पर करना है जो बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर हो। भंडारण उस कमरे में बिल्कुल नहीं करना है जिसका प्रयोग रात को सोने के लिए किया जाता हो। रसायन कभी भी खाने पीने तथा दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ नहीं रखने हैं। रसायनों को उन्हीं के डिब्बे, बोतल या शीशी में रहने देना चाहिए। पेय पदार्थों की बोतलों में इनको नहीं डालना है।
0: जी, अब बात कर लेते हैं कि घोल बनाते समय आपने किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो उसके लिए किसान भाइयों, आपने डिब्बे के साथ दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, और रसायनों का घोल खुले स्थान पर गहरे बर्तन में बनाएं। घोल बनाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें और बताई गई मात्रा को कम पानी में डालकर किसी लकड़ी के डंडे से घोलें, फिर बताई गई पूरी पानी की मात्रा डालें। डंडे को धोने के बाद कहीं किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। उसके बाद रसायनों को मिलाने के लिए विशेष बर्तनों का प्रयोग करें और हमेशा उन्हीं बर्तनों में रसायनों को मिलाएं। रसायन के पैकेट या शीशी को फाड़कर या दांतों से खोलने की कोशिश ना करें। हमेशा पैकेट को कैंची या चाकू की मदद से खोलें।
1: बिल्कुल, और देखिए रसायनों को खोलते, नापते और मिलाते समय हाथों में दस्ताने तथा मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। नंगे हाथों से ना तो रसायन को निकालें और ना ही उन्हें मिलाएं। रसायनों को उड़ेलते समय ध्यान देना चाहिए कि ना तो ये इधर उधर फैले या गिरे, ना ही इनके छींटे किसी के ऊपर पड़े। जिन रसायनों की धातुओं के साथ प्रतिक्रिया होती है उनका घोल धातु के बर्तनों में ना बनाएं। एक समय में उतना ही घोल बनाएं जितना कि छिड़काव आपने करना हो। स्प्रेयर के टैंक को ना सूंघे। घोल बनाते समय बच्चों या अन्य आदमी और पशुओं को पास में न आने दें।
0: जी, तो हेमराज जी, अब बात कर लेते हैं कि हमारे किसान भाइयों को छिड़काव करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: जी,
0: तो किसान भाइयों, छिड़काव जो है आपने सुबह और शाम ही करना है, क्योंकि ये रसायन आदमी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए छिड़काव करते समय जितना ज्यादा हो सके अपने शरीर को ढांप कर रखें। चेहरे पर मास्क, आंखों पर ऐनक, हाथों में दस्ताने, शरीर पर सुरक्षात्मक कपड़े तथा पांव में गम बूट अवश्य पहने ताकि जहरीला रसायन शरीर के जो है किसी भाग को ना छू पाए। खाने पीने की वस्तुओं को छिड़काव के स्थान से दूर रखें और छिड़काव करते समय खान पान ना करें। छिड़काव करते समय ना तो अपने बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करना है और ना ही तंबाकू को चबाना है। रसायनों से जल आदि प्राकृतिक स्थानों को दूषित ना करें, और छिड़काव करते समय बच्चों, अन्य व्यक्तियों तथा पालतू पशुओं को छिड़काव क्षेत्र से दूर रखें। बंद नोजल को मुंह से फूंक मारकर साफ ना करें। इसे साफ करने के लिए आप पानी, तार या टूथब्रश का इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल जी, और देखिए छिड़काव करते समय आपको कुछ और सावधानियां भी रखनी है, जैसे कि हवा का रुख देखकर छिड़काव करना है। हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव आपने नहीं करना है। ठंडे और शांत मौसम वाले दिन में छिड़काव करें। तेज हवा में छिड़काव आपने नहीं करना है। बच्चों को छिड़काव में आपने नहीं लगाना है। रिसने वाले या खराब छिड़काव यंत्रों का प्रयोग आपने नहीं करना है। यदि वर्षा की संभावना हो तो छिड़काव नहीं करना है। विशेषकर बरसात के दिनों में रसायनों के घोल में स्टिकर डालना आपने नहीं भूलना है। और छिड़काव करने वाले आदमी को किसी भी परिस्थिति में एक दिन में 6 घंटे और प्रति सप्ताह 20 घंटे से अधिक छिड़काव नहीं करने देना है। छिड़काव करने वाले व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आए तो

0: उसे जल्दी ही नजदीक के अस्पताल में ले जाना है तथा साथ में डिब्बे, बोतल या शीशी को भी ले जाएं, या फिर तुरंत आपने डॉक्टर को बुलाना है। हमेशा जो है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अपने साथ रखना है।
1: जी, अब बात कर लेते हैं कि छिड़काव के बाद आपने किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो छिड़काव के बाद हाथों को साबुन से 2 से 3 बार धोएं, पहने हुए कपड़ों को धो लें तथा साबुन के साथ नहाने के बाद ही कुछ खाएं पिएं। बचे हुए घोल को बंजर व निर्जन भूमि जैसे स्थान पर फेंक देना चाहिए। छिड़काव यंत्रों तथा बर्तनों को साफ करने के बाद बचे हुए पानी को गहरे गड्ढे में डाल देना चाहिए। छिड़काव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों को साफ करने के बाद घरेलू कार्यों में इनका उपयोग ना करें और पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें।
0: बिल्कुल, और देखिए कृषि रसायनों की खाली बोतलों या डिब्बों को दैनिक प्रयोग और खाने पीने की वस्तुओं जैसे कि तेल, घी, दालों इत्यादि के रखने के लिए प्रयोग में नहीं लाना है। खाली पैकेट, डिब्बे व बोतल को आपने नष्ट कर देना है या फिर जमीन में गहरा दबा देना है। इन रसायनों का प्रयोग अपनी इच्छा से पशुओं में पड़े पिस्सू या अन्य कीटों को मारने के लिए नहीं करना है। इसके लिए हमेशा जानवरों के डॉक्टर की सलाह आपने लेनी है। और इसके अलावा छिड़काव

प्रयोग और खाने पीने की वस्तुओं जैसे कि तेल, घी, दालों इत्यादि के रखने के लिए प्रयोग में नहीं लाना है। खाली पैकेट, डिब्बे व बोतल को आपने नष्ट कर देना है या फिर जमीन में गहरा दबा देना है। इन रसायनों का प्रयोग अपनी इच्छा से पशुओं में पड़े पिस्सू या अन्य कीटों को मारने के लिए नहीं करना है। इसके लिए हमेशा जानवरों के डॉक्टर की सलाह आपने लेनी है। और इसके अलावा छिड़काव करने के बाद कम से कम एक सप्ताह तक छिड़काव की गई सब्जियों तथा फलों का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं करना है। दवाई के जहरीलेपन के अनुसार यह अवधि लंबी भी हो सकती है। इसकी सूचना रसायनों के साथ मिली पुस्तिका पर दी होती है। तो हरी जी, देखिए ये तो बातचीत हो गई कि किसान भाइयों ने कीटनाशकों के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और किसान भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं एक लोकगीत से। तो आइए किसान भाइयों के साथ हम भी सुनते हैं स्मूथ स्वरों में ये लोकगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: तो हेमराज जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का, जिसका आज आप सुनेंगे पुनः प्रसारण। विषय है पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगी रीना देवी और उनसे बातचीत करेंगी सुरेखा।
2: किसान बागवान श्रोताओं, लीजिए फिर हाजिर हैं लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रीना देवी, जो कि हैं एक कृषक, एक पशुपालक और साथ में हैं एक गृहिणी। तो आइए जानते हैं इनका परिचय इन्हीं की जुबानी।
3: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गांव का नाम हलोट, ग्राम पंचायत गहनिकी में स्थायी निवासी हूँ।
2: किसान भाइयों, आज हम रीना देवी से बातचीत करने वाले हैं पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय इस विषय पर। तो इससे पहले कि हम इस विषय में विस्तार से जाएं, हम रीना जी से जानना चाहेंगे कि वो पशुपालन और खेतीबाड़ी के अलावा और कौन कौन से काम अपने गाँव में करती हैं।
3: पशुपालन और खेतीबाड़ी, ये दो कार्य तो ऐसे हैं जो सभी महिलाएं अपने घर में, अपने गांव में करती हैं, पर मैं इसके अलावा स्वयं सहायता समूह में भी कार्य करती हूँ। सब महिलाएं छोटे स्तर पर प्राकृतिक कृषि भी कर रहे हैं, जो कि शून्य लागत कृषि है। यदि हमें प्राकृतिक कृषि करनी है तो हमें इसके लिए पहाड़ी गाय घर पर रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके गोबर और गौमूत्र के बिना प्राकृतिक कृषि संभव नहीं है।
2: यानी कि रीना जी, आप अपने घर पर ही, गांव पर आप सभी महिलाएं मिलकर पहाड़ी गाय के गोबर, गौमूत्र से बहुत सारे कीटनाशी रसायन बनाती होंगी, बहुत सारे रोगनाशक मिश्रण बनाती होंगी।
3: बिल्कुल जी।
2: तो हम अगर बात करें पशुपालन की, आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि पशुपालन किस तरह से लाभकारी व्यवसाय है ये?
3: पशुपालन से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यदि हम दूध व्यापार करना चाहते हैं तो हम इसका आंकलन जो है वो अलग करते हैं। बैल है और जो बांझ पशु है, इन पशुओं का लाभ की गणना हम थोड़ा अलग रूप से करते हैं।
2: पशुपालन में जब बात आती है तो मुख्य रूप से हमारे सामने आता है दुग्ध उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक अच्छी नस्ल की गाय या भैंस की। तो अच्छी दुधारू गायों के बारे में आप थोड़ा बताएं।
3: जो हमारी अच्छी नस्ल की गायें हैं, जिनको कि हम आसानी से पाल सकते हैं, जो कि है साहिवाल है, रेड सिंधी है, जर्सी है, हॉस्टन है, इनकी जो दूध देने की क्षमता है वो अधिक होती है। परंतु जो हमारी पहाड़ी गायें हैं, उसकी जो दूध देने की क्षमता इनके मुकाबले कम है, लेकिन वो दूध बहुत गुणवत्तापूर्ण होता है।
2: अगर आप दूध उत्पादन कर रहे हैं या दूध का व्यवसाय कर रहे हैं तो कितना फायदा हो सकता है एक दूध उत्पादक को?
3: जो हम बात करेंगे अब साहिवाल, रेड सिंधी और जर्सी हॉस्टन गाय, जिनकी क्षमता अधिक है दूध देने की, तो अगर हम दो गाय अपने घर पे पाल लेते हैं, अगर हमारी एक गाय 10 लीटर दूध हमें प्रतिदिन का देती है, तो ये देखो कि आप आजकल जो हमें दूध की मांग है वो 60 रुपये प्रति लीटर है दूध की मांग। तो ये घर बैठे हमारा जो किसान है वो बहुत अच्छी से दूध जो है वो बेच सकता है
2: जी,
3: और एक अच्छी आय से हम प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। और दूध के अलावा अगर आप गाय का गोबर भी बेचना चाहें तो वो भी एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है कि नहीं?
3: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। अब दूध हम ले रहे हैं, चारा हम दे रहे हैं, तो गोबर भी गाय देती है, जो हम आसानी से, ये इसकी भी मांग बहुत है होती है। जो हमारी एक गाय है 600 रुपये का तो हमें वो दूध देती है
2: जी,
3: और 100 रुपये का हमें एक दिन में वो गोबर देती है, तो वो 700 रुपये का जो लाभ हमें एक दिन का आ जाता है। अगर हम दो गाय पालते हैं तो दो गाय का हमारा ये है कि 1200 हमें दूध का आता है उसका, और जो हमारा 200 है वो गोबर का आता है, 1400 ये हो गया। लेकिन कुछ खर्च भी हमें करना पड़ता है, गाय के लिए हमें कुछ खिलाना भी है, तो 200 रुपये जो ऐसा उसका खर्च है गाय का, जो दाना चोकर पे आता है प्रतिदिन का, वो भी हमें इसमें लग जाता है थोड़ा
2: जी। किसान भाइयों, अगर आप गाय खरीदना चाहते हैं और आप घर पर

0: ही व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है एक गाय खरीदना, और कितना जल्दी जो है वो लाभ देना शुरू कर देती है, जानते हैं रीना जी से। रीना जी बताएं।
1: दुधारू गाय यदि हम आज खरीदते हैं तो आज ही हमें वो लाभ देना शुरू कर देती है। अन्य व्यवसाय जो है, जैसे कृषि है, बागवानी है, हमें अगर करना चाहे उसे, तो उसका लाभ हमें 6 महीने बाद प्राप्त होता है। लेकिन गाय का ये है कि आज खरीदी, आज वो दूध देगी, हम आज ही दूध अपना बाजार में बेच सकते हैं।
0: जी
1: दूध के फायदे तो सभी जानते हैं, ये बताने के लिए मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि हमारे पास शुद्ध दूध अपने घर का होता है। मार्केट से दूध मिलता है पर बहुत मिलावटी
0: जी
1: होता है, ये सब जानते हैं।
0: जी
1: घी अपने घर का होगा, वो शुद्ध होगा। लस्सी होगी जो जिसे हम ग्रहण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य निरोग रहेगा, हमारे बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होगा।
0: जी बिल्कुल, कुपोषण से भी काफ़ी हद तक जो है छुटकारा मिल सकता है और हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी क्योंकि दूध में भरपूर कैल्शियम हमें मिलता है। रीना जी, एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल विदेशी नस्लों की गायों का प्रचलन बहुत है और जो पहाड़ी गाय हैं या देसी नस्ल की गाय हैं वो लगभग दृश्य से गायब ही हो गई हैं, तो आप क्या ऐसा कहना चाहेंगी, क्या हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगी जिससे कि दोबारा से पहाड़ी गाय या देसी नस्लों की गाय पालना शुरू कर दें?
1: ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा है। आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारी ये पहाड़ी गाय है ये तो बिल्कुल गायब हो चुकी है, ये तो सिर्फ हमें सड़कों में दर दर भटकती हुई दिखती है,
0: जी
1: किसी के यहाँ आंगन में बंधी हुई नहीं दिखती। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर हमारी पहाड़ी गाय जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है, ये हमें पालना बहुत जरूरी है। इनके जो गौमूत्र है, कहते हैं ना, उसे घर में अगर छिड़का दिया जाए तो
0: जी
1: हमारा जो पूरा परिवार है, पूरा घर है, वो शुद्ध हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: और जो इनका गोबर है, आज हम प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं, प्राकृतिक कृषि तभी की जा सकती है जब हमारे पास पहाड़ी गाय होगी। पहाड़ी गाय के गौमूत्र गोबर से प्राकृतिक कृषि की जा सकती है। और पहाड़ी गाय को जो पालना है वो इतना मुश्किल काम नहीं है।
0: जी
1: साहीवाल, हॉस्टन, जर्सी की जो ये है, इनका अलग बात है, दूध देने की क्षमता अधिक है। लेकिन जो हमारी पहाड़ी गाय है वो छोटी है, इनका आहार भी कम लगता है, और दिन में तो ये चरने चली जाती है, आसानी से चल लेती है इधर उधर,
0: जी
1: अपना भरण पोषण खुद ही कर लेती है। और जब इन्हें जंगलों में ये चरने जाती है, अपने आप चर के, ये बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां भी है जो ये ग्रहण करती है, और जब हमें ये दूध देती है तो उनका जो सारा पौष्टिक तत्व है वो हमें प्राप्त होता है।
0: जी बिल्कुल
1: दुर्भाग्य की बात पर यह है कि आज जो पशुधन है वो सड़कों में, गलियों में, शहरों में दर दर भटकते हुए देखा जा रहा है। इन पशुओं की हालात को अगर हम देखें तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो एक गौ माता है जो पूरा जीवन हमें दूध देती है, हमारे परिवार को पालती है, हमें पालती है, दूध घी देती है, पर जब वो किसी मतलब कारणवश बांझ हो जाती है या मतलब अन्य कोई कार्य करने योग्य नहीं रहती, तो जो पशुपालक मेरे भाई और बहन है वो उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। मेरे सभी पशुपालक भाइयों बहनों से यही प्रार्थना है कि हम पशुधन का संरक्षण करें। गौ सेवा से बढ़कर अन्य कोई सेवा नहीं है। आज लिखा पढ़ा जो युवक युवतियां है वो शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, परंतु हम आकलन करें और पशुपालन में रुचि रखें तो पशुपालन से बढ़कर अन्य कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं है।
0: जी बिल्कुल बढ़िया बात आपने कही है कि निश्चित ही जो हमारे युवा है, युवा वर्ग है, वो नौकरियों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं और नौकरियां ना पाने के कारण जो है अवसाद के शिकार भी होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप घर पे, गांव पे रहकर ही व्यवसाय करें, कृषि बागवानी करें, बहुत सारे काम जो है आप घर पर कर सकते हैं, प्रकृति के बीच में रहकर, अपनों के बीच में रहकर, एक अलग ही बात होगी।
1: बिल्कुल जी, आप थोड़ा सोचिए कि अगर पशुधन नहीं है तो हमारी कृषि नहीं है, बागवानी नहीं है, दूध घी दही लस्सी आदि नहीं है, तो हमारा जीवन स्वस्थ नहीं है।
0: जी
1: पशुपालन हमारे लिए सर्वोपरि है। जब हमारे पास दूध घी है तो हमें कहीं बाहर से मतलब खरीदने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास घर बैठे अच्छा एक रोजगार है जो हम कर सकते हैं।
0: जी
1: यदि हम इसे व्यापारिक रूप में करना चाहे, पशुओं के लिए हमारे पास गांव में हरा चारा प्राप्त होता है, हमारे पास खेत है, हम अपनी खेती में पशु आहार तैयार कर सकते हैं, अनाज लगा सकते हैं। पशुपालन में दिल लगाकर कार्य करना और इनकी सही देखभाल करना, ये आज की मांग है।
0: जी बिल्कुल रीना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर पशुधन नहीं है तो हमारी कृषि बागवानी नहीं है, हम नहीं हैं, साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी नहीं है।

0: निश्चित सी बात है कि पशुपालन जो है एक लाभकारी व्यवसाय तो है ही, लेकिन समय की मांग भी है, प्रकृति की मांग है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आप रीना देवी जी के विचारों से सहमत होंगे और प्रभावित भी हुए होंगे, क्योंकि ये कृषक हैं, पशुपालक हैं, गृहिणी हैं और एक माँ भी हैं। तो इन्होंने जो है सारे अनुभव अपने साझा किए आपसे। तो रीना जी, आप स्टूडियो में आए और इतने अच्छे विचार आपने हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी जानकारी पूर्ण बातचीत, जिसका विषय था पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय। रीना देवी से जानकारी हासिल कर रही थी सुरेखा। तो हरि जी, देखिए कार्यक्रम में समय हो चला है एक और लोकगीत का, तो आइए किसान भाइयों के साथ हम भी सुनते हैं शकुंतला की आवाज में ये लोकगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो हेमराज जी, अब चलते चलते बात कर लेते हैं कल के आकर्षणों की भी। कल काम की बातों के तहत विषय रहेगा पशुओं की देखभाल, साथ ही मनोरंजन करेंगे प्यारे से लोकगीतों के साथ, और जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय रहेगा प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन।
2: जी तो हरी जी, देखिए अब तो घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति का, तो सभी किसान और बागवान भाई बहनों से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं।
1: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
3: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पुलिस विभाग में अधिकारी स्तर के पद घटाने और निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनगणना 2027 में सही जानकारी देने का लोगों से किया आग्रह। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक तालमेल बढ़ाने पर दिया बल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति देने का राज्यपाल से किया आग्रह। और विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 6 जून से काजा में होगा शुरू। विभिन्न राज्यों के युवा स्पीति घाटी के गांवों की संस्कृति से होंगे रूबरू। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के पद घटाने के बाद अब पुलिस के आला अधिकारियों के पद कम करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य में एक ही काम होने पर भी अलग अलग पद बनाए गए हैं जिनकी जरूरत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उच्च अधिकारियों के पद कम किए जाएं और निचले स्तर पर कर्मियों की भर्ती बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और सभी फैसले मिल बैठकर ही लिए जाएंगे।
5: उच्च अधिकारियों की जो पद है ना, उसको हम कम करने की सोच रहे हैं। इतने सारे डीजीपी है, इतने सारे एडीजीपी है, काम वीकी है, तो थोड़ा सा निचले स्तर पर उसको जरूर कम किया जाए। तो मैंने बात की थी कल ही, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी बने डीजीपी साहब से भी बात की है, इन पदों को भी कम किया जाए। जबकि हमने फॉरेस्ट के आईएफएस ऑफिसर के 117 में से 86 पद हमने कम कर दिए हैं। आईएएस ऑफिसर के अभी 153 से 147 किए हैं। ये छोटा सा प्रदेश है, 75 लाख का प्रदेश है। बड़े पद है, बहुत ज्यादा पोस्टें हम क्रिएट कर देते हैं। कार्या एक ही है, पुलिस में तो ठीक है, लेकिन नीचे कर्मचारियों की पहुंच कम हो, तो निचले स्तर पर हम ज्यादा भर्ती करेंगे और वो सब बैठ के आपसी मेलजोल से ही होगा।
4: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला में जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को जनगणना के दौरान सही जानकारी देने का आग्रह किया है।
5: जनगणना की शुरुआत हुई है, इसमें कल इन्होंने गवर्नर साहब की थी, आज मुख्यमंत्री आवास के घर की जनगणना की है। इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा, जिसमें हमारी जनसंख्या के अनुसार जनगणना की जाएगी। सारी इन्यूमरेशन जो है अभी हाउस वाइज हो रही है, तो इस मौके पर मैं सबको चाहूंगा कि जिसका अपना घर है वो अपने घर को सेल्फ इन्यूमरेशन भी करवा सकता है। जो इन्यूमरेटर है उसके घर पर भी आएंगे, उसको सही जानकारी देनी चाहिए। गाड़ी की जानकारी है, पक्का मकान है, पक्के मकान में

0: क्या सुविधाएं, सब सुविधाओं की जानकारी हिमाचल प्रदेश की जनता इन्यूमरेटरों को जरूर दें।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और प्रदेश की जनगणना संचालन निदेशक दीप शिखा शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच प्रदेश पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्ति प्रदान करने के लिए आज शिमला स्थित ओक ओवर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें मानद हेड कांस्टेबल और मानद एएसआई के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके।
2: सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद जो देश की सेवा करके प्रदेश की सेवा में अंदर आते हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलती है। पहले देश की सीमाओं पर खड़े रहते हैं, फिर जब पुलिस में आपके लिए जो भर्ती है वो की जाती है, जिस पद पर आप नियुक्त होते हैं इससे पहले उसी पद पर आप रिटायर हो जाते हैं, तो एक सम्मान की कहीं कमी पाएगी। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ये अधिकार दिया, हमने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाए और हेड कांस्टेबल से ऑनरियर आपके एएसआई। इसलिए ये आपको हमने ऑनलाइन सिस्टम को हमने लागू किया है।
1: एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आज लोक भवन शिमला में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रव्यापी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों में एकता, सद्भाव, पारंपरिक सम्मान और राष्ट्र गौरव का संदेश निरंतर प्रसारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने समारोह में मौजूद तेलंगाना के नागरिकों को सम्मानित भी किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्र में लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। शिमला स्थित लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति संविधान के शेड्यूल 5 के अंतर्गत राज्यपाल के पास निहित है। जगत सिंह नेगी ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 को हटाने का अनुरोध भी किया, ताकि प्रदेश के जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों की युवा पीढ़ी को नौतोड़ का लाभ मिल सके। राज्यपाल ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की और जल्द उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वे आज सोलन जिला के कसौली उपमंडल में काणों के समीप धर्मपुर सुबाथू कठनी मार्ग के कार्य का निरीक्षण करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन 13 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए करीब 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस सड़क का 80% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गढ़खल कसौली को जोड़ने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में 6 जून से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से युवा भाग लेंगे। इस दौरान युवाओं को स्पीति घाटी के 10 चयनित गांवों में स्थानीय परंपराओं व संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: स्पीति घाटी के मुख्यालय काजा में 6 जून से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 50 युवा भाग लेंगे। युवाओं को सीमांत क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं और विकास को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। प्रतिभागी बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप से आएंगे। युवाओं को स्पीति के 10 चयनित गाँवों में समूह के रूप में भेजा जाएगा। वहाँ वे स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनके जीवन और संस्कृति को समझेंगे। ये कार्यक्रम मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और ITBP भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। यह पहल युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट प्रतिबंधित सड़क मार्ग पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने आज मुख्यमंत्री के सरकारी

0: आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद सचिवालय का घेराव कर फैसले को वापस लेने की मांग की। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ताओं की वार्ता हुई, जिसमें समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस उनकी गाड़ियों को रास्ते में रोक रही है, जिससे उन्हें समय पर अदालत पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
1: हमारी सब प्रॉब्लम को समझकर बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है, तो हमने भी कुछ प्रपोज किया, कुछ उन्होंने प्रपोज किया, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर हम घूमने नहीं आते हैं, हम यहाँ पर अपने क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है उसके लिए आते थे, तो उन्होंने उस चीज को माना और उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें आपको कंसेशनल जो है जो परमिट्स हैं वो दिए जाएंगे और इन दी मीन टाइम आपको वो जो सिस्टम है चलेगा, लेकिन वो वही वकील आ सकेंगे जिनको सर्टिफाई हमारे बार के प्रधान करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस विभाग में अधिकारी स्तर के पद घटाने और निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनगणना 2027 में सही जानकारी देने का लोगों से किया आग्रह। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक तालमेल बढ़ाने पर दिया बल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति देने का राज्यपाल से किया आग्रह। और विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 6 जून से काजा में होगा शुरू, विभिन्न राज्यों के युवा स्पीति घाटी के गांवों की संस्कृति से होंगे रूबरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM।

0: शिमला
1: शिमला
2: हर खुशी अब लगे नमी।
0: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा एफएम स्टेशन आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं संजय कुमार हाजिर हो चुका हूं भूले बिसरे गीतों की गीतमाला के साथ।

तो साथियों, ये था कार्यक्रम का पहला गीत। इसके बाद आइए सुनते हैं कागज़ के फूल फिल्म का गीत, गीता दत्त की आवाज़ में। शब्द रचना है कैफी आज़मी की और संगीत निर्देशन है एस डी बर्मन का।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश

0: को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: इसके बाद आइए अगला गीत सुनते हैं लव मैरिज फिल्म से। इस गीत को लिखा है सजय पुरनिया और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

इसी कड़ी में आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा और सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया मधुमति फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें, बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे

QR कोड है उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

0: भूले बिसरे गीतों में आज बस इतना ही।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

8:30 हुए हैं एफएम शिमला पर, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत से।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया दिल ही दिल में फिल्म का गीत। इसे गाया है श्रीनिवास और स्वर्णलता ने।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र 103.7 MHz पर समाचार संध्या। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया।

0: प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की

0: इनसे चार और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2-3 ब्रांचेस आल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। रात्रि के 9:15 हुए हैं। एफएम शिमला पर लीजिए पेश है एक फिल्म से कार्यक्रम। हमारी आज की फिल्म है

साथियों, थ्री इडियट्स एक लोकप्रिय हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसका निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था और ये फिल्म 25 दिसंबर 2009 को रिलीज़ हुई थी और इसमें आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

तो साथियों, ये था कार्यक्रम का पहला गीत और एक फिल्म से प्रोग्राम में आज आप सुन रहे हैं थ्री इडियट्स फिल्म के गीत। चलिए फिल्म की कहानी की बात करते हैं। फिल्म तीन इंजीनियरिंग छात्रों रैंचो फरहान और राजू की दोस्ती पर आधारित है और रैंचो पढ़ाई को केवल अंकों के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए करने में भरोसा

सकता है, और उसकी सोच कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल वायरस से टकराती रहती है। और वर्षों बाद फरहान और राजू अपने खोए हुए दोस्त रेंचो की तलाश करते हैं, और इसी यात्रा में कॉलेज के दिनों की यादें सामने आती है, और फिल्म शिक्षा व्यवस्था, दोस्ती, सपनों और जीवन में सफलता के सही अर्थ पर गहरा संदेश देती है।

रेंचो का किरदार आमिर खान ने निभाया था जिज्ञासा और रचनात्मकता सोच का प्रतीक है। वो दिखाता है कि असली शिक्षा समझने में है, केवल याद करने में नहीं है। और फिल्म में ऑल इज़ वेल सिर्फ एक मज़ेदार गाना नहीं है बल्कि कठिन परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखने का भी संदेश देता है। और राजू का किरदार आर्थिक दबाव और परिवार की उम्मीदों से जूझने वाले कई छात्रों की वास्तविक स्थिति को भी दर्शाता है। फरहान की कहानी बताती है कि अपने जुनून यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का पीछा करना कितना ज़रूरी है, भले ही परिवार की अपेक्षाएं आपसे कुछ और हों। और इस फिल्म में छात्र आत्महत्या और अत्यधिक शैक्षणिक दबाव जैसे गंभीर मुद्दों को भी उठाया गया है। और फिल्म का सबसे बड़ा संदेश अगर है तो वो ये है कि सीखने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि समझ विकसित करना और अपनी क्षमता को पहचानना है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त 9:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर लीजिए पेश है ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन। और साथियों, इस कार्यक्रम में हमें रहता है आप इंतजार आपके मेल का, और कुछ चुनिंदा फिल्में लेकर हम आते हैं जिसके लिए आपके मेल हम शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। आज की फिल्में हैं आक्रोश, धूम 3, दिल परदेसी हो गया, मोहब्बत और प्यार हो गया। हमारा ईमेल आईडी airfmshimlamusicmail@gmail.com। लिख भेजिए अपना नाम, पता और फिल्म का नाम। हम कर रहे हैं आपके मेल के आने का इंतज़ार।

और इसी के साथ ही तेज़ तरार गति के साथ आपके लगातार मेल आना शुरू हो चुके हैं। चलिए आपका मेल शामिल करते हैं। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश, आक्रोश फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। पांडर कवड़ा महाराष्ट्र से अनिल बोरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री हमें मेल कर रहे हैं, और सूरज, प्राची और एकलव्य का भी हमें मेल मिला है इसी फिल्म के लिए। और जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका बलविंदर और जयतक और मीका वर्क हमें मेल कर रहे हैं आक्रोश फिल्म के लिए। कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह और सीटी दीवाना का हमें मेल प्राप्त हुआ है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता हमें मेल कर रहे हैं। एक और मेल शामिल करते हैं। राज पैलेस माऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा, और शिव मंदिर हकीकतपुरा से हमें मेल किया है मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। चलिए सुनते हैं आक्रोश फिल्म का ये गीत।

बहुत सारे मेल आपके हमें प्राप्त हो रहे हैं, और आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अपना जो मेल है वो एक बार में ही हमें भेजें, और हो सके तो हिंदी फॉन्ट में लिखकर हमें मेल भेजें, ताकि जैसा लिखा जाए वैसा ही हिंदी को पढ़ा जाता है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर, करण, राहुल और चंपा साहू का मेल मिला है और आक्रोश फिल्म का गीत सुनना चाह रहे थे। और शिमला से हमें मेल कर रहे हैं किरण, नेहा और राहुल, हमारी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह में मेल कर रहे हैं और धूम 3 फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। गुरमीत सिंह साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से मेल कर रहे हैं, और बागपत यूपी से संजय ढेंगिया, नमन और अपार ढेंगिया का हमें मेल मिला है। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना, योगेश, नेवान, सौरव और शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा का हमें मेल मिला है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती का हमें मेल मिला है धूम 3 फिल्म के लिए। और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी शेखावत हमें मेल कर रहे हैं। गांव कुमार एड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम का मेल मिला है धूम 3 फिल्म के लिए। और एक और मेल शामिल करते हैं गीत शामिल करने से पहले, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। चलिए धूम 3 फिल्म का गीत सुनते हैं।

चलिए बाकी के मेल शामिल करते हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू हमें मेल कर रहे हैं और मोहब्बत फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला, सदानंद और कुमार गौरव मंदूरकर हमें मेल कर रहे हैं, हमारी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। झारखंड गुमला से SM जावेद और ऋषभ गुप्ता अंजुम का हमें मेल मिला है। और आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह, जंगेल मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी हमें मेल कर रहे हैं। और धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि का हमें मेल मिला है। निम्नाबाद जींद हरियाणा से जसवीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर। और लिखकर भेजने की कोई भी एक बढ़िया सा गीत सुना दें ज़रूर, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से हमें मिल कर रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। चलिए अगला मेल शामिल करते हैं। आमा खोडरा कबीर धाम से मिल कर रहे हैं देवी सिंह, नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्षप्रिया और गीत सरगम नेताम। पटियाला नाभा पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, गुरमंत और कौर और मनु का हमें मेल मिला है मोहब्बत फिल्म के लिए।

चलिए बाकी मेल शामिल करते हैं। मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से हमें मिल कर रहे हैं जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद और नसीन मुलानी हमें मिल कर रहे हैं। और दिल परदेसी हो गया फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। इसी फिल्म के लिए हमें मिल कर रहे हैं मनाली से कल्पना, नितेश और शिवा ठाकुर, और धर्मशाला से मन्नत, कविता और श्रेया शर्मा हमें मेल कर रहे हैं। और पालमपुर से मेल किया है मनीत ठाकुर, सुमित और विदिशा ठाकुर ने। मुरादाबाद से हमें मिल कर रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य, और आपने मेल किया है लदावली ज़िला मुरादाबाद से। सूरज रेडियो श्रोता संघ सहसपुर लोहारा कबीर धाम छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं गुनीराम राजपूत, संतोषी हेम प्रभा, पुष्प राज और सूरज राजपूत। सुनना चाहते हैं दिल परदेसी हो गया फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: चलिए अगला मेल हमें कर रहे हैं अस्तुपुरा से मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम, मोहम्मद सादिक और बहादुर गंज, गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, नागर कोहरा ज़िला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साव का हमें मेल मिला है और हमारी पसंद का गीत तो सुनना चाहते हैं। बाकी के मेल शामिल करते हैं। हमें दो मेल और प्राप्त हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मेल कर रहे हैं अनिल मोहन, उषा टिल्लू और मधु नायक। और इसके अलावा अगला जो मेल हमें प्राप्त हुआ है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, और प्यार हो गया फिल्म का गीत सुनना चाह रहे हैं।

कुछ एक मेल और शामिल करते हैं जो हमें अभी अभी भी प्राप्त हुए हैं, और मेल कर रहे हैं सोलन हिमाचल से, और मेल करने वाले हैं कामेश्वर शर्मा, विनय शर्मा और अंकित शर्मा। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है नाहन ज़िला सिरमौर हिमाचल से, और मेल करने वाले हैं रघुवीर ठाकुर, पूनम ठाकुर और श्रेया ठाकुर। चलिए सुनते हैं और प्यार हो गया फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज जो फिल्में इस प्रोग्राम में शामिल की गई थी वो थी आक्रोश, धूम 3, दिल परदेसी हो गया, मोहब्बत और प्यार हो गया।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम शिमला केंद्र। इस वक्त रात्रि के 10 बजे हैं और एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं चंद गज़लें।

कितनी पलकों की नमी दिल में समाई होगी, फिर किसी याद ने चुपके से रुलाई होगी। रात खामोश थी, तारे भी थे सहमे सहमे, चांद ने दर्द की तस्वीर बनाई होगी। वो जो हंसते थे जमाने को दिखाने के लिए, उनकी आंखों में भी बरसात छुपाई होगी। एक मुद्दत से जिसे दिल ने भुलाने की ठानी, उसी आहट ने फिर उम्मीद जगाई होगी। मेरे अश्कों का पता पूछ रही थी दुनिया, मेरी खामोशी ने हर बात बताई होगी। आज महफिल में जो मुस्कान लिए बैठा है, उसने तन्हाई में रात भर की कमाई होगी।

कितने पलकों की नमी आज भी बाकी निकली, दिल की वीरान गली आज भी बाकी निकली, वक्त की धूल ने ढक डाले थे कितने चेहरे, तेरी यादों की हंसी आज भी बाकी निकली, हमने समझा था कि बुझ जाए।

एफ एम चिमला पर आप सुन रहे हैं गज़लें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम गज़ल मेहदी हसन साहब की आवाज़ में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हो चुके हैं। एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे। और साथियों, ये वो प्रोग्राम है जहाँ संगीत यादें और सुनहरे दौर के उन गीतों के नाम, ये कार्यक्रम है जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते, और ये वो गीत हैं जो दिलों को छू जाते हैं और हर पीढ़ी को जोड़ते हैं। चलिए फिर बिना देर किए इस सुरीली यात्रा की शुरुआत करते हैं आशा भोसले द्वारा गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है उमराव जान।

तो साथियों, ये था कार्यक्रम का पहला गीत। इसके बाद सदाबहार नगमों में आइए, कुदरत फिल्म का गीत सुनते हैं परवीन सुल्ताना की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है मजर सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

साथियों, अभी आपने सुना ये वादा रहा फिल्म का टाइटल सॉन्ग किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था गुलशन बावला ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इसके बाद आइए अब सुनते हैं अगर तुम ना होते फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

तेजाब फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज

0: राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
2: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments.